सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: काफी सारे जने बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का विहार करेंगे।
2: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसे कुछ
1: मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे मतलब
2: इसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। देखो अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि मन शुद्धि। अगर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। किसी भी प्राणी को दुख देना,
1: हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं,
2: ये अपनी वासनाओं की अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा, कुछ नहीं बन जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव तुम उनको काट कर खाओगे वो भोगना पड़ेगा। राम जी के रूप में भगवान ने यदि बाली के चरण में बाण मारा तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में व्याध के रूप में उसने बाण मारा। देखो ना लीला, देखो भगवान ने अंतिम अपनी लीला जो श्री कृष्ण ने लीला है वो यहां संपन्न की कि भगवान के चरण में व्याध जो है बाण मार रहा है। अब आप विचार करो जब वो सरकार समर्थ होते हुए भी अपने लीला का लीला दर्शन कराते हैं, श्रवण कुमार के वध का संयोग बन गया दशरथ जी के हाथ से, शब्द वेदी बाण मार दिया, तो देखो उनका जो कर्म था वो तड़प तड़प के अपने पुत्र भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं। पर भगवान उसको मिटा सकते थे लेकिन भगवान नहीं मिटाते। अवश्य में उपभोक्तव्यम गीता जी में कहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तमोगुणी भोजन का त्याग करो, सात्विक भोजन और संयम से रहोगे तो तुम में जो बल आएगा वो एक महान पवित्र बल होगा। आज बल नहीं दिखाई देता, चेहरे में कांति नहीं है, विचार में पवित्रता नहीं है, ऐसा नहीं। हम पशु नहीं है, हम मर्यादा से चलने के लिए हैं। हमारी मर्यादा बनाई गई शास्त्र मर्यादा, हमारी कानून व्यवस्था है। यदि हम शास्त्र मर्यादा से चलेंगे, शास्त्र कानून से चलेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। जैसे आजकल बच्चे कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, नहीं स्वतंत्रता नहीं, माता पिता की आज्ञा की परतंत्रता, शास्त्र की आज्ञा की परतंत्रता, गुरु की आज्ञा की परतंत्रता, कानून की परतंत्रता, अगर ये स्वीकार करोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। अगर मनमानी करोगे तो परतंत्र हो जाओगे। मनमानी स्वतंत्रता नहीं होती, मनमानी इंद्रियों की परतंत्रता होती। जो इंद्री कहती वही हम कहते हैं। आप अपने को स्वतंत्र समझते हैं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम, तो स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्रता तब होगी जब हमारी बात पुनः समझ ले, शास्त्र आज्ञा के अधीन चलोगे, गुरु के अधीन चलोगे, संतों की वाणी के अधीन चलोगे। भगवान शास्त्र और संतों के रूप में विराजमान है तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। तो आचरण और भोजन ये दो का बहुत बड़ा योग है। अगर हमारा भोजन ठीक तो हमारे आचरण ठीक होंगे, हमारे आचरण ठीक तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। गंदा आचरण,
1: अभी कल परसों एक प्रश्न आया था कि गांव देहात में महाराज जी क्या है कि छोटे छोटे देवी जी के मंदिर हैं और गांव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके और फिर उसका वो करते हैं, बलि देते हैं, फिर महाराज जी फिर पूरे गांव वाले आते हैं, फिर पूरा मास वो करते हैं, मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी, देवी की आराधना भी कर रहे हैं।
2: ये सब भोजन ये आसुरी वृत्ति है, इससे भगवत प्रसन्नता नहीं होती। हम सबको ये बताना चाहते हैं, जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है, जगत जननी है ना। माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? हमें तो नहीं समझ में आता। और जब वो जगत जननी है तो बकरे की भी माँ है, वो भैंसे की भी माँ है, वो गाय की भी माँ है। वो माँ जो जगत माता है वो अपने पुत्रों की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? अगर वो प्रसन्न होती तो तुम्हारा मंगल हो जाता। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर, हमें बताओ?
1: देवी अप्रसन्न हो जाएंगी अगर नहीं किया ऐसा तो, महाराज जी ये भी माने
2: और अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो सबको चाट जाए उनको, वो तो महाकाली है, महाकाल स्वरूप भी है, तो वो दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया, वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे, जैसे महिषासुर शुम्भ निशुम रक्त बीज, माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है, ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है, कभी माता जी प्रसन्न नहीं होती। हमें लगता है कभी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, और ये सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ ऐसे नहीं, कुपुत्र हो जाए थे क्वचिदब कुमाता अनुभवती, माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगा।
1: अगर फिर से अंग को प्रसन्न करना है महाराज जी, और ये प्रथा चली है, और जैसे किसी के घर में पुत्र,
2: देखो शास्त्र में विधान है, नारियल की बलि, नींबू की बलि, इनकी बलि सात्विक बलि दे, आप कच्चा नारियल की बलि दे सकते हैं, तो ये भी बलि तो मानी जाती है। ये सब मनमानी आचरण है, इससे देवी प्रसन्न नहीं होती है। और देवी को रक्त चाहिए तो चराचर जीवों के हृदय में देवी विराज, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाए विश्वम, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य, तुमीश्वरी देवी चराचर से, वो चर अचर की ईश्वरी है, उनको किसी के खून की जरूरत है, माँ को किसी के खून की जरूरत है? अरे माँ तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है। माँ शब्द कितना महान है, वो अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिवर्तित करके अपने बेटे का पालन करती है, वो दूसरों का रक्त पान कैसे कर सकती है? ये दुष्टों के रक्त पान किए माता जी ने, जो समाज के लिए

0: तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान आ जाएंगे। कहो सु कहां जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। तो प्रेम कहां से आ जाएगा जब अपराध करोगे। इसलिए जो कामना भी पूर्ति चाहते हैं तो उनको चाहिए कि गंदा भोजन और गंदे आचरणों का त्याग करें, तो उनकी कामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी, निश्चित पूर्ण हो जाएगी।
1: समझते हैं कि मतलब मुर्गा और मछली का हिंसा करने से ये जीव हिंसा के अंतर्गत नहीं आता।
0: क्यों नहीं आता? तुम्हारी अंगुली काटे तुम्हें कैसा लगेगा? दर्द नहीं लगेगा। उन जीवों को देखो, एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? और जिनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि बढ़ जाएगी, तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो, तुम्हारा बैलेंस जब परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो परमात्मा का तीन कार्य है, सृष्टि रचना, सृष्टि पालन करना और सृष्टि का संहार करना। वो भी अपने आप में लय कर लेता है। वो प्रलयंकारी परमात्मा है, वो काल का भी काल है, वो महाकाल है। वो जिस समय जैसा चाहता है वैसा अपना बैलेंस बनाता रहता है। सृष्टि का बैलेंस बनाना उसका कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। हम मनुष्य, हम राक्षस नहीं है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि मांस मदिरा अंडा बराई स्त्री से व्यभिचार, इनका त्याग करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
11: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707065।
12: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
13: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
14: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
15: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
16: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
17: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए

0: सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 87-894-18744।
3: भक्ति गीत के बाद स्वागत बाय रउआ सबके कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल में। ये कार्यक्रम में हम बतावेनी बहुत सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। लोग सबसे पहले हमार यानी आपन दोस्त दीपाली के स्वीकार करी सुप्रभात प्रणाम। तो दोस्त लोग आई आज के कार्यक्रम के श्री गणेश कहल जाओ, आज जानल जाओ आज लहसुन के बारे में।

हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, भूख बढ़ावे, बाल के रोग, शक्ति संवर्धन, फूल बहारी यानी सफेद दाग, नजला, जुकाम, बवासीर और कफ आदि में कई जाला। पुरातन काल से ही लोग लहसुन के गुणकारी और रोग निवारक गुण से परिचित रहे। लहसुन में से जौन तीखा गंध निकलेला वो एमे बहुत

सल्फर की मात्रा और अधिक पावल जाला जिमे अपार औषधीय गुण होला। लहसुन के रस में इतना अधिक क्षमता होला कि उ साइनस में जमल बलगम के पतला कर देवेला, फेफड़ा और ब्रोकियल ट्यूबों में जमा होखल बलगम पिघला देवेला। शरीर के चमड़ी में व्याप्त विभिन्न प्रकार के दोष और विष के चमड़ी के पोर द्वारा शरीर से बाहर निकाल देवेला।

दोस्त लोग आई जानल जाओ लहसुन के रोग उपचार के बारे में। दमा रोग में लहसुन के तीन कली के छील के रात के सूते से पहले दूध में उबाल के सेवन करे से दमा रोग में काफी लाभ मिलेला। विकल्प के रूप में लहसुन के एक पोथी की कली के छील के पीस ली और 125 मिलीलीटर सिरका में उबाले आ उबाले के बाद एकरा के छान ली और शहद के बराबर मात्रा डाल के शीशी में सुरक्षित रख ली। मेथी के काढ़ा के साथ एक दो चम्मच रात के सूते से पहले सेवन करी, इसे दमा रोग की तीव्रता कम होला और अटैक होके की संभावना भी समाप्त हो जाला। दिल के दौरा में हृदय की रक्त सप्लाई करे वाला वाहिनी में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाला तो ओकर मार्ग संकरा हो जाए के कारण रक्त वाहिनी नाड़ी पर रक्त के दबाव बढ़े लगेला। स्थिति गंभीर होके पर ई दिल के दौरा के कारण बन जाला। दूसर ई की रक्तवाहिनी के स्वाभाविक लचीलापन भी कम होके से रक्त के दबाव बढ़ जाला। जिसे हृदय के वांछित रक्त के पूर्ति ना हो पावेला। यदि हृदय रोग रोजाना छीलल होकर लहसुन की एक दो कली खाली पेट नियमित रूप से ली तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ल कम हो जाई और हृदय की धमनी कड़ा ना हो पाई। ऐसे हृदय के रक्त पूर्ति निश्चित मात्रा में होत रही, साथ ही दोबारा दिल के दौरा पड़े के संभावना प्राय निरस्त हो जाई और भविष्य में हृदय के होखे वाला क्षति भी प्राय ना हो पाई। जौन रोगी लहसुन ना खा सके वो एकर कैप्सूल के प्रयोग कर सकेला। ये दोनों उपाय के लाभ प्राय एक समान ही होला, इसे रक्त के दबाव भी सामान्य हो जाला। रक्तचाप और संबद्ध उपद्रव में यानी दिल के दौरा के ब्लड प्रेशर से अलग करके ना आके के चाहिए, काहे कि दोनों के परस्पर घनिष्ठ संबंध होला। यदि एक कारण बात तो दूसर ओकर परिणाम बात। कोलेस्ट्रॉल के अधिक मात्रा धमनी काठिन्य और हृदय के रक्त के अपेक्षित मात्रा ना मिल पावे के अलावा तनाव भी ई दोनों रोग में एक समान कारण होला।

सुन के एक दो कली रोजाना पानी के साथ निगल जाए तो उसे ये सब लक्षण तो निरोहित हो ही, साथ ही हृदय की गति भी नियमित हो जाए। अलावा सांस फूले, जी मिचलाए, चक्कर आवे, पेट में गैस बनल आदि लक्षण के शमन भी हो जाए। दिन में एकरा स्थान पर लहसुन के 2-3 कैप्सूल भी विकल्प में लिहल जा सकेला।

आर्थराइटिस एवं कटिशूल में चिकित्सक लोग के अनुसार ई रोग के रोगी पर लहसुन के प्रयोग करे के बाद निष्कर्ष निकल बा कि लहसुन के रस में वात जनित उक्त रोग में रोगी की काफी

शीघ्र लाभ की संभावना बढ़ जाला। कुछ बैद लहसुन की समान मात्रा में अजवाइन के तेल में जलावे के परामर्श भी देवेला, जिसे शीघ्र लाभ पहुँचेला।

किसी पाचन संबंधी रोग में पेट और पाचन के रोग के कारण प्रायः अनियमित भोजन और दिनचर्या के मानल गई बा। अपच, वायु संचय, पेट में दर्द, वमन और अकड़न आदि लक्षण में ताजा लहसुन के कली के पानी या दूध में उबाल के सेवन करे से पाचन संबंधी अनेक रोग में लाभ होला। सुप्रभाव पड़ेला, ऐसे आंत के कीड़ा मर के निकल जाला, ऐसे दस्त, पेचिश और पेट दर्द में भी लाभ होला। लहसुन में आंत में व्याप्त संक्रमण के नष्ट करे के अद्भुत क्षमता होला। रोग के जीर्ण दशा में 1 से 6 कैप्सूल रोजाना रोग के दशा के आधार पर लिया जा सकेला। ऐसन रोग है जौन जानलेवा भी सिद्ध हो सकेला। यदि समय रहत एकर इलाज ना कई जाए तो ई रोग में गला के भीतर झिल्ली बन जाला, जिसे सांस लेवे में बहुत असुविधा होला। यदि लहसुन की कली मुंह में रख के ओकर रस धीरे धीरे चूसल जाए तो गला की झिल्ली हट जाई, बुखार कम हो जाई और रोगी के काफी आराम महसूस हुई। चर्म रोग में फुंसी पर लहसुन के रस या पेस्ट लगावे और मले से फुंसी और निशान भी मिट जाला, लगातार रहे वाला मुहासा भी ऐसन करे से दूर हो जाला।

सेवन कईल जाए त त्वचा के रंग निखरी, दाग धब्बा मिट जाए और रक्त प्रवाह में भी सुधार होई। त्वचा के साधारण संक्रमण लहसुन की 3 कैप्सूल रोजाना कुछ 3 तक लेवे से

0: अब उ समय आ गई बा जेमे राउर दोस्त दीपाली लिए जाए के आ गया तो ई वादा के साथ कि फिर हमार भेंट होई काल कुछ दूसर नुस्खा के साथ। तब तक रखे रहो आपन सेहत के ख्याल आजमाई ई सब नुस्खा के। नमस्कार।
1: ठक ठक
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव परिवार को एक साथ रखना सिखाता है, शिव परिवार के साथ रहना सिखाता है। अब आगे
5: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
6: माँ सुनो ना।
5: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
6: अरे माँ रुक जाओ ना।
5: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
6: माँ अरे मेरी बस का टाइम हो गया, मेरी बात तो सुन लो।
5: क्या सुनूं बेटा, तुझे जो कहना था तू कह चुका, तू अपना डिसीजन ले चुका है।
6: माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आपको तो प्राउड फील करना चाहिए कि आपका बेटा आर्मी में जाना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। आप नाराज क्यों हो रहे हो?
5: देश की रक्षा तो ठीक है बेटा, पर क्या तूने एक बार भी सोचा कि मेरी रक्षा कौन करेगा? तेरे पापा नहीं है तो क्या ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करे?
6: माँ पर अब मेरी बात भी तो समझो।
7: नमस्ते आंटी, आपका बेटा आर्मी की एग्जाम देने जा रहा है?
5: जी अब जा रहा है, पता नहीं अब ये मेरा रहेगा भी या मुझे भूल जाएगा।
7: अरे दैट्स अमेजिंग डूड, गुड लक टू यू। आंटी आप खुश नहीं लग रही हैं?
5: मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, अपने आप से ज्यादा करीब रखा हमेशा उसे, इसे आंखों से दूर करने का तो सोच भी नहीं सकती मैं। और ये है कि दुनिया को बचाने का ठेका अपने कंधों पर लेना चाहता है। महादेव मेरे बच्चे को सद्बुद्धि क्यों नहीं दी आपने?
7: आंटी ये बुद्धि भी शायद इसे महादेव नहीं दिए।
6: माँ आप इतना ड्रामेटिक क्यों हो, देश की रक्षा के बारे में सोचना कुछ गलत है क्या?
5: नहीं बेटा, पर अपनों के बारे में भूलकर देश के बारे में सोचना कैसी अकल है?
7: Well, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ, आपका बेटा शायद महादेव के नक्शे कदम पर चल रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए।
5: महादेव के नक्शे कदम पर, और वो भी मेरा बेटा? ना जी, महादेव योगी होकर भी अपने परिवार की खुशी का ख्याल रखते थे। मेरा बेटा तो महान है और महान बनना चाहता है।
7: शिव जैसा ही तो है, अपनी परवाह ना करते हुए जैसे उन्होंने दुनिया को बचाया वैसे ही ये देश के लिए कुछ करना चाहता है। अरे आपके पास थोड़ा वक्त है तो समुद्र मंथन की कहानी सुनाओ।
5: लो जी अब ये सुन लो, ये कहानियाँ बनाता फिरता है, तुम भी सुना दो एक आध कहानी। वैसे भी मैं इससे बात नहीं करना चाहती, महादेव की कहानी सुन के मैं अपने मन को शांत कर लेती हूँ। कहो।
7: तो कहानी कुछ ऐसी है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और स्वर्ग के सभी देवों ने अपनी शक्तियां खो दी थी। तभी असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। देव बेबस होकर विष्णु के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने कहा ये शक्तियां अमृत पीने से ही वापस आ सकती हैं। इसीलिए सारे देव असुरों के साथ सौदा करके अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे।
8: खींचो खींचो और जोर से खींचो।
9: अरे देवगणों को जीतने नहीं देना है, खींचो और जोर से खींचो।

0: ये क्या हो रहा है?
1: ये तो हलाहल है।
2: हे ईश्वर, कितना भयंकर विष है ये। विष तो पूरे संसार का विनाश कर सकता है। सारे जीव संकट में है।
3: अरे अब तो हम स्वयं खतरे में हैं। अब क्या करें? मैंने पहले ही कहा था, इन देवों का साथ हमें देना ही नहीं चाहिए था। देखो अब हमारे ही प्राण संकट में हैं।
4: शांत शांत शांत हो जाइए सभी। ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा।
2: तो आप ही बताइए प्रभु कि हम क्या करें। ये विष अब समुद्र से उभर नहीं वाला है।
4: इस विष को रोकने का केवल एक ही उपाय है, पर वो है महादेव। अब वही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। हम सबको मिलकर महादेव को याद करना चाहिए।

0: स्वामी, ये क्या? सारे देव और असुर आपको एक साथ पुकार रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा।
1: हाँ पार्वती, अवश्य ही कोई विपत्ति की घड़ी आन पड़ी है, उन्हें मेरी आवश्यकता है, मैं देखता हूँ।
0: स्वामी रुकिए, स्वामी मैं भी चलती हूँ आपके साथ, लगता है कोई बड़ा संकट है।
1: ठीक है, चलो मेरे साथ।

0: देवों, असुरों, क्या हुआ? आप सब एक साथ, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? कहिए।
1: महादेव, बहुत बड़ा संकट है ये। इस समुद्र से हलाहल निकल रहा है।
2: कुछ कीजिए ईश्वर, आपके सिवाय हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारी सहायता कीजिए महादेव।
1: अब आप ही बचा सकते हैं महादेव, आप ही बचा सकते हैं हमें।
0: चिंता ना करें आप लोग, शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। मैं इसका समाधान निकालता हूं, मुझे सोचने दें। ठीक है, मैं इस विष को पी लेता हूं, संकट टल जाएगा।
3: परंतु भोलेनाथ, हलाहल बहुत ही भयानक विष है, कहीं आपको कुछ हो गया तो?
0: समय नहीं है पार्वती, यदि मैंने ये विष नहीं पिया तो ये पूरा संसार, इसके सारे जीव अपने प्राण खो देंगे। मैं ये विष अवश्य पीऊंगा।
4: महादेव की प्रचंड तांडव पशुपतिनाथ की जय। देवाधिपति भोलेनाथ की जय।
3: हे प्रभु, मुझे इस विष को कंठ में रोकना।
4: महारुद्र महादेव की जय।
1: आपने बचा लिया महादेव, आपने हमें बचा लिया।
2: हम धन्य हो गए ईश्वर, हम धन्य हो गए।
1: परंतु ईश्वर, आपका ये कंठ तो नील हो गया है।
0: हाँ, पार्वती ने वो विष को रोक कर मेरे प्राण बचाए हैं। तुम देवी हो पार्वती, धन्यवाद देना चाहता हूँ तुम्हें कि ऐसी विपत्ति भरी घड़ी में, जहाँ तुम जानती थी कि मेरे प्राण जा सकते हैं, सृष्टि की रक्षा के लिए तुमने मेरा साथ दिया और तुम्हारे साथ से ये सृष्टि बच गई।
3: नहीं ईश्वर, धन्यवाद कह के मुझे पराया मत कीजिए। मैंने केवल एक अर्धांगिनी होने का कर्तव्य निभाया है। और फिर मैं जानती हूँ कि आप मेरे स्वामी तो हैं, परंतु आप इस संसार के देव भी हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप अपने प्राणों से पहले सृष्टि के जीव जंतुओं के बारे में सोचते हैं।
5: देखा माँ, आपके शिव भी ऐसे ही थे, अब तो नाराज नहीं है ना मुझसे? अरे माँ, अगर आप ऐसे ही मुंह लटकाए बैठी रहोगी तो मैं खुशी खुशी नहीं जा पाऊंगा।
6: आंटी, अगर देवी पार्वती भी शिव को रोक लेती तो सृष्टि खत्म हो जाती। किसी को तो दूसरों की रक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना।
7: बेटा, मैं रोकना नहीं चाहती, सच कहूँ तो मुझे गर्व है इस पर क्या करूँ, मैं हूँ तो एक माँ ही ना।
5: तो बस माँ, आप बस आशीर्वाद दो, मैं देश के साथ आपकी रक्षा का भी इंतजाम करके जाऊंगा। फिगर नॉट, अभी मुझे एग्जाम तो दे देने दो।
7: हाँ ठीक है, जा। लेकिन एग्जाम के बाद तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू एकेडमी ज्वाइन करने से पहले मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करेगा।
5: माँ, पक्का प्रॉमिस माँ, मैं एकेडमी जाने से पहले आपको ट्रिप पर जरूर लेके जाऊंगा।
6: ये हुई ना बात, अरे जाओ अब, बस मिस मत करो।
5: हाँ भाई, तुम भी इसी बस में चल रहे हो?
6: नहीं नहीं, मेरे पास तो मेरी नंदू है।
7: हैं? कैसे आदमी हो, बाइक है तो फिर तुम बस स्टॉप पे क्यों बैठे हो?
6: वो तो बस ऐसे ही, तुम्हें देखा तो किसी की याद आ गई, इसीलिए थोड़ी देर रुक गया।
5: I'm so sorry, इतनी बातें कर ली पर ये तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है भाई।
6: नील।
5: यही हो?
6: नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता।
7: काम क्या करते हो लोगों को ज्ञान देने के अलावा?
6: मैं एक ट्रैवलर हूँ, आगे जा रहा हूँ अपनी यात्रा पर।
5: ट्रैवलर, तो व्हाट्स योर डेस्टिनेशन?
6: वैसे अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वही है, अमरनाथ, अपने भोलेनाथ का घर।
5: अमरनाथ, दैट्स अमेजिंग यार। वैसे थैंक यू नील, मेरी माँ को ये सब समझाने के लिए, मैं तो थक ही गया था, समझ ही नहीं रही थी। पता नहीं तुमने ऐसा क्या जादू किया।
6: मैंने कुछ नहीं किया, जो करते हैं महादेव करते हैं। तुम ये बातें छोड़ो और जाओ, इम्पोर्टेंट एग्जाम है, क्रैक करके आना। ओके
5: ओके।
6: ओह, बहुत लेट हो गया यार, चलो मैं चलता हूँ, रास्ता बहुत लंबा है। गुड लक मैन।
5: हे थैंक्स मैन, एंड होप टू सी यू अगेन।
6: हाँ जरूर, अब तुम भी आना कभी भोलेनाथ के धाम, अकेडमी ज्वाइन करने से पहले माँ को लेकर, शायद वही मिल जाऊं।
5: बिल्कुल, जरूर मिलेंगे।
6: चलो अब चलता हूँ, हर हर महादेव।
8: रात फिर नींद उड़ गई ये सोचकर कि सरहद पर बह रहा खून मेरी नींद के लिए है। माँ बाप का प्यार था या तेरी किस्मत थी कि तू इस दुनिया में पैदा हुआ, लेकिन लेकिन ऐसी जिंदगी किस काम की जो किसी के काम ना आए। बिड़ू, हर इंसान का जन्म किसी कारण से होता है, और अपनी जिंदगी अगर देश के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ काम आए तो फिर बात ही अलग है। बिड़ू, शिव ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया था, महाराज की जिंदगी लोगों के लिए थी तो फिर अपनी क्यों नहीं। शिव सेवा करना सिखाता है, शिव समर्पण सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434 62042434।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज

0: तिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कौशल विकास समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। शराब और आर्म्स एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएम और एसपी के यहां लगा जनता दरबार। ऑपरेशन मुस्कान में 116 लोगों को मोबाइल फोन किया गया वापस। स्मैक के साथ 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में कौशल विकास समिति की बैठक हुई। इस दौरान प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई गोपालगंज, जिला कौशल प्रबंधक, वन प्रमंडल पदाधिकारी सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान 2026-27 के लिए जिला कौशल विकास योजना के निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के सुझावों और जिले की कौशल आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जादवपुर थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट और शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2025 में जिले में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई थी और इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामजद प्राथमिकी अभियुक्त पवन सिंह, पिता कमलेश सिंह, साकिन सिहोरमा, थाना जादवपुर, जिला गोपालगंज को आज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर शराब तस्करी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज थे। इसमें पुलिस इसे लगातार ढूंढ रही थी, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक कार्रवाई में इसी आरोपी के ट्रैक्टर ट्रॉली से लगभग 1,807 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त की थी और एक अवैध अग्नियास्त्र और जिंदा कारतूस तथा मोटरसाइकिल भी किया था। इस मामले में भी इसको पुलिस ढूंढ रही थी। इसके अलावा जादवपुर थाने में 3 मामले इस पर दर्ज थे और सभी मामलों में यह आरोपी फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिले में युवाओं को रोजगार परक कौशल आवश्यकताओं का आकलन करते हुए स्थानीय उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन तथा प्रशिक्षित युवाओं के स्थानीय प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों में नियोजन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान प्रत्येक दिन के भांति आज भी लोगों की समस्याओं को निष्पादित करने के लिए दोनों ही पदाधिकारियों ने अपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया। इसको लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ से आज बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
3: अभी जो सरकार का निर्देश प्राप्त है उसमें हम लोगों को सप्ताह में 2 दिन जनता दरबार करना होता है। उसके अलावा भी हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन 1-1 घंटा प्रथम पाली और द्वितीय पाली में सभी जनता के लिए समय दें, जो कि जनता की ग्रीवांसेस है वो हमारे पास आए। ज्यादातर तो जमीन से संबंधित मामले रहते हैं जिसमें अंचल के स्तर या अनुमंडल के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित रहती है, वो हम लोग अपने स्तर से उसकी सुनवाई करते हैं और जो प्रॉपर निर्देश होता है और निर्देश के अलावा उसका कार्य भी कंप्लीट कराते हैं। इसके अलावा जो है बहुत किसी योजनाओं का लाभ लेने से संबंधित कोई वंचित अगर वर्ग रहता है वो भी हमारे पास यहाँ पर जनता के दरबार में जो लगता है उसमें आते हैं और उनके कार्रवाई पर भी अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक डेडिकेटेड सेल का निर्माण किया है जिला पदाधिकारी प्रकोष्ठ में, जिसका काम यही है कि जो भी हमारे पास आवेदक आते हैं उसके

0: आवेदन पे क्या प्रगति हुई है उससे संबंधित हम लोग समीक्षा भी करते हैं पदाधिकारियों से, और साथ ही जो आवेदक है उनको अवगत भी कराते हैं। तो इसमें हम लोग और बेहतर करेंगे ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग का भी सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे। थैंक यू।
1: हथुआ पुलिस ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर बरवा कपरपुरा स्थित फील्ड के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा स्मैक जैसे मादक पदार्थ की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की, और यहां बताया जा रहा है कि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से स्मैक जैसा संदिग्ध वस्तु पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में गोविंद कुमार पिता राजेश पासी साकिन बरवा कपरपुरा थाना हथुआ, दूसरा आदित्य सिंह पिता मनोज सिंह साकिन बरवा कपरपुरा थाना हथुआ, तीसरा आकाश कुमार पिता ललन खरवार, यह भी हथुआ के बरवा कपरपुरा का है, और करण कुमार पिता वीरेंद्र सिंह, यह पीपरा खास थाना मीरगंज का निवासी है। इसके अलावा अनिकेत श्रीवास्तव पिता जितेंद्र श्रीवास्तव, यह सौरेजी थाना मीरगंज का रहने वाला है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 70 ग्राम करके स्मैक जब्त किया है। तलाशी के दौरान इनके मोबाइल फोन को भी पकड़ा गया है, साथ ही कुछ आरोपियों के पास से मोटरसाइकिल इत्यादि भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि कुल आरोपियों के पास से 3.49 ग्राम संदिग्ध स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसे जब्त कर अब पुलिस इन पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि स्मैक जैसा मादक पदार्थ करण चौहान साकिन हरखौली थाना मीरगंज जिला गोपालगंज द्वारा उपलब्ध किया जाता था, जिसे वे विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर बेचते थे। इस मामले में सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज 116 लोगों को उनका मोबाइल फोन बरामद कर वापस किया। बताया जा रहा है कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई इस कार्रवाई से 116 मोबाइल फोन को बरामद किया गया। इसके पहले भी अब तक सैकड़ों मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को वापस किया जा चुका है। दरअसल ऑपरेशन मुस्कान ऐसे मोबाइल फोन को जब्त करने के लिए चलाया जा रहा है जो या तो किसी का मोबाइल फोन चोरी हो गया हो, गुम हो गया हो। इसके शिकायत जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत ऐसे मोबाइल फोन को ट्रेस करती है, और ट्रेस करने के बाद उन्हें जब्त कर जिनके मोबाइल फोन होते हैं उन्हें वापस करती है। अब तक हजारों की संख्या में गोपालगंज पुलिस ने लोगों का चोरी हुआ या गुम हुआ मोबाइल फोन बरामद कर वापस किया है। इसी कड़ी में फिर से इस बार 116 लोगों का मोबाइल फोन उन्हें बरामद कर वापस किया गया। सभी लोगों ने मोबाइल फोन मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी का आभार व्यक्त किया। विजयपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त मनीष राम को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी विजयपुर के भरतपुरवा का रहने वाला है। इस पर 2026 में मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहे नामजद प्राथमिकी अभियुक्त साहेब अली को गिरफ्तार कर लिया। यह बैकुंठपुर के मूजा गांव के अब्बास मियां का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसके घर पर ही छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया और अब इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा श्रम संहिताओं के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों को नई श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधानों से परिचित कराना है। कार्यक्रम में सचिन कुमार उप मुख्य श्रम आयुक्त सहित तमाम पदाधिकारियों ने बताया कि प्रमुख प्रावधानों और उनके व्यवहारिक उपयोग की सरल भाषा में लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा औद्योगिक संबंध और वेतन संबंधित प्रावधान तथा कानूनी रूप से इससे जुड़े मामलों की भी जानकारी दी जा रही है। माझा थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त ज्योतिष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। यह माझागढ़ थाना क्षेत्र के महुआ टोला डुमरिया के सत्यदेव शर्मा का पुत्र है। इसको भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने के बाद आज पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस केंद्र स्थित उपस्कर शाखा, शस्त्रागार शाखा एवं नव नियुक्त सिपाहियों के आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने इस सभी बिंदुओं पर आवश्यक जांच पड़ताल करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान शाखाओं में संधारित विभिन्न पंजियों एवं अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया। तथा उसके समुचित संधारण अद्यतन प्रविष्टि एवं व्यवस्थित रख रखाव को लेकर पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिए गए। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक ने नवीन पुलिस केंद्र में प्रतिनियुक्त सिपाहियों के आवासीय स्थल का भी निरीक्षण किया तथा आवासीय व्यवस्था, स्वच्छता और आवश्यक सुविधाओं का जायजा लेते हुए सिपाहियों को आवश्यकता अनुसार कर्तव्य निष्ठा, बेहतर पुलिसिंग एवं जन सामान्य के प्रति संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने से संबंधित भी दिशा निर्देश दिए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कौशल विकास समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। शराब और आर्म्स एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएम और एसपी के यहाँ लगा जनता दरबार। ऑपरेशन मुस्कान में 116 लोगों को मोबाइल फोन किया गया वापस। स्मैक के साथ 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
11: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-97-06-575।
12: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
13: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
12: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, Glamour X 101,354 रुपए और X3 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
13: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
12: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
14: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
15: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
16: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
17: एडवर्टाइजमेंट्स मैंने एक्चुअली 6 साल की उम्र में की थी। एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी थी और उन्होंने मुझे कहीं देखा था, माय मदर्स फ्रेंड्स एंड माय मदर सेड दे वर, मेरे जो फैमिली थे दे वर रिलक्टेंट फर्स्ट, और फिर यू नो दे थिंक इवेंचुअली एक एड हुआ, दे सेड ओके लेट्स गिव इट अ शॉट, और फिर दे न्यू दैट ज्यादा कुछ करना नहीं है वहां पे, कुछ 8 घंटे जाना है। और जब भी मेरी छुट्टी होती थी तो आई थ्रू 3 years और 4 साल मेरे स्कूल के मैंने कुछ एड्स की। मेरा पहला एडवर्टीजमेंट था गुड नाइट मस्क्यूलर रेपेलेंट which was at the age of 7 and that was my first paycheck. तभी मुझे याद है कि 2,500 रुपए मिले थे मुझे उस वक्त, it was very good at that time. And मैंने कुछ 20 ads किए थे, मैंने रसना किया था, बॉनविटा किया था, ये सब ads किए थे। And I was kind of like a mini star in school because सब बच्चे जानते थे कि इसने advertisements किए हैं। And तभी channels तो कहाँ थे, means एक DD था और दो तीन और वो शोज आते थे, एक चित्रहार आता था और यू नो ऑन संडे कुछ शोज आते थे, और फिल्मों में जनरली आया करते थे, VHS टेप्स पे लोग रिकॉर्ड करते थे एडवर्टाइजमेंट्स। सो या दैट वाज माय एक्सपोजर टू दैट।
18: ये है मेरी कहानी इमरान हाशमी के साथ। बॉलीवुड में 100 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों के इस सितारे ने शुरुआत एक डोर टू डोर सेल्समैन की तरह की थी, सिर्फ 7,000 रुपए की सैलरी से।
17: मैंने कॉमर्स डिग्री की थी और उसके बाद भी मुझे कहीं चेक लिखना आता नहीं था, क्योंकि 5 साल मैंने कॉमर्स के किए और मुझे लगा कि यार मैं बिजनेस सेंस मेरे पास है ही नहीं, बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है। और 20 साल की उम्र में था मैंने ऐसे ही, जब मैं कॉलेज में था तो मैं सोचा कि लेट्स साइन अप फॉर दिस जॉब। मैं आई वर्क एज अ डोर टू डोर सेल्समैन और यार इट वॉज वो जो प्रोफेशन था, मैंने 1 महीने के लिए किया और मेरे समर वेकेशन में, और वो मुझे बहुत, उस प्रोफेशन में बहुत कुछ सिखाया। इट टॉट मी लॉट अबाउट ह्यूमिलिटी एंड लोगों के घरों में जाके उनको ट्राई टू सेल देम द स्टफ व्हाटएवर वाज गिवन टू अस एवरी मॉर्निंग। एंड बहुत लोगों ने दरवाजे तोड़े मेरे पटके मेरे सिर पे। ज्यादा पे नहीं था उसमें, आई यूज टू गेट लाइक 7,000 एट दैट टाइम, ज्यादा पे नहीं था। लेकिन पैसों के बारे में नहीं थी बात, क्योंकि मैं कॉमर्स में था, मुझे लगा कि यार लेट्स सी दिस साइड ऑफ इट, क्योंकि कॉमर्स के लिए बेचना, चीजों को बेचना बहुत जरूरी है। तो आई शुड स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड अप, बेस से अगर आप शुरू करें, अगर आप एक खुशी एयर कंडीशन ऑफिस से शुरू करोगे तो यू वोंट रियली वैल्यू इट दैट मच, यू वोंट अंडरस्टैंड थिंग्स, तो यू हैव टू वर्क योर वे फ्रॉम द ग्राउंड अप। फैसिनेशन वॉज मोर टूवर्ड्स वेस्टर्न सिनेमा। मैंने हाँ हिंदी फिल्में देखा करता था, मिस्टर बच्चन की फिल्में, मिस्टर दिलीप कुमार की फिल्में, रिस्पेक्ट टू देम एज एक्टर्स। लेकिन मेरी जो एनवायरमेंट था घर पे, मेरी जो मदर थी वो हमेशा शी टू ट्रेवल आउट ऑफ टाउन और ब्रिटेन जाती थी, उनकी फैमिली वहां है, तो शी टू गेट दिस VHS टेप्स, और उस VHS टेप में कुछ 6-7 फिल्में उस वक्त रिकॉर्ड होती थी एक VHS टेप में। तो मैं घर पे ऑब्वियसली मैं हमेशा देखता था, फिर मैं जाके रेंट करता था अपने लाइब्रेरी। तो ये मेरा फिल्म स्कूल था कि मैं VHS टेप्स में ये सब फिल्में देखता था, एंड आई टू सी 1 फिल्म अ डे, लेकिन सब इंग्लिश में देखता था। तो वो एक तरह से मेरा बैकग्राउंड था फिल्मों में, लेकिन मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था, देयर वाज नो रोल मॉडल। मैं बहुत सारे एक्टर्स को पसंद करता था एट दैट टाइम, आई यूज्ड टू लव माइकल जे फॉक्स, आई यूज्ड टू लव जो फिल्में थी बैक टू द फ्यूचर और ये सब फिल्में मुझे पसंद थी। सो बट कभी ऐसा मेरा मकसद, कोई सपना नहीं था, कोई ख्वाब एक्टर बनने का कभी नहीं।
18: और अब सुनिए कि कैसे इन्हें मिला इनका सबसे अनकन्वेंशनल बॉलीवुड ब्रेक।
17: भट साहब कभी कभी मिलते थे घर पे, वहां पे कभी आते थे मुकेश जी के साथ घर पे, he's not come that often. I used to go to his son's house, सनी राहुल, तो हम बचपन में हमारा पालील पे ही हम सब खेलते थे सब लोग। इट जस्ट सो हैपेंड कि मिस्टर मुकेश भट्ट मेरे घर पे आते रहते थे, हिज फैमिली एंड माय अंकल, और मेरे ग्रैंड मदर से आके मिलते थे, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर, हर हफ्ते आते थे और वो कहते थे यार ये खड़ा रहता है यहाँ पर पालील पे, आई एम बॉर्न बैंड्रा, तो गाड़ी में घूमता रहता है दोस्तों के साथ काठोड़ पालील पे, कुछ एम वेम गोल नहीं उसकी जिंदगी का, यार इसको बोल दो कि ऑफिस में आ जाए, इधर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द इंडस्ट्री, वो किसी चीज में बैठ के वो देख सकता है कि अगर कोई शौक है एडिटिंग में या डायरेक्शन में। तो मैंने एडिटिंग से शुरू की, एडिटिंग में कुछ खास जमा नहीं, क्योंकि 5 दिन वहां एक कमरे में बैठकर, एक 4x4 कमरे में बैठ के एक स्क्रीन को देखना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर डायरेक्शन में मैं असिस्टेंट, एज एन असिस्टेंट मैं था, दैट डिडंट गो ऑफ वेरी वेल। मोहित सूरी एंड मी स्टार्टेड ऑफ टुगेदर एट दैट टाइम, मोहित थोड़ा और मेहनती था एज अ डायरेक्टर, वेरी क्लियर टू बिकम अ डायरेक्टर। फिर मुझे एक्टिंग का ऑफर आ गया।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार, महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
8: कहानी ये है मेरी कहानी।
9: बट साहब ने एक बार मुझे घर पे बुलाया था, कहा था कि कम टू द हाउस, आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू फाइंड आउट इफ यू हैव इट इन यू। तो मैं, मुझे याद है कि पहली बार मैं एक्चुअली 6:30 बजे उठा सुबह, क्योंकि भट्ट साहब उठ जाते हैं 5 बजे सुबह। तो आई लाइक, दिस इज लाइक शॉकिंग। आई वेंट टू हिज हाउस 7:30 बजे और बस बैठ के उन्होंने बातें की। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं हुई हमारी, जस्ट अबाउट लाइफ और अबाउट कॉलेज में क्या होता है और मेरे क्या गोल्स हैं। मैं कंफ्यूज था, अभी कोई गोल था नहीं मेरे पास। और फिर उन्होंने एक्चुअली कहा कि तुम एक्टर बन जाओ। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई वाज अ लाउजी असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको काम नहीं आता है डायरेक्शन का, इसको एक्टर बना दो। तो एज एन एक्टर मैंने पहली फिल्म डिडंट टेक ऑफ 2002 में। फिर स्क्रिप्ट लिखी गई फुटपाथ की और फिर भट्ट साहब ने पेन की थी स्क्रिप्ट। एंड फिर स्टार्टेड ऑफ इन 2003 और एक अनकन्वेंशनल लॉन्च था, क्योंकि तभी दे हैड ऑफर्ड मी द मेन लीड। एक्चुअली उस फिल्म में मुझे मेन लीड करना नहीं था, बोला कि यार इतना प्रेशर पहले दो और मुझे दूसरा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है। तो पीपल वर शॉक कि यार हम तुमको मेन लीड का कैरेक्टर दे रहे हैं और तुमको सपोर्टिंग एक्टर प्ले करना है। सो आई फाउंड मोर सब्सटेंस इन दैट रोल और मैंने वो फिल्म की, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक।
10: अपने बेटे आयान के लिए इमरान काफी इमोशनल है। आयान के कैंसर ट्रीटमेंट के वक्त हुई शूटिंग इमरान के लिए सबसे मुश्किल थी। तो आइए जानते हैं इमरान के फादर वाले रोल के बारे में।
9: आयान अभी ऑब्वियसली जानता है कि हिज फादर इज एन एक्टर। उनको एक्चुअली पता नहीं है क्या एग्जैक्टली प्रोफेशन क्या होता है एक्टिंग का। पहले दिन जब वो, मैंने कहा कि मैं शूटिंग ले जा रहा हूँ और एट द एज ऑफ 2.5 उस आहिस्ता आहिस्ता स्पीच समझने लगते हैं। ही थॉट आई वाज गोना शूट समवन। बिकॉज आयरॉनिकली जब मैं सेट पे गया तब शूटिंग में संजू दैट डे, तो संजू के पास एक गन थी सेट पे और एक एक्शन सीन था, तो आई ऑल्सो हैड अ गन. उसको लगा कि शूटिंग ये किस किस्म की शूटिंग होती है, शूटिंग ही चाहता ही थोड़े सम गेम. बट उसके बाद आई थिंक नाउ ही इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड, क्योंकि गाने देखे हैं ऑन टेलीविजन, सो ही इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड. फैमिली फिल्में अनफॉर्चुनेटली उसने नहीं देखी अब तक. बहुत छोटा था उसने, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई वो प्रीव्यू थिएटर में था, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट दैट टाइम. He's been through a lot पिछले एक साल में because of his illness. और हम जनवरी में लेके गए थे उसे टोरंटो, 5-6 महीने का ट्रीटमेंट होता है. अनफॉर्चुनेटली मैं वहां नहीं हो सका. आफ्टर फर्स्ट मंथ मुझे वापस आना था क्योंकि यहाँ पे शूटिंग कमिटमेंट्स थे. मेरी रिलीजेज अगर मेरी एक साल से ऑब्वियसली इससे पहले रिलीज नहीं हुई थी और बहुत बड़ा गैप हो जाता, तो थोड़ा डिले हुआ इसकी वजह से, लेकिन आई हैड टू कम बैक. वो फ्लाइट पकड़ना मेरे लिए शायद जिंदगी का सबसे उदास, और आई जस्ट हैड टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ दैट मोमेंट व्हेन आई हैड टू लीव हिम इन टोरंटो एंड कम बैक टू बॉम्बे. और यहाँ पे मैंने कुछ 90 डेज गुजारे विदाउट फैमिली जो टोरंटो में थी उसके ट्रीटमेंट के लिए. तो इट वाज अ वेरी टफ टाइम कमिंग बैक. But he's a happy kid. बहुत ही social kid है. He's an extrovert. He's just a very happy kid. So I want to keep it that way. पता नहीं किस profession में जाएगा वो. पता नहीं इसको actor बनना है बाद में या doctor बनेगा या क्या बनेगा. Rocket scientist बनेगा पता नहीं. मैं इसको किसी चीज में push नहीं करूँगा. I won't tell him कि ठीक है अगर आपके father इसमें है या you know your family members in the industry आपको यही काम करना है. I'll never tell him that. He'll obviously be left to for his own options to make the choice. मैं guide करूंगा but I won't push him to do anything.
10: ये है मेरी कहानी और अब जाते जाते सुनिए इमरान हाशमी के लाइफ मंत्रा के बारे में.
9: मैं ambitious हूँ. मैं obviously बचपन से ही मैं जानता था कि success is very important. मुझे इस मकाम पर पहुंचना है. मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगा किसी भी प्रोफेशन में. अगर मैं जाता आई वुड वर्क वेरी हार्ड टू गेट देयर. आई जस्ट होप सो हैपेंड कि मुझे इसका ऑफर मिला. आई गॉट दिस ब्रेक एंड आई मेड द मोस्ट ऑफ इट. तो हाँ आई एम फेयरली एम्बिशियस. या देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्बिशन. आई एम नॉट ओवर एम्बिशियस बट यस आई एम एम्बिशियस टू अ सर्टेन पॉइंट. कोई ऐसा एंड गोल पोस्ट नहीं है. बस काम करना है, अच्छा काम करना है. पैसों के बारे में इतना सोचना नहीं है क्योंकि अगर आप पैसों के बारे में सोचोगे तो आप काम पे ध्यान नहीं दोगे. पैसे इवेंचुअली ऑब्वियसली आएंगे. अच्छा काम करना है, रुकना नहीं है. सक्सेस फॉर मी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, हिट फिल्म्स के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट गेटिंग अप आफ्टर यूर फॉलन. ऑल सक्सेसफुल पीपल कभी ना कभी फेलियर तो आ ही जाता है आपकी जिंदगी में. डीलिंग विद दैट फेलियर इज टू सक्सेस. It's the number of times you've fallen and you get up. That's what my gauge for success is. तो हाँ मैंने बहुत सारे ups and downs देखे हैं मेरे करियर में. पहले 4-5 साल तो बहुत मुझे I had to face a lot of brickbats. बहुत criticism था इंडस्ट्री में मेरी फिल्मों को लेकर मुझे लेकर. फिर acceptance मिला, audience मेरी बढ़ती गई हर फिल्म के साथ. So I think that's the most important thing कि बस you have to be in the game. आपको काम करना है, अच्छा काम करना है, fans को अच्छी फिल्म देनी है.
10: अगले हफ्ते भी सुनना ना भूले किसी सितारे की जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की कहानी. ये है मेरी कहानी.

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
9: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर गोपालगंज S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
13: जो सोचा वो कभी किया नहीं, जो चाहा वो कभी हुआ नहीं, और अब जो हो रहा है वो बस एक इत्तेफाक है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के स्टार की, जिनकी शुरुआत बड़ी ही अनकन्वेंशनल रही। मेहनत और स्ट्रगल से भरी फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें किसी ने हीरो इसीलिए बना दिया क्योंकि ये बड़े आलसी थे, पर हीरो बनने के बाद इन्होंने बॉलीवुड में साफ सुथरे हीरो की परिभाषा ही बदल डाली। बैड बॉय, लवर बॉय और सीरियल किसर जैसे एट्रीब्यूट्स इनकी स्ट्रेंथ बने। ये है मेरी कहानी में। आज हमारे साथ हैं,
14: हाय मैं हूँ इमरान हाशमी और आप मुझे सुन रहे हैं FM पर।
13: आइए करते हैं इमरान की कहानी की शुरुआत, करते हैं बात उनके बचपन की।
14: मेरी फैमिली एक्चुअली प्रेडोमिनेंटली फिल्म फैमिली है। बहुत सारे लोग और बहुत लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरे फैमिली से हैं और ये शायद पब्लिक जानती नहीं है। तो आई हैव कजिन्स और मेरे अंकल सब इस इंडस्ट्री में सालों से हैं। मेरी ग्रैंडमदर एक एक्ट्रेस थी और उन्होंने काम किया था इन द 40s एंड 50s फिल्मों में, द ब्लैक एंड व्हाइट एरा, और उन्होंने कुछ 100 फिल्में की हैं उस वक्त पे। एंड हाँ, मेरे फादर एंड माय मदर वर द ओनली टू पीपल जो मेरे परिवार में फिल्म में नहीं घुसे, एक्टिंग में या डायरेक्शन में। तो दे वर वर्किंग इन अनदर इंडस्ट्री, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं भी कहीं एक्टर नहीं बनना चाहता था क्योंकि एनवायरमेंट मेरे फैमिली में ऐसा था। उसके बावजूद एक्चुअली मैं कभी फिल्म सेट में गया नहीं था, सिर्फ 2 बार गया था मैं। एक बचपन में मैं आई हैड गॉन टू सी, क्योंकि मेरी कजिन थी वो आमिर खान की बहुत बड़ी फैन थी, तो मैं एक बार गया था फिल्म सिटी, मुझे याद है स्कूल के वक्त। उस आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में वहां गया था। और एक बार मेरे घर पे शूटिंग हुई थी, भट्ट साहब ने शूटिंग की थी कब्जा फिल्म की, संजू और राज बब्बर मेरे घर पे शूटिंग कर रहे थे। तो ये था, दिस वाज द ओनली जो इम्पैक्ट रहा है या जो मैंने देखा है फिल्म शूट। लेकिन उसके बाद एक तरह से मेरी जिंदगी ने डिटोर ले लिया।
13: ये है मेरी कहानी इमरान हाशमी के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
14: बहुत ही इनोसेंट चेहरा था मेरा, आई कुड गेट अवे विद मर्डर। वहाँ इलाके में बहुत सारी चीजें हम करते थे, ब्रेक क्लासेस व्हेन प्लेइंग क्रिकेट। आई एक्चुअली बर्न ऑन माय बैकयार्ड क्योंकि हम वहाँ के क्लियर करना चाहते थे टू मेक अ टेनिस कोर्ट, और सब ड्राइड लीव्स थे एंड दे हैड टू कॉल अ फायर ब्रिगेड, तो वी हैव क्रिएटेड हैवॉक हमारे लेन में।
13: फिल्मों से दूर रहने के बावजूद भी इमरान हाशमी का बचपन काफी दिलचस्प रहा है।
14: बहुत ही इनोसेंट चेहरा था मेरा, तो आई टू गेट अवे विद मर्डर। तो जो हम शरारती में था बचपन में, हम वहाँ इलाके में बहुत सारी चीजें हम करते थे, ब्रेक क्लासेस व्हेन प्लेइंग क्रिकेट। हमने एक्चुअली एक बार I almost burned down my backyard क्योंकि हम वहाँ के क्लियर करना चाहते थे टू मेक अ टेनिस कोर्ट, और सब ड्राइड लीव्स थे एंड दे हैड टू कॉल अ फायर ब्रिगेड, तो वी हैव क्रिएटेड हैवॉक हमारे लेन में। बहुत सारे दोस्त थे एंड ये सब दोस्त अभी भी हम साथ में, कुछ 15-20 चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं मेरे जो हमारे इलाके पालील पे हैं। सो वी मीट अप एवरी टाइम, नॉन फिल्मी है सब। सो इट वॉज अ ग्रेट चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू मी। और स्कूल में जुहू जाता था यहाँ पे स्कूल में, एंड इतना एकेडमिक नहीं था, पढ़ाई में 60-70% स्टूडेंट था, कभी पढ़ाई का इतना शौक नहीं था।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 99

0: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a wonderful day.
1: Namaskar.
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
6: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
7: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ

0: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रूपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत @2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
2: इस संभावित समझौते से होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
3: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
1: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
4: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी। फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख। अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
7: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
8: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
8: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
11: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853552599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
4: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87894-18744।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज़ेड पर।
9: कार में म्यूजिक बजा।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम, हर हर महा

0: यार।
1: अरे वो क्यूट है, तुम्हारा भाई भी तो क्यूट है। डोंट वरी ब्रदर, राम जी की लारी।
0: लेट्स गो।

0: Hey guys, thank you so much for watching our song.
1: Do like, comment and share.
2: And do subscribe to our channel, United White Flag.
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 62052 61112 पे।
10: गज गज गज गज, यू नो व्हाट्स चूड़ी? चूड़ी मींस बैंगल। यू वांट टू ट्राई सम चूड़ियां?
11: Hmm?

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को संचालित करने के लिए लोक निजी भागीदारी मॉडल की मंजूरी दी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, परिवार का एक सदस्य पहले से सरकारी सेवा में होने पर दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। और मौसम विभाग की आज बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार और सीवान समेत 9 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को संचालित करने के लिए लोक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई और इलाज के लिए पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
1: 7 निश्चय 3 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आलोक में 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल सहित को संचालित किए जाने हेतु निविदा के माध्यम से ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में चयनित पावर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड PwC को लेटर ऑफ अग्रीमेंट निर्गत करने और इस पर होने वाले व्यय की कुल राशि 8,27,300 रूपए की स्वीकृति दी गयी।
0: कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि इन अदालतों के लिए 171 पद सृजित किए गए हैं।
1: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने हर घर तिरंगा अभियान के सफल आयोजन के लिए 6,12,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिपरिषद ने केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 योजना के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102 करोड़ रुपए और मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मृत सरकारी कर्मी के आश्रित परिवार का कोई सदस्य अगर पहले से सरकारी सेवा में है तो दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि अनुकंपा पर नियुक्ति उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है, बल्कि यह आकस्मिक आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली सीमित राहत है। न्यायाधीश कुमार मनीष की एकल पीठ ने इस मामले में दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक शिक्षा विकास अधिकारी AEDO परीक्षा घोटाला मामले में मुंबई से एक युवक रोशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा के कंकरिया गांव निवासी यह युवक मुंबई के भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर बार्क में तकनीकी सहायक है। गिरफ्तार युवक पर भर्ती परीक्षा के दौरान उत्तर कुंजी लीक करने का आरोप है। EOU की टीम आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पटना आ रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। इसलिए IT एक्ट के तहत मिलने वाला कानूनी सुरक्षा कवच उन पर लागू नहीं होता है। प्रदेश में गन्ना आधारित उद्योग में निवेश में बढ़ोतरी के मकसद से शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल की शुरुआत की गई है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि यह पोर्टल बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक एक ही मंच पर भूमि, अनुदान, परियोजना स्वीकृति, ऑनलाइन आवेदन और निगरानी जैसी सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना पर 70 करोड़ रुपए तक आधार अनुदान मिलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और उच्च शिक्षा तथा विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए नामित किया गया है। वहीं मुख्य सचिव और गृह विभाग के सचिव को सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। परिषद का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी राज्यों के साथ चल रहे दशकों पुराने विवादों को सुलझाना है। प्रदेश में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत समायोजन और पारस्परिक तबादले के लिए 61,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ने आवेदन प्रक्रिया के अगले चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत प्राप्त आवेदनों पर कल से 9 सितंबर तक जिला प्रमंडल, राज्य स्थापना समिति की बैठक, शिक्षक वार समायोजन, समानुपातीकरण, सूची का प्रकाशन और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद 10 से 14 सितंबर के बीच पात्र शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया जाएगा। वहीं सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया के तहत 17 से 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित हो रहे भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। कल से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की सक्रियता से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज बक्सर, गया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार और सीवान जिले में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों जहानाबाद, अरवल, पटना, औरंगाबाद और नवादा समेत आसपास के क्षेत्रों में भी तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट है।
1: दिनांक 6 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बक्सर, गया एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, किशनगंज एवं सीतामढ़ी जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के

हजार मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। इधर कल हड़ताल समाप्ति के लिए पटना की महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में सफाई कर्मियों की मांगों के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी है। जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छठी कक्षा में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नामांकन दो चरणों में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि परीक्षा में कुल 165,609 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफलता का प्रतिशत 73.99% रहा। ये परीक्षा 8 से 22 जून तक सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने सुपौल और नई दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। यह ट्रेन आज से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलेगी। प्रदेश में कुश्ती और मुक्केबाजी के प्रशिक्षण के लिए आधुनिक केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही खेलो इंडिया के तहत राज्य में वुशु के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने विभिन्न खेल संघों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह घोषणा की है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 52वीं राज्य जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पटना, सारण, भोजपुर और बक्सर की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। राष्ट्रीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राज्य टीम का चयन 9 और 10 अगस्त को होगा। भागलपुर जिले में प्राकृतिक विधि से धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना के तहत 3 क्लस्टर बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन के अनुसार ये क्लस्टर सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर, जगदीशपुर प्रखंड के भवानीपुर देसरी और गौराडी प्रखंड के तरछा दामचक और सोनाडी सज्जोरी में स्थापित किए जाएंगे। अंत में अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राज्य कैबिनेट के फैसले से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, निजी साझेदारी में संचालित होंगे 16 मेडिकल कॉलेज। प्रभात खबर प्लास्टिक नोट पर लिखता है, गलेंगे न फटेंगे, अप्रैल मई से आपके हाथों में होंगे प्लास्टिक नोट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मंत्री पद का खतरा झेल रहे दीपक विधान पार्षद बने। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, कोसी उफनाई, सहरसा में 12 से अधिक घर नदी में समाये। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को संचालित करने के लिए लोक निजी भागीदारी मॉडल की मंजूरी दी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, परिवार का एक सदस्य पहले से सरकारी सेवा में होने पर दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। और मौसम विभाग की आज बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार और सीवान समेत 9 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा।

0: आपने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
8: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त RJ मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 80-29-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
9: मनोरमा मैम बोल रही है।
10: जी जी,
9: पहली बार बात हो रही है मैम।
10: नमस्कार।
9: नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है
10: जी, बढ़िया है, अपना बताइए।
9: चलिए, नया नया RJ सब आते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आवाज में चेंजिंग होता रहता है, बहुत अच्छा लगता है
10: जी। वैसे आपका नाम?
9: मेरा नाम सुरेश कुशवाहा।
10: कहाँ से बोल रहे हैं सुरेश जी?
9: श्यामपुर से। श्यामपुर का नाम सुने हैं?
10: नाम तो सुने हैं लेकिन इतना याद नहीं है कि कहाँ से, आप ही बताइए।
9: इधर सिपाही ढाला का नाम सुने हैं? जयकुट प्रखंड। हम हरदम जुटते हैं मैम, जब से रंजिम चालू हुआ 2009 में, तभी से समझते हम लोग प्रोग्राम।
10: ठीक ही बात है।
9: जितने RJ आई पहले शुरू शुरू में लोग, वो लोग भी से भी सब लोग से बात हुआ है।
10: अच्छा,
9: पहले से प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग भी हो गया है। पहले प्रोग्राम कुछ और था, थोड़ा कम हो गया है प्रोग्राम अब।
10: अच्छा जी।
9: पहले महिला मेल भी चलता था, सखी सहेली सब प्रोग्राम बंद हो गया ना।
10: अच्छा।
9: रिंगजिंग चलल गाँव गाँव, तब प्रोग्राम पहले चलता था।
10: और मुझे भी तो इन सब के बारे में नहीं पता, तो आज आज की फरमाइश बता दीजिए।
9: भक्ति चलेगा ना, तो वही भक्ति हरिओम नमः शिवाय।
10: ओके, और ये किसको सुनाना चाहते हैं?
9: सभी को, बजेगा तो सभी लोग सुनेंगे।
10: तो है
9: सोनी में, लोग छुट्टी में हैं।
10: हाँ, बस सोनी में ही छुट्टी में, भाभी जी हैं,
9: प्रोग्राम चला रही है वो।
10: बारह बजे जो स्कूल चलता है।
9: हाँ हाँ वही।
10: तो आप उस शो में जुड़ते हैं कि नहीं?
9: छोटे वाले मोबाइल से फोन किए हैं।
10: अच्छा, मतलब
9: बड़े वाले? उसमें बड़े वाले मोबाइल का जरूरत है ना?
10: नहीं नहीं, उसमें भी फोन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं।
9: अच्छा हाँ, कॉल के माध्यम से जुड़ते हैं। इसमें जुड़ते हैं, एसएमएस में नहीं जुड़ते हैं। कॉल के माध्यम से जुड़ते हैं।
10: ये बहुत अच्छी की बात है।
9: और हम मतलब वो जो सोनू सर चलाते हैं रात में ना, उसमें नहीं जुड़ते।
10: कोई नहीं, टाइम निकाल के उसमें भी कोशिश करेंगे जुड़ने के लिए।
9: जी मैम।
10: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
9: जी
10: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिन 90.4 FM।
9: थैंक यू,
10: वेलकम।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैम, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
0: हम भी मस्त हैं। बोल रहे हैं, बहुत मेहनत की आज, इतना लेट से लगा है कॉल।
1: अच्छा, देर नहीं लग रहा था?
0: नहीं मैम, 11 बजे राइट लगा रहे थे लेकिन लगा ही नहीं। अभी लगाए तो लग गया।
1: आप लग गया ना,
0: पांचों में सोचते हैं लगाने का, लगता ही नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं।
1: अच्छा लेकिन लगेगा,
0: पता नहीं मेरा कोशिश सफल कब होगा।
1: होगा होगा
0: मैम। तो आपका ये तो हो गया है, आपका तो ये हो गया है।
1: जी जी,
0: लगता है अब इसमें नहीं आएंगी भारती मैम क्या?
1: नहीं नहीं आएंगी, दूसरा काम चल रहा है ना इसमें।
0: जी मैम, उसमें तो आप नहीं आती हैं, आप योर वॉइस वाला में कभी दोपहर बाद भी आइए मैम, अच्छा लगता है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो बाद में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है शो सुनने में। जी मैम, तो हम बहुत लेट है मैम।
1: लेट तो
0: ये कब बजेगा मैम?
1: कोई ना, पूरा कोशिश है कि आज ही बजेगा।
0: अच्छा मैम, आप उस दिन के लिए एडवांस में बोले थे धन्यवाद, आज भी बोलते हैं धन्यवाद। बहुत खुश थे हम, वो गाना बज गया लेकिन कट गया था।
1: क्या ना, ज्यादा लंबा हो जाता है तो आपका तो गाना चलाना रहता है।
0: नहीं मैम, कोई कोई का नहीं कटता है, मेरा कट गया था।
1: अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो लंबा हो गया था कहीं इसीलिए हुआ होगा।
0: वो गाना था ना देखने वाला, यही गाना फरमाए थे देखने वालों ने, क्या क्या नहीं देखा होगा। तो बजा लेकिन पूरा नहीं बजा।
1: अच्छा, उस समय के हिसाब से बजता है, लेकिन कोई ना कोशिश करेंगे कि आज आपका गाना मतलब पूरा बजे।
0: जी मैम, आज तो कुछ अलग ही गाना फरमाइश करेंगे।
1: जी बता दीजिए, वैसे आपका नाम?
0: जी हम सफरोज अली बोल रहे हैं मैम, गोपालगंज से बोल रहे हैं मैम।
1: गोपालगंज में कहाँ?
0: गोपालगंज में गाँव है आखिल टोला, आखिल टोला गाँव है, उसी गाँव से है लेकिन अभी फिलहाल में गोपालगंज रहते हैं, मतलब दुकान है। तो दुकान पे टाइम मिलता है तो कहते हैं शो सुनते हैं, लेकिन मिस नहीं सुनते हैं हमेशा, लेकिन जब टाइम मिलता है तो कहते हैं कॉल, तब देखना होता है मैम ना। जी मैम, तो गाना का नाम ये है आँखों से हम बारे, गाना है ना कुमार सोनू का, वही वाला।
1: दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
0: जी मैम, गाना तो गाते नहीं बस सुनते हैं।
1: तो मतलब दो लाइन नहीं गा के सुनाइएगा?
0: गा कर नहीं सुनाएंगे, बस बताते हैं। गाना का नाम है आँखों से हम बातें यार करने लगे।
1: ओके,
0: उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा गाना है और सभी दोस्तों को अच्छा लगेगा। और सुनील जी है, बहुत अच्छा अच्छा गाना फरमाइश करते हैं, हम सुनते हैं सभी का कॉल, बहुत अच्छा लगता है। रेडियो है तो बहुत कुछ है मैम।
1: जी जी,
0: रेडियो है तो हम अपना सब मतलब दुख भूल के सुनते हैं। जब तक तो चलता है तब तक बहुत अच्छा लगता है मैम। और रिपीट चलता है ना सुबह में 9 से 11 तक रिपीट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जो नहीं सुने होते हैं वो सुन लेते हैं सुबह में।
1: इसीलिए तो चलाया जाता है कि जो मतलब बहुत लोग शाम को नहीं सुन पाते हैं।
0: जी मैम, हमको भी टाइम नहीं मिलता है शाम को, तो रिपीट में सुनते हैं। कभी कभी शाम को सुन लेते हैं लेकिन ज्यादातर रिपीट में सुनते हैं। जी मैम, तो इसलिए डायरेक्टर सर को धन्यवाद बोलेंगे। मैम तो मैम तो कोशिश कीजिएगा आज ही बजाने का, क्योंकि हमको कल काम है तो नहीं सुन पाएंगे, आज बजेगा तो बहुत अच्छा होगा।
1: जी जी, पूरा कोशिश है कि आज ही बजे,
0: कोशिश कीजिएगा फुल बजाने का आज।
1: ओके
0: ओके मैम, तो धन्यवाद।
1: गाना प्ले करते हैं।
0: ओके मैम, बाय।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: Now pick it up
9: Hello
8: Now pick your phone up
9: Hello
8: pick it up
9: Hello
8: Now pick your phone up
9: Hello
10: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ 80 29 94 911। तो चले

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: हमारा नाम रामा जी प्रसाद, खावे राजन मार्ग से।
1: अच्छा, सबका हाल चल बा?
0: हाल चाल ठीक बा। फिर गर्मी देश में बुझा के आग लगल बा।
1: गर्मी तो बहुत है।
0: दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजरु भाई राम बिलम भाई रे।
1: और गाना के सुनावे के भी बा?
0: ठाकुर भाई बा चौधरी, सुन लो हम सुन सुना सब कुछ सुन।
1: अच्छा अच्छा, नहीं रेडियो रिमझिम के कैसे सुना?
0: रेडियो सुनी, रेडियो से बात ना रहा, हट गनिया की आवाज बात कभी तो ना समझ में आई। नया इवेंट क्या हुआ?
1: नया ज्वाइनिंग
0: भैया। फिर 12 बजे से होला, वो में जोड़ी ले हम रोज कॉल के माध्यम से।
1: राहुल गाना प्ले करता नहीं?
0: नमस्ते
1: नमस्ते, सुनत रही के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो, नमस्ते।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगीम 90.4 FM में।
0: नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: क्या हाल है?
1: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरे भी बढ़िया है। उस समय से कॉल लगा रहा था, बिजी बिजी बता रहा है।
1: जी जी क्या करिएगा, बहुत सारा कॉल आ जाता है तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है।
0: आसान रहे क्या?
1: नहीं, नाम बता दीजिए।
0: मेरा नाम गणेश कुमार।
1: अच्छा,
0: और सब बताइए। धूप हुआ है?
1: धूप तो हुआ।
0: मेरे तो नहीं हुआ, हल्का हल्का हुआ है।
1: आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: चित्रा नारायण से।
1: ओके,
0: तो वही तो आप भूल जा रहे हैं, उसी को पूछ रहे हैं। और सब बताइए, खाना खा कर आए हैं कि नहीं?
1: खराब
0: नहीं तो खा लिए, दोबारा खाएंगे।
1: चलिए बहुत अच्छी की बात है, खाना चाहिए।
0: मेरे को सॉन्ग सुना दीजिए, अंकुश राजा के आवाज में। रक्षाबंधन सॉन्ग,
1: रक्षाबंधन का सॉन्ग
0: अंकुश राजा के आवाज में है।
1: क्या आप दो लाइन गा के सुना सकते? कोई ना, आपको आप दो लाइन में गा के सुनाइए।
0: मतलब अंकुश राजा के आवाज में सॉन्ग आता है ना, वही सॉन्ग बजा दीजिए, कोई भी रक्षाबंधन सॉन्ग।
1: ठीक है, हम तो बजा देंगे, लेकिन हम आपको मुझसे सुनना चाहते हैं, आप दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
0: मुझे ना याद नहीं है अभी।
1: कोई बात नहीं है,
0: नहीं याद आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं गा दी, याद नहीं आ रहा है।
1: कोई बात नहीं,
0: और डेडिकेट रहेगा आपको सबसे पहले, भाषण जी को, संधि जी को, डायरेक्टर साहब को, और पूरा रेडियो रिमझिम लोगों रहेगा। स्पेशल स्पेशल में आपको रहेगा।
1: चल चलिए ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: कल बजेगा? शाम को बजेगा। अभी
1: शाम को बजेगा।
0: चलिए ठीक है दीदी, नमस्ते।
1: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
10: Now pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
1: जी मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कमलेश बोल रहे हैं हरखुआ से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है कमलेश जी?
1: हाल चाल तो ठीक है मैडम, लेकिन बहुत गर्मी है।
0: गर्मी तो बहुत है।
1: बहुत धूप है। गाना सुना है मैडम?
0: बता दीजिए।
1: अरे साथी रे तेरे बिना क्या जीना।
0: ओके, और ये गाना आप किस किस को सुनवाना चाहते हैं?
1: हमारे मुकेश मिस्त्री है, अब इतना लोग सुन रहे हैं सब किसी को सुना था, आपको भी।
0: वैसे क्या हो रहा है अभी?
1: अभी हम लोग बीम ढाल रहे हैं, दीवार चलने वाला होता है ना बीम।
0: जी जी,
1: वही बीच का बीम ढला रहा है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ये ढला गया है मतलब।
0: अच्छा, वैसे आप रेडियो के रिमझिम को कैसे सुनते हैं?
1: सुनते हैं
0: मतलब कैसे, मोबाइल ऐप के जरिए या फिर FM के माध्यम से या रेडियो?
1: माध्यम तो सुनते हैं मैडम। बड़का मोबाइल में सुनते हैं नेट द्वारा, तो काम करते हैं तो जियो भारत रखते हैं पास में, घर जाते हैं तो बड़का मोबाइल से सुनते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी की बात है,
1: सुनते रहते हैं।
0: जी,
1: काम टाइम पास हो जाता है।
0: तो रेडियो रिंजिम का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
1: हमको हेलो माई चॉइस अच्छा लगता है। बस ये तो सब अच्छा है नहीं है, जरूर भी सुनते हैं दोपहर में, समाचार सुन लेते हैं।
0: कैसा लगता है आपको रेडियो रिंजिम?
1: बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जिले में हो गया वो बहुत खुशी की बात है। बहुत पुराना हम फोन करते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं।
0: मतलब आप रेडियो रिंजिम को कितने समय से सुनते हैं?
1: हम सुबह नौ बजे से शाम के 5 बजे तक, लगभग 6 बजे तक सुनते हैं।
0: मतलब कितने साल से सुन रहे हैं आप?
1: तो मान लीजिए जब से चालू है तभी से सुन रहे हैं।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, पहले ही से सुनते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि जब से चालू हुआ था रेडियो पहले था, तो अब रेडियो सोचे कि भाई रेडियो कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे काम करने के लिए, इसीलिए मोबाइल का जमाना आ गया तो मोबाइल से सुन लेते हैं।
0: तो बात है,
1: मोबाइल कहीं भी रख देते हैं दीवार पे, बजता रहता है, काम करते रहते हैं, मन लगता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: टाइम भी पता चल जाता है कौन टाइम कौन कार्यक्रम कौन टाइम से चल रहा है। मैडम भोजपुरिया शो नहीं चल रहा है क्या?
0: चलता है संडे को।
1: संडे को चलता है ना?
0: हाँ, 2 से 5 बजे चलता है, संडे संडे को चलता है भोजपुरिया एक्सप्रेस।
1: भोजपुरिया प्रोग्राम का टाइम चेंज हो गया है?
0: नहीं, वही है 2 से 5।
1: ठीक है मैडम।
0: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: इसलिए दिल से धन्यवाद। मैं संजय कुमार शाह ग्राम खोया मनसिंह पूर्वी चंपारण बिहार से।
1: ओके, क्या हाल चाल है संजय जी?
0: जी मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। आप सबसे आप कैसी हैं? आपको रेडियो इंजन संपूर्ण परिवार के
1: सब कोई ठीक है?
0: जी जी अच्छा रहना चाहिए। कहीं ना कहीं गर्मी तो आई है लेकिन बरसात तो हुई है रात। उधर का मौसम बताइए, उधर बरसा हुआ है?
1: रात को हुआ था, अभी तो मतलब धूप निकला हुआ है।
0: जी जी जी
1: जी
0: तरफ बरसा हो रही है लगभग।
1: और आपके तरफ बारिश हो रही है?
0: नहीं अभी नहीं हो रहा है लेकिन रात में 9:30 बजे से हुआ था, 9:30 बजे से दिन में 8 बजे के बीच। और इंजन इंजन तो रात भर चलती रही, जोर से बरसा तो ऑन 1.5-2 घंटा के लिए, 1.5 घंटा के लिए बाद इंजन इंजन बरसते बरसते रात की पूरा। और सब विशेष सुनाइए, आपका होल टीम के क्या हाल खबर है? अपना सुनाइए, आप कैसी हैं?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ और यहाँ के सब टीम भी सब कोई बढ़िया।
0: चलिए कामना करते हैं ऊपर वाले से भोले बाबा से कि एकदम स्वस्थ रहिए, मनोरंजन कराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे खुश रहिए। आज गाना सुना दीजिए हमें, सावन के रूप है आजा माँ झूला तुझे झुलाएंगे, इसी तरह का गाना है तो सुना दीजिए। आज भक्ति गाना सुना।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट में सबसे पहले आपको रेडियो इंजन संपन्न परिवार को दोस्त भारती संत लाल गौतम हमारे नाम से जाने पहचाने तमाम दोस्तों, विशेष करके रेडियो रंजन से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार को, खास करके मोहम्मद सलाल अंसारी को सुनाते हुए मधुबनिया को नमस्कार। अपने सुविधा लेंगे, नमस्कार।
1: धन्यवाद। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999। तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या हाल चल रहा रेशमा जी?
1: ठीक बा
0: जी, हमारे बढ़िया बा। क्या होता फिर?
1: जाते में खाना बनाए।
0: अच्छा तो नाश्ता वास्ता भाई लगी ना?
1: हाँ नाश्ता वास्ता हो गए जा, दोस्त अभी आओ तो अपने खाना बना जाता, फोन लगाओ तो नहीं। ठीक बानी नू?
0: जी जी बढ़िया बानी हम।
1: नाश्ता तो कॉलेज बनी?
0: हो गई बा।
1: और सब सुनाए?
0: सब बढ़िया बा। अपन बताई?
1: हमने भी ठीक बा। कल सब गाना सुने के मिल गए।
0: सुने ही की ना?
1: सुनाई
0: चली
1: गाना सुंदर बने। वो दिन वाला मैं नहीं की सुन लेंगे।
0: अरे वो कहा ना कि मैंने इतना सारा कॉल आ जाला ना कि मतलब एने होने हो जाला तनी।
1: कल सौ बजे खाना के
0: चली बढ़िया। तो आज के फरमाइश का बा बता दी?
1: आज बताया गाना सुना दिन साजन मेरा उतार है मिलने के दिल देख कर आ रहे थे गाना नहीं है वो सुना दी।
0: अच्छा और गाना सुनवावे के भी बा के उसके?
1: हाँ हस्बैंड जी सुनियो नरोरा सुने सब के सुनी। मैं मायल गन के ना सुनी
0: ना ना अभी ना की आलू हाके
1: लामा से तुम बॉयज बन ना। भाती मैं ठीक बनी?
0: हाँ हाँ वो ठीक बनी। वो क्या आज बन काम में लागल बनी?
1: अच्छा कल वो से बात बॉयज हुए दुकान पे टाइम बारे बजे तो हुए बार बजे से कल बात हो तो मैं जब फोन में लगे।
0: अच्छा तो 12 बजे तो मैं जुड़ा रही क्या?
1: हाँ जुड़ा रही
0: तब है ना। चलिए ठीक बा। अपन हस्बैंड के नाम बता दी?
1: नाम बता दी रफीक मिया।
0: अच्छा अच्छा
1: देवर लोग का नाम सफीक अजीत देहातन लोग का नाम रानी सब नाम।
0: अच्छा चलिए ठीक बा। तो और गाना प्ले करता नहीं?
1: हाँ बजा दी गाना। आज बाजी नहीं का बाजी?
0: अरे बाजी
1: आज बाजी।
0: ठीक बा सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंकी 90.4 FM।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: गाना सुनवाएंगे। आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
1: अमर कुमार पागलो यादव।
0: क्या हाल चाल है अमर जी?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया।
1: हमको गाना सुनना है भटूरी जी, जब समय होला कमजोर कोई साथ छोड़ देना, वो कही गाना सुनना है।
0: ओके,
1: भोजपुरी गाना है ना
0: जी,
1: बात कर लीजिए।
2: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
2: कभी से फल लगा रहा है आपके पास? नहीं लग रहा
0: है जी, तो अभी लग गया ना?
2: हाँ लग गया। दो बार तो एक पति के हमारा दोनों आदमी ट्राई कर रहा है।
0: आप अपना नाम बता दीजिए।
2: मेरा बेबी पार्टनर
0: है। हाल चल बना हूँ
2: मैम, अपना बताइए। हम लोग है,
0: क्या हो रहा है
2: यार? बैठ कर दोनों आदमी ही डरा रहे हैं फोन आपके पास।
0: अच्छा जी,
2: बात करने के लिए प्यारे वाली नंबर जो हमारा है सोमवार को डराते डरा तो लग नहीं रहा है, कहेंगे बात हो जाएगा थोड़ा।
0: क्या ना कि सोमवार को रिकॉर्ड नहीं होता, इसका ये रिकॉर्डिंग होता है सोमवार बुधवार।
2: सोमवार का रिकॉर्डिंग है ना, वो लग जाए तो डर रहे हैं।
0: क्या ना बहुत सारे कॉल आते रहते हैं।
2: नहीं लगा कितनी तारा ये
0: बात ना, अभी लग गया ना?
2: हाँ अब लग गया। गाना फरमाइश किए चल मारे हमको पास रेडी नहीं है, यही ठीक है छोड़ रख देते हैं अपना काम करते रहने की
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं तेरे ये सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
8: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते,
8: क्या हाल
7: है? जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
8: बिल्कुल
7: क्या करे, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं तो उन्हें भी तो देखना पड़ता
8: है।
7: और
8: आप
7: गाँव के मंदिर
8: बहुत जान था, बहुत भीड़ था, कैसे बताइए?
7: जी सब बढ़िया, आप अपना नाम बता दीजिए।
8: मेरा नाम गणेश कुमार पिपरे नारायण।
7: जी नाम एक बार,
8: पिपरे नारायण। गणेश, तो आप कहाँ गए थे जलगांव में? कहाँ
7: में? नहीं, यही के गांव में।
8: अपना ही गांव में, ये बढ़िया है। और सब बताइए।
7: जी जी यहाँ पे भी सब बढ़िया, तो फरमाइश बता दीजिए।
8: बारिश का मौसम हुआ क्या?
7: और आपके
8: मेरे इधर तो पूरा मतलब अनहार हो गया चारों तरफ से। मेरा सिवान जिला में जो बहरिया नहीं है, बहरिया वहाँ से 500 किलोमीटर आउट दूर है। खाना वाला खाते हैं?
7: और आपका?
8: मेरा भी खाना हो गया है, दो बार अभी तक, दो बार हो गया है।
7: चलिए बहुत बढ़िया, तो
8: गाना बजा दीजिए। खान के तरफ, खान के तरफ मेरे महाबूब के घर जाना।
7: ओके, और गाना डेडिकेट भी है?
8: सबसे पहले आपको भारती दीदी को, सोनू दीदी को, रेडियो तुम दोनों को सुनना है।
7: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
0: रेशमा बोलते हैं पठानपट्टी से।
1: जी, क्या हाल बा रेशमा जी?
0: ठीक बा, आप सुनाए?
1: जी, हमरो बढ़िया बा।
0: होगा नाश्ता पानी?
1: हाँ,
0: मिली गाना बा।
1: आज
0: सुने के मिल जाये? 5 बजे चलो तो मिल जाये सुने के ना।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, दिन वाला
1: बहुत सारे कॉल बाकी रहा था, कहीं आज बाजी
0: शाम को। जब आज बाजी पहुंचा तो कहाँ बाजी तो नहीं बाजी तो
1: बाजी सब आप
0: हमने के सब बढ़िया बात ने सुनाई लो।
1: हमने के भी सबसे बढ़िया बात
0: ये लोग सबको ठीक बा।
1: सबसे बढ़िया सब बताएंगे कौन गाना सुने के बाद
0: गाना सुना दी कौन सी गाना को सुना दी अपने पसंद से बढ़िया।
1: अरे इतना मेहनत से कॉल कर ले गानी तो रवि बता दी ना डायरेक्ट फरमाई सुन लिया गई।
0: मेहनत सुनने तो हो गए कॉल ला एक बार ट्राई हो तो गाने बज जाला को काले बारे तक हो जाला सब गा गेला आज तो मैं जल्दी लाग गई ना। और सब सुनाई?
1: और सब बढ़िया बा। अच्छा रेशमा जी, रहो घर के लिए पड़ी
0: पठानपट बजा को।
1: अच्छा,
0: आए कब तब भेजो तो जबाई बन दो थोड़ी सन।
1: जी जी, हम टाइम निकाल के कभी रोग से मिले।
0: हाँ, तो वैन तो
1: भेजो बावल जी को।
0: हाँ, तो भेज करे। इस बार तो समझ सब को ठीक है?
1: हाँ हाँ, सबके घर परिवार में भी सबके ठीक ठाक बा। तो गाना बता दी?
0: गाना बता दी हम ही। कौन सी गाना बा? अगर मैं गाना चाहो तो दूर मजन उठी जाता
1: गाना
0: सुन के। और सुन रहे हो सब मिलो जितना लोग सुनो सब कुछ सुनी।
1: अरे ठीक बात है, और गाना प्ले करते हैं।
0: हाँ, कौन
1: सुन रही सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434403। 62042434403।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन बजते बजते है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, नमस्कार मैडम।
6: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: कमलेश बोल रहे हैं आरासमा से।
6: जी, क्या हाल चाल है कमलेश जी?
5: आप लोग अच्छा मैडम?
6: जी जी, आपका आवाज कट के आ रहा है।
5: अरे आप लोग ठीक है ना? सब कुछ सब ठीक है ना?
6: जी जी, यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया है।
5: मौसम तो बहुत ठंडा हुआ है, बारिश हो रहा है क्या उधर?
6: बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश के जैसा मौसम बनाया हुआ है।
5: ठंडा मौसम है ना। गाना सुनना चाहते हैं मैडम?
6: यही बता दीजिए।
5: हम तो गाना सुनना चाहते हैं, सब भूखे हुनर में हरारे मिले भगाना नहीं है, हिम्मत करो मुझे गाना सुनना है।
6: ओके, तो ये गाना किसी को सुनाना चाहिए?
5: और मुकेश मिस्त्री है, उनको सुनाना चाहते हैं। जितना लोग सुन रहे रेडियो रिमझिम आने वाले सब किसी को सुनाना चाहते हैं। अगर आपको
6: क्या करते हैं आप?
5: ऐसे हम काम करते हैं, हेल्पर ही है, घर बना रहे हैं।
6: अच्छा।
5: घर बना रहे हैं, जुड़ाई करते
6: हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ आए
5: थे? बहुत काम कर रहे हैं, काम के हैं। कौन ही मैडम, कहीं गई है क्या मैडम?
6: छुट्टी पे है।
5: कितना दिन के लिए गई?
6: अब आएंगे।
5: चलिए ठीक है मैडम, बताएगा ना शाम तक।
6: जी जी, बजेगा।
5: ठीक है मैडम, इंतजार करेंगे।
6: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
5: जी मैडम, नमस्कार।
6: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: हेलो,
1: नमस्कार भारती मैम।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
1: जी धन्यवाद, कैसी हैं मैम?
0: बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
1: जी हम भी मस्त हैं मैम। आज भारती मैम नहीं है, आपका नाम क्या है मैम?
0: जी मेरा नाम मनोरमा है।
1: जी मैम, तो हमको एक गाना सुनना है।
0: जी बता दीजिए।
1: गाना का नाम है मौसम की तरह तुम भी, यही वाला गाना सुनना है।
0: ओके, वैसे आपका नाम?
1: जी हम सतोजी बोल रहे हैं, गोपालगंज से।
0: गोपालगंज में कहाँ से?
1: चंद्रगोखर रोड है ना?
0: जी जी
1: जी वहीं से बोल रहे हैं मैम। भारती मैम हमको जानती है नहीं है क्या हुआ?
0: भारती मैम है, उनका दूसरा काम चल रहा है अभी।
1: जी मैम आज वो शो चलेगा योर वॉइस वाला?
0: जी जी चलेगा।
1: आप उसमें आती है तो अच्छा लगता है, आइएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: आपका मतलब फरमाइश सुन रहे थे, मतलब मैसेज शामिल कर रहे थे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था सुनने। सही है
0: जी।
1: जी मैम, तो हम कितने नंबर पे हैं?
0: अभी आपका अभी दूसरा कॉल है।
1: जी मैम हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि पहला कॉल लग जाए, लेकिन लग नहीं पाया, ऐसा नहीं किया।
0: कोई बात नहीं, दूसरा लग गया ना।
1: जी मैम दो मिनट पहले से ही लगा रहे थे कि लग जाए, इसलिए नहीं लग पाया नहीं। तो कब तक बजेगा
0: ये गाना आपका? शाम को बजेगा,
1: मतलब आज या कल?
0: आज ही बजेगा।
1: पहले वाला कॉल होगा तो नहीं बज पाएगा, नहीं तो कल।
0: जी
1: जी मैम, थैंक यू,
0: वेलकम,
1: बाय मैम,
0: बाय। रेडियो 90.4 FM कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके मैम।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले चलेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
9: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
12: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
14: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
17: Jab phone ring de bajte hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
18: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
19: नमस्कार मैम।
3: नमस्कार,
19: आप भारती बोल रही हैं?
3: नहीं, भारती नहीं बोल रही, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
19: अच्छा जी मैम, गाना जो ऐसी करते हैं, बोलते हैं कौन सा दिन को सुनाया जाता है?
3: पहले जो रिकॉर्डिंग होता है उसके बाद ये बजता है अगले दिन।
19: रिकॉर्डिंग तो उसी दिन होता है, सोमवार को होता है, बुधवार, शुक्रवार।
3: जी
19: मैम, आप कैसी हैं?
3: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
19: हम भी ठीक है मैम।
3: तब क्या हो रहा है?
19: अभी पूजा करके खाना बैठे हैं, खाना खाने तो मतलब याद हुआ तो टाइम देखे तो 12:20 हुआ तो सोचे क्या की आप कॉल करें, 2 मिनट बात करें।
18: बढ़िया, वैसे अपना नाम बता दीजिए।
19: मैम मेरे सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी नाम है सुनीता।
18: और कहाँ से?
19: जियापुर से मैम।
18: ओके, तो फरमाइश बता दीजिए।
19: मैम जो हम साथ साथ में के हैं, मैया जरूदा रन है।
18: अच्छा हाँ,
19: गाना बजा दीजिए मैम।
18: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
19: सबसे पहले आपको आज इतना रेडियो म्यूजिक पर सुनते हैं, सभी भाई और बहनों को सभी को सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे।
18: जी तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
19: थैंक यू मैम।
18: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैं शाहबुद्दीन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, हरियाणा से।
0: अच्छा जी, तो क्या हो रहा है फिर?
1: काम हो रहा है।
0: अच्छा,
1: कॉल तो लगता नहीं, पता नहीं कैसे कॉल लग गया आज।
0: चलिए अब लग गया ना।
1: हाँ लग गया है।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: अपना नाम बता दीजिए।
0: जी मेरा नाम,
1: हाँ
0: जी मेरा नाम मनोरमा है।
1: अच्छा
0: जी,
1: आपसे पहली दफा बात हो रही है ना। मैं रेडियो पर बहुत ही सुनता हूँ, मैं रेडियो सुनता हूँ 2014 से, लेकिन वो काफी कम सुनता था, टाइम नहीं मिलता है ना।
0: अच्छा, तो फिर गाना बता।
1: सॉन्ग का नाम है छोड़ के न जाओ या कुछ को मैंने दिल दे दिया, और एक लाइन है सुना दूं?
0: जी बिल्कुल।
1: पहले मैं लाइन सुनाता हूँ, ठीक है?
0: जी सुनाइए।
1: दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दे नतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, और तुम कहते तो आंखों में बुला लेते, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या।
0: अच्छा जी,
1: ठीक है सुना दीजिएगा।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी शुक्रिया।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं।

0: हेलो, नमस्ते
1: नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
0: मैडम जी,
1: जी बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: भाई अच्छा है।
1: जी क्या हो रहा है?
0: आपका फोन लगा लगा तभी लगे है, मैं व्यस्त करता है।
1: जी, क्या ना बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो इसकी वजह से।
0: हाँ फोन नहीं लगते है, व्यस्त
1: चलिए अब लग गया ना।
0: जी लग गया।
1: तो नाम बता दीजिए अपना।
0: भोरे से नेहा पांडे,
1: अच्छा नेहा।
0: नेहा पांडे भोरे से
1: अच्छा नेहा जी,
0: जी,
1: चलिए बढ़िया। कहाँ से बोल रही है नेहा जी? बोल
0: बोरे से।
1: रहे। अच्छा
0: और अपना समाचार बताइए, कैसे है? अच्छा है ना?
1: जी, हम बढ़िया हैं। तब खाना वाना खा लिया आप?
0: अभी नहीं, नाश्ता हुआ, खाना
1: अच्छा
0: वाला 2 बजे खाना
1: बात तो सही है।
0: बन रहा है। फरमाइश
1: चलिए अच्छी बात है। अब ऐसे आज की फरमाइश क्या है?
0: आई, इसके मैं पागल हो गया, दीवाना चेहरे यही जाना।
1: और ये गाना किस किस को सुनवाना चाहती हैं आप?
0: आपको जितना रेडियो आगे सब सुनता है, दो सब सुनता है सबसे साथ।
1: अच्छा चलिए ठीक है। नेहा नेहा जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैडम जी, गाना मेरा सुना दिया उस दिन वाला, तुम्हार वाला
1: आप नहीं सुनी है? अच्छा
0: फरमाइश खत्म हो गया है, गाना खाली सुन।
1: हाँ, तो आपका फरमाइश बज चुका है। अब ये जो है वो कोशिश रहेगा, मतलब आज ही बजे। अगर आज बजे तो कल, मतलब कंफर्म है कि कल बजेगा। जी ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैडम जी, नमस्ते।
1: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: शुक्रवार को
1: सोमवार को लगा रही थी, नहीं लगा, लगाते लगाते बंद हो गया आपका मोबाइल।
2: जी जी, रेडियो तो बताया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग, रेडियो तो बताया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग बुधवार और शुक्रवार को।
1: हाँ हाँ, मालूम है मुझे। मैं फोन करती हूँ, इससे कॉल करती हूँ हमेशा।
2: जी जी, आपका नाम?
1: मनीषा कुमारी सरिया सुंदर।
2: अच्छा मनीषा जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना बताइए।
2: जी मेरा भी अच्छा। अब क्या कर रही हैं?
1: अभी बैठी थी, कॉल लगा रही हूँ।
2: अच्छा, तब खाना हो गया?
1: हाँ हो गया। आपका?
2: जी मेरा भी।
1: चलिए सब ठीक है। गाना सुना दीजिए।
2: बता दीजिए।
1: जी
2: एक बार फिर। जी जी, एक बार फिर से बता दीजिए।
1: बिहार मस्ती मुकुंद बरन जी।
2: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
1: जी मैम, आपको और श्रुति मैम को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को और भारती मैम को और रेडियो रिंकू सुनने वाले सभी दोस्तों को और सभी आरजू को।
2: ओके, वैसे मनीषा जी, आप रेडियो रिंकू को कैसे सुनती हैं?
1: मैं 2008 से।
2: ओके, मतलब किस माध्यम से सुनती हैं? जैसे कि मतलब ऐप के जरिए या फिर FM के माध्यम से?
1: मैं रेडियो से सुनती हूँ।
2: रेडियो पे सुनती हैं?
1: हाँ।
2: चलिए बहुत अच्छा।
1: जब श्रुति मैम आती थी तब से हम सुन रहे हैं।
2: अच्छा जी।
1: तो नए में आई थी तो हम लोग कॉल करते थे।
2: अच्छा, मतलब आप 2008 में ही सुनती हैं, है ना?
1: हाँ, हम छोटे थे तब से सुनते हैं।
2: रेडियो रिंगटोन का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
1: सब कार्यक्रम अच्छा लगता है मुझे। हेलो आई चॉइस और भोजपुरी एक्सप्रेस, प्योर वॉइस, प्योर चॉइस, सब सुनती।
2: जी जी, बहुत अच्छा। ठीक है मनीषा जी, आपका गाना प्ले करें।
1: जी मैम।
2: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: बाय मैम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: Excuse me boss, you have a text message।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे समय 9:21 और हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने के फरमाइश करें आप तो पुराने गाने के फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और जब आप पुराने गाने का फरमाइश करेंगे तो आपकी मैसेज सीरियसली शामिल की जाएगी और आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी की जाएगी, बशर्ते आपको पुराने गाने की फरमाइश करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 72 77 16 65 96 पे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू भाई जी, मैं आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। रोहित जी क्या हाल चाल है आपका और कैसे हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सोनू भैया कैसे हैं आप, आशा चौहान विलेज सराफरा परसौनी से जुड़ी हैं, तो बिल्कुल बढ़िया हैं और अपना भी बताएं। आगे मैसेज अभी दो ही पहुंचे हुए, तो चलिए अपने तरफ से एक गाने प्ले करते हैं। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो अभी मैसेज करें। जितनी जल्दी मैसेज करेंगे उतनी जल्दी आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो फिलहाल एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। रेडियो रमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और अभी अभी मैसेज हमारे पास एक पहुंच चुका और इनके तरफ से लिखा गया है कि मेरा नाम है सौम्या मिश्रा और मेरी बहन का नाम है श्रेया मिश्रा और मेरे भाई का नाम है अतिक्ष मिश्रा। मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले के गणेश स्थान गाँव के रहने वाली हूँ और मेरे भाई का नाम जरूर ले तो बिल्कुल ले ही चुके हैं। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, सावन को आने दो। इनके फरमाइश कल भी पूरे किए थे अंत में, लेकिन अभी मेरे पास मैसेज नहीं पहुंचा हुआ है तो इनकी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो आप भी जल्दी जल्दी मैसेज करें ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें। यहाँ पर एक और मैसेज पहुँचा, नमस्ते नमस्कार मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए, नाम शगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं।

काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी रेडियो 96.4 FM पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जैसे कि अभी गाने सुन रहे थे पुराने ओल्डीज गोल्ड या 90s के गाने, यदि आप पसंद करते हैं तो इस शो में अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ तो मैसेज को शामिल करते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि अगर गाने की फरमाइश नहीं आ रही है तो मेरा ही फरमाइश बजा दीजिए। और गाने का बोल देते हैं, कितना सुंदर कितना प्यारा यह संसार है, इस संसार में सबसे प्यारा भाई बहन का प्यार है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय नमस्ते नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? और मैं अंजलि गोपालगंज से, तो बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि हमें भी गाना सुनना है, बिल्कुल सुनाएंगे, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं रोहित जी की और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
5: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: Excuse me boss, you have a text message।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और समय हो रहे हैं 9:41। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया कि सुनो भाई जी, गाना प्ले करने के लिए दिल से शुक्रिया, और गाना कैसा लगा। तो बिल्कुल बहुत प्यारा सॉन्ग। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ तो मैसेज को रुकते हैं, और फिलहाल हम आज फिर से सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत एक छोटी सी सुझाव साझा करेंगे। यहाँ पे हम सभी जानेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू एक वायरल रोग है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर प्रायः दिन के समय काटता है और साफ रुके हुए पानी में पनपता है। इनके लक्षण है अचानक तेज बुखार 1 से 2 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक हो सकते हैं, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द, अत्यधिक कमजोरी और थकान, त्वचा पर लाल दाने और मतली जैसा मियाज होना, उल्टी होना, प्लेटलेट्स की संख्या कम होना इत्यादि इनके लक्षण हैं। इनके उपचार हैं, डेंगू का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज नहीं है। उपचार का उद्देश्य लक्षणों के नियंत्रित करना और शरीर में पानी की कमी को बचाना है, जैसे पर्याप्त आराम करें, अधिक मात्रा में पानी, ORS, नारियल पानी, सूप और अन्य तरल पदार्थ लें, और बुखार दर्द के लिए केवल पैरासीटामोल डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। एस्पिरिन, आइब्रोफेन और डाइक्लोफेनाक जैसी दर्द निवारक दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के न लें, क्योंकि ये रक्त स्राव का खतरा बढ़ा सकती है। डॉक्टर की सलाह अनुसार समय समय पर प्लेटलेट्स और अन्य आवश्यक जांच कराएं। यदि तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी नाक या मसूड़ों में खून आना, सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक कमजोरी या बेहोशी जैसे लक्षण हो तो तुरंत अस्पताल जाए। इनके बचाव हैं, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, पूरी बांह के कपड़े और मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें, पानी की टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें, घर और आसपास नियमित साफ सफाई रखें। इस सारे डेंगू से संबंधित जानकारी है। यदि आपको ऐसे कोई लक्षण या ऐसी समस्या आपके बीच उत्पन्न होती है तो आप उसे तुरंत अपने संज्ञान में ले और उसका उपचार कराएं, अस्पताल में जाएं, इसका इलाज कराएं, ताकि अब आप अपने आप को और आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। और साथ ही साथ यदि आस पड़ोस में भी ऐसी लक्षण किसी को दिखाई दे तो उसको भी मदद करें। ऐसी जानकारी हर रोज दी जा रही है रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आप सब इसका इस्तेमाल करें अपने जीवन शैली में। फिलहाल आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं, और आगे मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि सर मेरा सॉन्ग प्ले हो जाएगा, मैं सन्नी पटेल। तो बिल्कुल प्ले होगा, और लिखे हुए हैं कि हाय सर, मैं सन्नी पटेल दलिया से बहुत दिनों के बाद जुड़ चुका हूँ, और इस कार्यक्रम में सॉन्ग यारा तेरी यारी को याद करेगी, दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो बिल्कुल आपके गाने हम प्ले करेंगे, और वो भी अब भी। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज शामिल कर लें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सच में सुनो भैया, इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता भाई बहन का होता है, और भाई का किस्मत लिखने का अधिकार अगर बहन को होता तो भाई के ज़िंदगी में कोई गम ना होता। बिल्कुल। और इस मैसेज को पहुंचाने वाली आशा चौहान। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते भाई, कैसे हैं? ठीक है। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक है। मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। सविता चौहान भोजछपरा से जुड़ी हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि आपके कार्यक्रम को बहुत दिन से सुनता हूँ, फरमाइश पहली बार किया है। तो बिल्कुल पहली बार मैसेज पहुंचा हुआ है तो पूरा करने की कोशिश है, और स्वागत है आपका। और इस मैसेज को करते हैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्राम जय छपरा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। बने रहे हमारे साथ, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे बहुत जल्द। फिलहाल गाने हम प्ले करते हैं अगली सन्नी पटेल जी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: रेडियो एमसी 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और अभी हम सभी गाने सुन रहे थे, और यहाँ पे आगे मिसेस पहुँचा हुआ है, और यहाँ पे मिसेस करते हैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी, और एक पहली बार मिसेस किए हुए हैं, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती, कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ सुनवा दीजिए। तो बिल्कुल आपकी आपकी भी गाने हम प्ले करेंगे, और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे, मैसेज देख ले फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सुपर सॉन्ग लाजवाब MD 97 दरभंगा बजीतपुर से जुड़े हैं, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैं सन्नी पटेल आपको धन्यवाद है रेडियो एमसम सुनने के लिए, और सुनते रहें बने रहें हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय नमस्ते सर क्या हाल है, मैं भी जुड़ गई हूँ तो बिल्कुल बढ़िया है, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करती हैं खुशी उपाध्याय पसरमा से, और आगे बढ़ते हैं अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं डॉक्टर साहब की, और सुनते हैं इनका पसंद के गाने हम सभी।
1: रे गा मा
2: तुम भी गाओ।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
2: बोलबम हर

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और यहाँ पे अगले मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग संतोष कुमार पटेल जी सूरत से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ था डॉक्टर साहब के तरफ से और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि मेरा गाना बजाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरा सॉन्ग आपको कैसा लगा बताएं। बिल्कुल प्यारा लगा और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। अंजलि की गोपालगंज से मैसेज की है और गाने के फरमाइश की है दिस रंगीला रंगीला। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी देशभक्ति रेडियो 90.4 FM पे।

सभी प्यारे संग रेडियो झीम 94 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि थैंक्स, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो झीम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय सर, मैं अंकुश कुमार और मैं पहली बार इस शो से जुड़ा हूँ और हमें भी गाना सुनना है। और गाने का बोल है, बरसात के मौसम में तन्हाई के अलम में। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और कहते हैं कि डेडिकेट रेडियो रमछम सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछम 94 FM पे।

रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे कमाल के सॉन्ग सुन रहे थे अंकुश की फरमाइश पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भैया क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। और मैं शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है। और सॉन्ग का बोल याद रख लूँ, याद रखिया चार अक्षर प्यार के। वाह, चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे देखे तो समय 10:15 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में, तो कार्यक्रम की समाप्ति का भी समय हो ही गया है, तो इस कार्यक्रम को भी समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ जो भी श्रोतागण छूट जा रहा है नाराज नहीं होना, समय होते तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। अब गाने समाप्त होने के बाद से मैसेज शामिल करने और गाने प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए अंतिम गाने इन्हीं का रहेगा, शहाबुद्दीन जी की, और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। तो आप सब सुनते रहें रेडियो रमझिम 94 एफएम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। मिलते हैं कल, नमस्कार।

0: गुला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: Hey, Christine, you're not wearing this dress. Vicky, where are you?
7: There's an important call.
6: Are you crazy? I can't talk right now.
7: It's editor of Style magazine.
8: Hi, Vishali. I'm from Style magazine.
6: Hey, actually, my show is just about to start. So can you call me by 10:30?
8: Wait, just a minute.
6: Bye.
8: I just need a small interview.
6: Yeah.
8: I won't take much time. Are you there, Vishali?

0: Are you there, Daddy? Daddy? Hello? Daddy?
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070065575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। और

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-6973।
4: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMAZ पर।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
8: ऑलराइट।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: All right.

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: ऑलराइट।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
3: All right.

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMAZ पर।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
2: ऑलराइट।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
9: All right.

0: Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under 20 Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक 15 मिनट तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
3: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
1: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
4: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की चार मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
5: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a विकसित भारत, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम देश के लिए जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। That should be the commitment.
1: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
6: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
7: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
8: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
9: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
8: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
10: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित, पोषित, कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बम्बई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण। कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
13: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
14: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
13: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
14: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
13: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
13: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
14: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
13: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
14: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779146164।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम का, योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852778291। जी हाँ, 9852788291। और कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277166596। तो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ। और आप सभी के लिए हमारी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और मूवी है कौन है जो सपनों में आया, और गाने के बोल हैं सबके चेहरों में। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक सॉन्ग, बताइएगा जरूर कि गाना कैसा लगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि हाय, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, पर अपना नाम जरूर बताइएगा ताकि मैं भी जान सकूँ आप कौन हैं और कहाँ से हैं। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, हमको भी गाना सुनना है और टाटा जमशेदपुर से, झारखंड से जुड़ चुका हूँ और मैं रेहान खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले हमारे पास और भी फरमाइश पहुँची हुई है। यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्ते राधे राधे भारती जी, मैं सोनी मैडम जी, हम भी जुड़ गए हैं। और राजकुमार राम MP बालाघाट श्लोक राइस मिल से, सुभाष भैया जी हमारे साथ में हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आप सभी सदस्यों का स्वागत है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा दो गाना है कृपया करके सुनाइएगा। और गाने के बोल हैं, जब हम जवां होंगे न जाने कहाँ होंगे। और भरत गुप्ता ग्राम गोपालपुर पोस्ट महुआ और पुलिस स्टेशन कटिया जिला गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश जो कि पहुँची हुई है, मिथुन शर्मा उत्तर टोला महाजा से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं और गाने के बोल हैं चांद की पार चलो। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग चांद के पार चलो, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, नंद कुमार शर्मा सिगरौली मध्य प्रदेश से। मैम एक गाना की फरमाइश है, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा हवा उठा और आग लगा, आग लग गई। धन्यवाद, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं मैम, कपिल विश्वकर्मा कोटा राजस्थान से, और गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं मैम कपिल, और लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते गुड आफ्टरनून मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ, मेरा नाम, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और मैं उत्तम सोनी हरपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था, सबके चेहरे में लाजवाब झकास। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपको अच्छा लगा। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं कि हम दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से आपका शो में जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बिना देरी किए हम फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, मैं राकेश भारती बक्सर से, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है पतझड़ी पवन सिंह के भोजपुरी सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, और गाने के बोल हैं सनहिया लगाओल बहुत बात नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो एंजॉय कीजिए सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि सुनो भैया मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरा भी एक गाना है, फरमाइश है। मेरा नाम सोना लाल है और मैं अरेराज का रहने वाला हूँ और गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ साउथ अफ्रीका से, सुन रहा हूँ और मैं, आप कैसी हैं? सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरैया कुचाईकोट गोपालगंज से। और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम। और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा सकती हैं क्या? और नहीं, आपका गाना आज नहीं बजा सकते क्योंकि सोमवार को ही आपका गाना प्ले किए थे। कोई नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सभी के गाने को एंजॉय कीजिए। अच्छा अच्छा फरमाइश तो आ ही रहा है। और इसी के साथ हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दुर्गेश आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली मैसेज पहुंची है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं रोहित, मुझे भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो फरमाइश पहुंची है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
7: नमस्कार मैम
6: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जमानत पत्र बोल रहा हूँ परसरामपुर से।
6: हाँ जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको। हेलो
1: हाँ
6: गाना बताइए कौन सा गाना सुनना है।
1: गाने
6: क्लियर बोलिए आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दी। आपके पास कोई और भी है? थोड़ा धीरे बोलिएगा एक एक करके। एक बार और बता दीजिए। हेलो
1: हाँ
6: एक बार और बोलिएगा।
1: हम बानी सेंट्रल जेल में रहे तो नहीं थे जेल।
6: अच्छा सेंट्रल जेल।
1: हाँ
6: और गाना क्यों के सुनाऊं के बाद? बता दीजिए किसको?
1: रविंद्र को। और सब दोस्त रविंद्र का और रविंद्र रविंद्र सुनते हो सोताओ को।
6: जी जी तो गाना प्ले कर दिए हैं एंजॉय कीजिए रेडियो रंजीम पे 90.4 एफएम में।
1: क्या?
6: ये मैं नहीं बता सकती ये हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे। ओके

हम सोनू, आप कैसी हैं? नाइस सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, राधे राधे, हम भी जुड़ गए हैं। और मैयर एमपी से सुनील कुशवाहा जी, और नमस्कार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। आपसे दोस्ती करने के बाद महसूस हुआ, कौन कहता है तारे जमीन पर नहीं होते। नमस्कार जी, अभी अभी जुड़ा हूँ आवाज़ आपका सुनकर, दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, नमस्ते, मैं साधु राय छपरा से, और मुझे भी एक गाना सुनना है, तो गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और थोड़ा वेट कीजिए, आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो लिख रहे हैं कि भारती मैम, हम भी जुड़ गए हैं, और हम नया में, मेरा नाम समा, हमने गाने का लिंक भेज दिया है, और गाने के बोल हैं अंगूरी बदन। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे, और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अंगूरी अंगूरी
1: छमु छमु के अंगूरी बदन
0: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग अंगूरी अंगूरी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गाना बजाने के लिए धन्यवाद मैम, तो इन्जॉय किए, अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती जी, इरशाद मास्टर रोशन टेलर ग्राम धनु से आपके कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ, धनाव से और आपके कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ, क्या हाल चाल है मैडम, और भारती जी फरमाइश भेज सकते हैं क्या? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपको बता दूं कि आपकी फरमाइश मंगलवार को प्ले हुआ था और फिर से उसी दिन होगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और मैसेज करने वाले का तो नाम नहीं मालूम है, और बहुत बहुत स्वागत है लेकिन, और अपना नाम जरूर मेंशन करें ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं और कहां से हैं। और इसी के साथ हमारे पास अगली जो फरमाइश है पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी आज बहुत खुशी का बात है, और आज सोनी जी का घर नया मेहमान और आगमन हुआ है, और यानी भारती भतीजी का जन्म हुआ है, और इसी के उपलक्ष्य से मुझे एक सोहर सुनना है और सुनाना है सभी लिसनर को, लिंक भेज रहा हूँ, कृपया करके सुना दीजिएगा। और तो यहाँ गाने की लिंक पहुँच हुई है और गाने के बोल हैं, बबुआ हमारे डीएम हुई हैं, तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-300-99-66-999।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो लिख रहे हैं कि मेरा खबर ठीक है मैम, बताइए ठीक है ना। और सागर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर असम से मैसेज करने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमें भी गाना सुनना है और लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज़ सुनवा दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, कल ही आपको गाना सुनाए थे, और अगले बुधवार को फिर सुनिएगा अपना गाना। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं भारती जी गुड आफ्टरनून, भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से, और नाइस सॉन्ग कॉन्ग्रेचुलेसन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं कि हेलो हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खासे सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, हमें गाना सुनना है। और गाने के बोल हैं सावन आए बादल छाए और साजन के घर मूवी का है, और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। और क्यों भारती जी मेरा मैसेज कौन से डस्टबिन में पहुँचाते हो जो दिखता नहीं है? तो ऐसा नहीं है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका भी मैसेज मैंने शामिल कर दिया है। और इसी के साथ मेरे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और भरत गुप्ता जी गाना सुनना चाहते हैं जो कि गोपालपुर के रहने वाले हैं, और गाना सुनना है जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ेंगे और हमारे पास यहां एक और मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती जी, क्या हालवा, और गाना सुना दें, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू मैम।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: नूर हसना से।
0: हाँ जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: दिल मेरा तोड़ दिया उसने।
0: और सॉन्ग डेडिकेट है? अच्छा जी, चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: हाय मैं सिमरन बोल रही हूँ, अपना नाम और मैसेज एक भी।
1: सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो।

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानूं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार मैम जी, कैसी हैं आप, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, दिलीप शर्मा पटरा टोला से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो कुंदन कुमार यादव, बिहार मुजफ्फरपुर से सॉन्ग सुनना है और गाने की बोल पहुंची हुई है, तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं लूँगी एक और कॉल, उसके बाद मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते मैम।
0: जी जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: जी थैंक यू मैम। दिव्या मैम?
0: नहीं
1: हाँ।
0: मेरा नाम भारती है।
1: सॉरी मैम।
0: कोई नहीं, आप बताइए आपका नाम।
1: विमलेश शर्मा।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: हेमबरगा से।
0: अच्छा जी, और बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: कोई भी सुना दीजिए।
0: नहीं नहीं, आप बताइए, आप अपनी पसंद से बताइए।
1: तो खेसारी लाल का भक्ति सॉन्ग सुना दीजिए। बोलो उनका
0: भक्ति सॉन्ग मैं नहीं सुना सकती क्योंकि इसमें भक्ति सॉन्ग नहीं चलता है।
1: तो भोजपुरी चलता है ना, मेरे को पता है, पहले वो चलता था।
0: जी जी भोजपुरी सॉन्ग चलेगा लेकिन भक्ति सॉन्ग नहीं चलेगा।
1: अच्छा ठीक है, तो नीलकमल सिंह का कोई भी सुना दीजिए।
0: और सॉन्ग डेडिकेट भी रहेगा।
1: हाँ, सबसे पहले आपको और सुनेले सभी श्रोताओं को।
0: ओके, तो चलिए गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: गानों वाला 90.4 धमाकेदार।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: से ब्रेक के बाद और योर वॉइस योर चॉइस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेडियो रंजन 90.4 एफएम में आप सुन रहे हैं और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैं डॉक्टर उमोद कुशवाहा, ग्राम जई छपरा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से, और मुझे भी गाना सुनना है और डेडिकेट रहेगा राम बहादुर भाई जी को, और प्लीज़ प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और हम भी रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं और रंजीत कुमार लकड़ी दरगाह से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, नमस्कार, कैसे हो? पवन साह, ग्राम मड़ैया, खगड़िया, बिहार से जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लेकिन इससे पहले मेरे पास जो गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं हमको गाना सुनना है और टाटा जमशेदपुर से, झारखंड से जुड़ा हूँ और मेरा नाम रेहान खान है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल है तेरा मेरा है प्यार अमर। तो चलिए बिना देरी के गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना रेहान जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती मैम, और सचिन कुशवाहा पूना से, और मेरे को भी गाना सुनना है, गाना सुना दीजिएगा। और लिख रहे हैं प्लीज़ मैडम हमारा भी सॉन्ग सुना दीजिएगा, सुनाने का कष्ट कीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप, और आपका भी सॉन्ग चलेगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास जो फरमाइश पहुँची हुई थी पवन शाह जी की तरफ से, और गाने के बोल हैं तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो चलिए बिना देरी किए मोहरम मूवी का गाना प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
10: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ही कमी है, क्योंकि 3:52 हो चुके हैं। और बिना देरी किए अगला फरमाइश जो कि हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हमको एक गाना सुना दीजिएगा, और मैं MD अशान अंसारी पर चौक से, और बोल रहे हैं कि रहने वाले समस्तीपुर से, और गाना सुनना है सैया जी दिलवा मांगे नी गमछा बिछाई। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, सिया जो दिलवा मांगे नहीं गमछा बिछाए के। तो चलिए बिना देरी किए आप सभी के लिए यहाँ एक और फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहा है कि गाना सुनना है और गाने के बोल हैं, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और मैसेज करने वाले हैं अमरजीत शुक्ला ओझलिया गोपालगंज से, और अभी दुबई में हैं। और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और चलिए बिना देरी कि आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती जी, मैं सचिन कुशवाहा पूना से, और मेरे को एक गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं ले मैं सैया आ गई। तो चलिए बिना देरी किए गाना को प्ले करेंगे, और इसी गाने के साथ लूँगी आप सभी से आज के लिए बस इतना ही।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पे सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच चुके हैं। और चलिए बिना देरी किए शो को समाप्त करते हैं और इन्जॉय कीजिए ये प्यारा सा सॉन्ग सभी के साथ।

0: घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 6800348652 पे।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमा जेड पर।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: All right.

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
5: रेडियो रिमझिम,
4: सुनो दिल से।

0: बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22-567 या 97-714-86-164।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो MJ।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम।
9: सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
4: Now pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
4: Pick it up,
5: hello.
4: Now pick your phone up,
5: hello.
6: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
7: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त RJ मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
8: हेलो,
3: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: जी मैं मनन बोल रहा हूँ।
3: जी जी क्या हाल चाल है?
5: हाल चाल तो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि यहाँ धूप निकलता है तो खूब गर्मी, धूप नहीं रहता है तो मस्ता गर्मी है। ये गाना सुनवाइएगा मैडम। गाना तो अपना नहीं है तो दूसरे जो है मिल जाएगा। तो गाना है बरसात का मौसम है तो जब दूर ना जाइए उसका गाना है जाएगा। यही गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
3: और डेडिकेट भी है?
5: और डेडिकेट आपको रहेगा, महावीर जी को रहेगा, सोनी जी को। सोनी जी का प्रोग्राम मतलब सुनने को नहीं मिलता है।
3: सोनी जी छुट्टी पे है तो फिर कैसे?
5: तो आप ही सब कवर कर रही है ना? तब तो आपको बहुत मेहनत पड़ जाता होगा।
3: नहीं भारती जी भी है।
5: अच्छा भारती जी नहीं बोल रहे हैं?
3: नहीं मैं भारती नहीं बोल रही हूँ।
5: आपका शुभ नाम मैडम?
3: जी मेरा नाम मनोरमा है।
5: अच्छा मनोरमा जी, मनोरमा जी से आज पहली बार बात हो रहा है। बात होते हैं
3: जी जी।
5: तो आप अभी नए ज्वाइन किए हैं क्या?
3: जी जी।
5: और ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आप अच्छे जगह पर लगे हैं तो अच्छा प्रोग्राम मनोरमा मनोरमा चलिए ठीक है नाम को याद रखेंगे। आज पहली बार क्योंकि बात हो रहा है ना, तो पहले तो सोनी जी से हम बात किया करते थे, उससे पहले दिव्या थी, अब आते भी आई है, आज मनोरमा जी से बात हो रहा है ना। ये भी बहुत हमको खुशी हो रहा है कि लोग नए नए आदमी आ रहे हैं। तो ये गाना जो है मैडम सुनवा दीजिएगा।
3: वैसे आप ये रेडियो रिंगिंग कैसे सुनते हैं?
5: बहुत दिन से सुनते हैं, लेकिन सब सब प्रोग्राम हम नहीं रहते हैं, इसी में रहते हैं जो आपसे हम बात करते हैं।
3: हेलो माय चॉइस।
5: हाँ और वो एक बजे वाला प्रोग्राम आता है ना, तो उसमें तो हम मैसेज नहीं डालते, हम अपना गाना का ये करते हैं और कॉल करते हैं, तो उसमें कॉल करिंग होता है, कोई उठाता भी नहीं है ना। तो कभी कभी कॉल करके आज मैच करके छोड़ देते हैं, कभी भी नहीं लगा
3: मेरा।
5: तो आप लोग मैसेज के ई मेल लगे रहते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं?
3: कॉल भी उठता है लेकिन अब सब तो देखना पड़ता है ना।
5: आप रहेंगे क्या एक बजे वाला प्रोग्राम में?
3: नहीं वो भारती चलाएंगे अभी।
5: हम उधर तो मीरगंज कपूरा से बोल रहे हैं। मीरगंज है लगे एक किलोमीटर का फासला, मीरगंज और मेरा घर का एक किलोमीटर हमें पड़ेगा। हम लोग के पास रेडियो बैठता है तो बहुत क्लियर बैठता है रेडियो, बहुत बेहतरीन साउंड में बैठता है, वो भी साउंड आपको देश में हम बजाते हैं रेडियो यहाँ।
3: अच्छा मतलब ये रेडियो आप कैसे सुनते हैं, जैसे कि मतलब ऐप के जरिए या फिर एफएम?
5: नहीं ऐप डायरेक्ट रेडियो खरीद रहे हैं, दो दो रेडियो खरीद रहे हैं, एक रेडियो खरीदे 1000 रुपए का, एक खरीदे 3000 रुपए का रेडियो। रेडियो का आवाज हमको ट्यूनिंग करके सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। तो पुराने रेडियो वाले नए जमाने से नहीं है, मोबाइल पर तो गाना सुन लेता है, फिर भी रेडियो का

0: यानी जो शिलोंग में चलाते थे पहले उसका टाइम हम लोग गाना करना के हैं तो हम लोग बहुत पुराने रेडियो प्रेमी हैं। हम लोग रेडियो हम लोग का चॉइस ज्यादा होता है वैसे मोबाइल वोबाइल और ये जो है ना MP3 बजा लो ढाक ढोक ये वाला नहीं, जो ट्यूनिंग करके हाथ में लेके मोबाइल जो सुनने का मजा होता है सबसे जो हमको दूसरा अच्छा नहीं लगता। और ये रेंजिंग खोला था तो जब ये रेडियो स्टेशन खोला पहली बार जब गोपालगंज में तो हम उस टाइम पे थे सऊदी है ना, तो सऊदी में जब सोने के अरे रेडियो स्टेशन हमारा गोपालगंज में खुल गया इतना खुशी हुआ इतना हुआ खुशी है ना। अब सऊदी से जब हम आए तो रेडियो लेकर के आए इतना खुशी था। ठीक है मैडम सब रख रहा है तो ये जाना जो है बरसात का मौसम है तो सब भूल में
1: गाना प्ले करते हैं आपका।
0: ओके थैंक यू
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगी 90.4 FM।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ जी, गाना सुनना है
1: जी, बता दीजिए।
0: कार्यक्रम का कोई साउंड है, गाना सुना दीजिए बलराम का।
1: कोई भी?
0: हाँ जी, नंबर तो आपका लगता नहीं है
1: जी। क्या ना, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं किसी को।
0: अच्छा, गाना आज शाम को सुना दीजिए गाना।
1: जी जी, आपके पास अभी शोर हो रहा है क्या?
0: काम कर रहे हैं हम लोग।
1: अच्छा जी, किस चीज का काम करते हैं आप?
0: हम लोग का तो अपना मिशन का राज प्रोग्राम करता है।
1: अच्छा अच्छा, बढ़िया। वैसे आपका नाम?
0: मेरा नाम परमात्मा कुमार है जी।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
0: काला मठी में गोपाल जिले से, काया खास के बगल में पड़ती। काया खास से बोल रहा हूँ, अभी तो घर मेरा वही है।
1: अच्छा,
0: अभी बाहर में है, होशियारपुर में जाना।
1: मतलब अभी किस जगह हैं आप?
0: अभी हम होशियारपुर में है, पंजाब में।
1: अच्छा अच्छा, तो जब आप इतना मुश्किल से कॉल किए हैं तो आप अपनी फरमाइश बता दीजिए।
0: नहीं, अपनी पसंद का सुना दीजिए, कोई भी बढ़िया
1: बोलबम कोई भी।
0: हाँ जी, मौसम कैसा है अपने गोपालगंज में?
1: गोपालगंज का मौसम गर्मी तो पड़ रही है।
0: गर्मी? बारिश नहीं हो रहा है?
1: बारिश हुई थी, रात में हुई थी थोड़ा सा।
0: हम लोग के पास में रात में बारिश हुआ, कल भी रात में।

0: यार, सुबह भी हुआ थोड़ा सा 8 बजे, अभी तो दिन बना हुआ है, धूप निकला हुआ है, काम कर रहे हैं
1: हम। हाँ, इधर भी वैसे ही।
0: बहुत ही कॉल लगा रहे हैं आपको, कॉल तो है ना, पिछले बार सोमवार को लगाए थे तो कॉल उठा के बोले नहीं यार,
1: कॉल तो उठता है ना।
0: हाँ जी, रिसीव करके बोल नहीं रहे थे या तो उठा दिया।
1: जी जी, आवाज क्लियर नहीं आता है ना, तो
0: मैंने फोन किए थे पिछले सोमवार को।
1: जी,
0: कॉल करके तो बोल नहीं रहे, उधर से फोन काट दिया।
1: नहीं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसकी वजह से। जी बिल्कुल, तो आप क्या गाना प्ले करते हैं? जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता

0: अमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
8: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: नमस्कार जी।
10: नमस्कार,
9: राजस्थान में है अभी और कौन सी है
10: बता दीजिए।
9: आवारा पंछी का
10: जी
9: बोल रहे हैं। आवारा पंछी का कौन सी है? आवारा पंछी का कोई भी सॉन्ग।
10: ओके, वैसे आपका नाम?
9: मेरा नाम नगरवी कुमार बोल रहे
10: हैं। ओके,
9: मेरा नाम नगरवी बोल रहे हैं। नाम क्या
10: क्या हो रहा है अभी?
9: अभी जो हम राजस्थान में इधर बिल्डिंग विल्डिंग काम करते हैं इधर, और हम लोग बहुत दिनों से सुनते हैं कॉल करते हैं।
10: रेडियो रिंगिंग का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
9: अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा सॉफ्ट टाइम को उम्मीद करते थोड़ा बहुत कम सुनते हैं, लेकिन ये वाले जो सॉन्ग है सुनते हैं सबसे ज्यादा। आज गाना बज जाएगा ना? आज हमारा
10: जी। तो आप रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनते हैं?
9: हाँ, सुन रहे हैं।
10: कैसे सुनते हैं? ऐप के जरिए या फिर इंटरनेट के माध्यम
9: से? जरिए सुनते हैं ना, आप लोग सुनते हैं उसी के लिए किया है। चलिए
10: बढ़िया, ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: विकास कुमार बोल रहा हूँ हिमतापुर से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है विकास जी?
1: बढ़िया है जी, आप कैसे हैं मैम?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: सब बारिश हो रही हो रहा है गोपालगंज में?
0: नहीं बारिश तो नहीं हो रही है।
1: अच्छा, और बताइए क्या हाल चाल? मेरे तरफ नोएडा में हो रहा है।
0: अच्छा,
1: अभी सुबह सुबह हुआ था ना, कल परसों इतना ना पानी लग गया था कि रोड में आने में बहुत मुश्किल पड़ रहा था।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, जूता खोल करके हम लोग घुटना बराबर पानी लग गया था। इतना रोड में पानी लग गया था, क्या पता है पानी को।
0: बताइए कहीं कितना ज्यादा बारिश हो जा रहा है, इधर थोड़ा भी नहीं हो रहा है।
1: अब जहाँ धान का फसल है मैडम, वहाँ नहीं बारिश हो रहा है। भगवान भी नहीं सोचते है कि हाँ जहाँ धान का फसल है वहाँ हो जाए।
0: जी भगवान जी से बताना पड़ेगा।
1: बताना पड़ेगा।
0: हाँ बताइए, इधर पानी लग गया, इधर थोड़ा भी नहीं हो रहा है।
1: इधर पानी इतना ना रोड पर लग गया कि वो अगर 2-4-5 दिन अगर बारिश आज हो जाए बढ़िया से, पूरा बाढ़ आ जाएगा नोएडा में।
0: भगवान जी से बोलना पड़ेगा कि उधर बारिश ना हो, नहीं तो बाढ़ आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा।
1: भगवान जी नहीं सुन रहे हैं ना, भगवान जी आजकल चले गए मंदिर में, इसलिए नहीं सुन रहे।
0: जी
1: और बताइए, और सब बढ़िया है ना?
0: जी जी सब बढ़िया। जी तो आज का फरमाइश बता दीजिए।
1: आज का फरमाइश वही है, खेसारी लाल का जहाँ जहाँ डेग डाली, वो वाला गाना नहीं है? हाँ वही गाना हमको सुनना है।
0: जहाँ जहाँ डेग जहाँ रखू धनिया, वही वाला गाना।
1: हाँ वही वाला गाना।
0: अच्छा,
1: बहुत मस्त गाना है। आज सोचे की यही गाना आज सुनेंगे।
0: बहुत अच्छा गाना। विकास जी ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: ये मेरी भाभी बहुत सुनती है ना गाना ये।
0: अच्छा,
1: उनको ये बहुत फेवरेट है। सबसे पहले तो आपको सुनवाना है ना।
0: अच्छा,
1: अब जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं उनको।
0: चलिए ठीक है, तो विकास जी अपना गाना प्ले करते हैं।
1: जी ठीक है मैम, ओके।
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
1: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-09

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: मैडम एक गाना सुनना है।
0: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
1: ये शर्मा थावे से।
0: अच्छा,
1: ये शर्मा नाम है।
0: ओके,
1: थावे से बोल रहा हूँ।
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, आप लोग कैसे?
0: जी हम लोग भी बढ़िया। क्या हो रहा है?
1: कौन बोल रहे हैं? दुकान में अपना किराना का। आप कौन बोल रहे हैं?
0: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा, एक गाना सुना है प्रेम रोग का, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गाना है ना।
0: जी
1: सुनवा दीजिएगा। कब तक आएगा
0: ये गाना आपका? कोशिश है की आधी बजे।
1: आधी?
0: जी
1: बहुत बहुत मेहरबानी होगी बजेगी।
0: वैसे ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: ये सब बहुत लोग आते हैं इधर शाम को कान में अपना सब सुनेंगे। नाम किसको पता है? मौसम तो आज बहुत गर्म है।
0: बहुत ज्यादा
1: बारिश भी नहीं लगता है आएगा। रात को थोड़ा आया फिर उसके बाद बंद हो गया।
0: रात में आएगा।
1: चलिए ठीक है, सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए उसके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: ओके जी।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में।
1: नमस्कार भारती जी।
0: नमस्कार, नहीं भारती नहीं,
1: हाल चाल
0: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है। वो गाना है बोल बम के नारा है भाई ये बाबा एक सहारा।
0: ओके, गाना सुनवाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए।
1: लाल बाबू,
0: क्या हाल चाल है?
1: ठीक है।
0: सब क्या हो रहा है?
1: वो काम हो रहा था, आराम कर रहे थे, लगा रहे थे आधा घंटा पहले ही, तो मैं लग रहा था बिजी बता रहा था।
0: ओके, ना बहुत सारे कॉल आते रहते हैं तो
1: इसलिए इसका नंबर लग जाए। ठीक है, सूरज है, युविया है, रुपि है, विकास है और आप है आपका टीम बस।
0: वैसे आप रेडियो रिंगिंग को मतलब कैसे सुनते हैं?
1: सुबह में 2 घंटा और रात में तो 11 बजे।
0: ठीक है, और मतलब कैसे सुनते हैं? मोबाइल ऐप के जरिए या फिर इंटरनेट के माध्यम से?
1: नहीं, रेडियो भी है, घर पर जाते हैं तो रेडियो है, या नहीं तो मोबाइल है छोटा वाला, तो गोपालगंज में रहते हैं तो छोटा वाला मोबाइल चलाते हैं, वो 12 बजे से नहीं चलाती है और सुनते हैं हम 4 बजे। बाद ऐसा कॉल लगाते हैं, एक दो बार अगर लाइन मिल जाता है तो लग जाता है, तो काम के बिजी में रहता है तो नहीं लगा।
0: जी जी, शो में जुड़ते हैं ना?
1: हाँ, शो में जुड़ते हैं, चलो 2-3 दिन टाइम मिलता है तो लगाते हैं, सुनते ही रहते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी की बात है।
1: हम लोग 2014 से शुरू हुआ है ना, 9 से 10 से शुरू हुआ था, अभी से हम लोग, और तो स्टेशन सब बंद हो गया है, यही अपना गोपालगंज में कितना भाग से खुल गया है, तो और स्टेशन बंद है।
0: जी जी, ये सब आप लोग के द्वारा प्यार से ही चल रहा है?
1: चल रहा है, वाचा है, जो है वो स्टेशन है, चल रहा है।
0: जी, तो रेडियो रिंगिंग का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
1: अभी अच्छा लगता है, बीजाभार बंद हो गया, चल रहा
0: चलता है,
1: 30 दिन चलता है वो,
0: उसका भी टाइमिंग है।
1: बुधवार को चल रहा था और ये दिन बलता है, एक और है बीरा नहीं बोलते हैं, वो बीरा भी सुनते हैं, और ये लोकगीत हुआ 4 बजे से, टाइम बदल गया है।
0: जी जी, वो भी जी, अभी तो मतलब सावन आ गया तो उसमें कभी गीत को बजाया जाता है।
1: हाँ, वो भी जैसे सुबह में 5 बजे भक्ति हुआ, हम तो सुनते हैं सुबह,
0: बहुत बढ़िया।
1: वो एक और रात में वो दोनों जी नहीं है, वो देते हैं 1 घंटा के प्रोग्राम, तो भी हम लोग नियम से आते हैं, टाइम बताते हैं रात वाले, वो तो रिकॉर्डिंग हो जाता है। एक और जो समाचार अभी आता है, तो नियम से भी सुनते हैं
0: दोपहर में।
1: हाँ, दोपहर का सुबह में 7 बजे, रात को 9:05
0: को आता है। मतलब ऑल प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छी की बात है। तो अब तक सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा, सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो जी,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी हम रमजान बोल रहे
1: जी,
0: बनारस बनारस
1: जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: जी बनारस से बोल रहे हैं।
1: अच्छा कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, सब सुनना है।
1: बता दीजिए
0: जी, प्यार किया तो डालना क्या ये मूवी सुनना चाहते हैं।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
0: जी हम सुनेंगे, जी सोचा हम सभी सुनेंगे। उसमें का वो वाला गाना चलाइएगा, तुम बारे हम है हटके यारा दिल बीमारे झटके।
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: जी हम लोग पावर लूम बड़ा साड़ियों का काम करते हैं। बड़ा से साड़ियों का पावर लूम अपन काम करते रहते हैं, रेडियो रिमझिम सुनते रहते हैं मोबाइल पर।
1: तो आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं?
0: जी मोबाइल जो है उसी पर सुनते हैं।
1: मतलब रेडियो रिमझिम का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
0: जी सबसे पहले ये वाला जो है ये वो अच्छा लगता है।
1: जी हेलो मैं
0: जी, कब पहले होगा
1: ये गाना आपका? कल बजेगा?
0: जी ठीक,
1: और कोशिश रहेगा कि मतलब आज ही बजे, अगर आज नहीं बजे तो कल, तो पूरा कंफर्म है कि कल बजेगा। तो गाना प्ले करते हैं आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो,
1: नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: कैसी हो मैं?
1: जी मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ
1: जी। क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, बैठी हूँ फोन लगा रही।
1: अच्छा
0: जी, मैं गोपाल गंज से बोल रहे हैं
1: जी। आपका नाम?
0: सुरभि कुमारी।
1: सुरभि, एक बार फिर से नाम बता दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही अपनी।
0: सुरभि कुमारी बोल रही हूँ।
1: सुरभि?
0: हाँ।
1: अच्छा जी, सुरभि बहुत प्यारा नाम है
0: जी। मैंने उनको गाना सुना है
1: जी, बता दीजिए।
0: दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार कर।
1: क्या आप दो लाइन गा के सुना सकती हैं?
0: नहीं मुझे याद नहीं।
1: अरे कोई ना, बस आप दो लाइन गा लीजिए।
0: तो बताइए, उतना ही हमको याद था।
1: अच्छा जी, कोई बात नहीं जी। तो सुरभि जी, आप कहाँ से बोल रही हैं?
0: जी गोपालगंज से बोल रही हूँ, जीएमएस के पास।
1: गोपालगंज में कहाँ?
0: जीएमएस स्कूल में ना कॉलेज।
1: जी जी।
0: अच्छा, बात अच्छी है ना?
1: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ।
0: आपका आवाज बहुत अच्छा लगा है मुझे।
1: अच्छा जी।
0: मेरी बहन भी बोल रही थी कि मैम का आवाज बहुत ही अच्छा लगता है बोलती।
1: पर आप लोग से बहुत कम ही है।
0: मैं 19 से सुनती हूँ, 2019 से सुनती हूँ रेडियो रिंगिंग।
1: मतलब रेडियो रिंगिंग को आप कैसे सुनती हैं?
0: अभी फोन से सुनती हूँ, छोटा वाला फोन है उसी से सुनती हूँ। बड़ा वाला फोन था उसमें ऐप इंस्टॉल की थी, सुन रही थी। तो अभी अभी आई हूँ
1: जी।
0: तो मेरा पहला ही कॉल है लग रहा है।
1: नहीं, अभी तो 2-3 कॉल आ चुके हैं ना।
0: जो तुम अभी जा चुके हैं?
1: जी जी जी। जी सुरभि जी, आपका गाना प्ले करते हैं जी। सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87-894-18744।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
11: जी जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ तिरवीरवा से, और हमको गाना सुनना है हमराज फिल्म का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं।
3: ओके।
11: हाँ जी, और सबको डिलीकेट करना है, जो भी अपना प्रेमी है रेडियो एफएम का, ये सबको डिलीकेट कर दीजिएगा।
3: ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
11: जी, मैं तो अभी फिलहाल घर पे ही हूँ, बॉम्बे में रहता था, है ना। अभी तक सुनाएंगे
3: जी
11: ये गाना, कभी तक सुनाएंगे
3: ये गाना आपका आज ही 5-7।
11: ओके
3: जी, ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए इसके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
11: ओके जी।

0: हेलो
1: जी, बता रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: भारती जी बोल रही हैं?
1: नहीं,
2: सॉरी सॉरी सॉरी मैम। आप सब बोलिए, कैसी हैं?
1: जी सब बढ़िया है, अपना बताइए।
2: हम भी ठीक है मैम। आप और भारती मैम से दोनों आदमी से ना आवाज ना मिलता जा रहा है।
1: अच्छा जी,
2: जी इसीलिए पूछ दीजिए।
1: कोई बात नहीं है,
2: आप सब बोलिए।
1: जी सब बढ़िया, नाम बताइए।
2: है ना जी, सुनीता सुनीता देवी हाजियापुर से। सोमवार को फोन नहीं किए थे? जी मैम।
1: सब बताइए,
2: इस समय दोपहर ये खाना बनेगा?
1: सब नाश्ता तो हुआ ना?
2: जी मैम। आपका?
1: जी मेरा भी। तो घर परिवार में सबको ठीक है?
2: जी मैम, सब कोई ठीक है।
1: चलिए बढ़िया, तो फिर आपका फरमाइश बता दीजिए।
2: जी मैम, कौन दिन का एगो गाना नहीं है, नहीं हर मत जाएंगे उगा, वही वही सुनना है मैम।
1: अच्छा
2: जी जी,
1: और गाना डेडिकेट हुई है?
2: जी आपको, भारती मैम को, जितना रेडियो रिंगिंग सुनते हैं सभी भाइयों और बहनों को सुनाना चाहती हूँ।
1: ओके ठीक है सुनीता जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
2: थैंक यू मैम।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है क्या रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में?
0: प्रणाम
1: प्रणाम।
0: क्या हाल है
1: जी? बढ़िया बा, नाम बता दिया अपन और कहाँ से?
0: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली।
1: ओके,
0: आप कौन हो?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: अरे मनोरमा जी, आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: अरे इसीलिए ना, नहीं
0: आज आपसे पहली बार बात हो रही है। और बात जी कहाँ है? और सब सुनाइए।
1: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
0: सर फोन लगाते लंच हो गया, वही बोला कि आज भी आज ही लगाइए दे। करना भी नहीं था, आज किए तो आज मिल गए आप, नहीं करते तो आप मिलते नहीं। पूरे रिकॉर्डिंग आ चुका है
1: जी जी।
0: अरे जी, तो मुझे एक गाना सुना दीजिए। खेसारी लाल का है, कहीं और बोले मूवी का है, तुम्हारा बिना खाना पीना सब बेकार बा, जान तीनों तुम्हार बा। हाँ यही सुना दीजिएगा।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: भारती जी को, मनोरमा मैम को, सोनी जी को, और जितने हमारे नाम सुधारने वाले हैं सबको।
1: तो बताइए मौसम कैसा है उधर का?
0: बस मौसम में जो तो दो दिन पहले बारिश हुआ है बहुत में है, जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ है, वहाँ भी तो बारिश नहीं हो रही है।
1: नहीं नहीं, लेकिन ऐसा मतलब लग रहा है जैसे कि बारिश होगा।
0: हाँ वैसे यहाँ भी कभी बादल हो जा रहा है, कभी धूप निकल जा रहा है। अब हम भी तो वहीं के है ना, राजापति स्टेशन के पास, तो हमें भी पता है कि कैसे मौसम हो रहा है उधर। भारती जी को, सोनी जी को पता है, आपसे पहली बार हो रही है बात।
1: रेडियो रिजिंग आप कितने समय से सुन रहे हैं?
0: जी हम तो 4-5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जुड़ते नहीं थे। जुड़ रहे हैं, ये सोनी जी आई है, जब से जुड़ रहा हूँ 1.5 साल हो गया, 2 साल करीब हो गया। मैं जुड़ा नहीं हूँ लगातार, पहले मैं लिसनर हूँ। ऐसा कि 4 घंटे शो चलता है तो 4 घंटे इधर उधर कुछ नहीं, पूरे रेगुलर रहा हूँ।
1: चलिए
0: आपका गाँव कहाँ पड़ेगा? वही प्रॉपर गोपालगंज से। चलिए ठीक है,
1: ठीक है। तो
0: आप हो ही जाएगा, बात विचार बढ़ेगा तो ऐसे सोनी जी से, भारती जी से तो सब बात होती है, सब जानकारी हमारे बारे में।
1: वो क्या है रिकॉर्डिंग?
0: हाँ एक दिन आप किए हैं, उस दिन हम इंतजार किए, सुने तो हम सोचे कि मनोरमा जी कब चढ़ी है, हमारे से मिली नहीं है, मैं बराबर फोन करता हूँ, लेकिन आज मिली गए। चलिए बात करके बहुत अच्छा लगा
1: जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम। मैं
1: क्या हाल चाल है सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
1: अच्छा
0: जी जी जी मैम
1: जी।
0: अब मैम वहाँ का मौसम की क्या हाल चाल है मैम?
1: मौसम सुहाना हुआ है, कभी धूप हो रहा है।
0: जी जी
1: हवा चल रहा है।
0: जी जी जी मैम। बारिश नहीं है मैम?
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है
0: हमारे यहाँ। तो बारिश चालू है मैम, हल्का फुल्का बारिश चालू, बहुत अच्छा यहाँ का मौसम है मैम।
1: अभी बारिश हो रही है?
0: जी जी अभी बारिश चालू। जी जी जी मैम। आज एक फरमाइश है, गाने की बोल है पार्किंग में होके आवाज, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों। ठीक है मैम, गाना भजवाइए। धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97007006575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
11: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
11: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
13: कॉल करें 87894-18744।
14: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
13: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट, यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
13: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है, S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ 80029-94911। तो चलिए

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: हम गाना सुनना चाहते हैं मैडम।
1: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए आप अपना।
0: धर्मा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम श्यामदेव माझी हुआ।
1: अच्छा,
0: गाना सुना है? गाना है भोजपुरी में है मैडम।
1: बताइए।
0: मारो में बैठल बाड़े गौरा के दूल्हा हो, मारो में बैठल बाड़े गौरा के दूल्हा हो।

0: सखी।
1: ओके, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: मैं साथी लोग सुन रहे हैं, सबको सुनवाना है मैडम।
1: वैसे क्या हो रहा है अभी?
0: हाँ, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, छुट्टी पर हूँ आज, और मैं आपका रिमझिम रोज सुनता हूँ, बराबर सुनता हूँ मोबाइल से।
1: अच्छा,
0: ये है कि थोड़ा आज सोचे थे कि आज गाना कॉल करेंगे या सुनेंगे गाना आज।
1: आप रेडियो रिमझिम कितने समय से सुनते हैं?
0: जब से शुरू है तब से सुनते हैं मैडम।
1: अच्छा जी, तो मतलब पूछ रहे थे कि रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत मशहूर सुनता है, सुनते हैं। आपके रेडियो रिमझिम के मालिक हैं शंकर बाबू, उनका जो है भाषण ऐसी ऐसी देते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है जी।
1: अच्छा, रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं आप?
0: जब से मैंने हुआ है, चालू हुआ, तब से मैं सुनता हूँ। मेरा घर बिटवेर में हुआ, पंचायत में मेरा रेडियो रिमझिम है।
1: अच्छा,
0: हमारे ही पंचायत में है।
1: अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडियो रेडियो रिमझिम मतलब कैसे सुनते हैं? मोबाइल, मतलब
0: मोबाइल से मैडम, मोबाइल से।
1: अच्छा, ऐप के माध्यम से?
0: जी जी, ऐप के माध्यम से।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, अब आप लोग का दुआ प्यार से लगा।
0: बिल्कुल एकदम बिल्कुल, देखिए भगवान से दुआ करते हैं, पूरे रेडियो को रिमझिम परिवार को मैं दुआ करते हैं कि सभी लोग खुश रहे और रेडियो रिमझिम चलाते रहे, सबको मनोरंजन कराते रहे।
1: अब आप लोग का आशीर्वाद से ये
0: भगवान की कृपा है सर। जी जी
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैडम, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में।
1: हम खावर राजन मार्केट से बोलते हैं, रामाजी प्रसाद। आज पहले कॉल में आ गया था, नाम मटका ना खाने का।
0: ना ना, एक पहले कॉल आ गई हुआ। हाँ सुपर।
1: यार सुने बात, बोल बम के हाथी ना घोड़ा पैदल सवारी, हम तो है बाबा तोहरे दुआरी।
0: अच्छा, और गाना के लिए सुनवावे के भी बात,
1: जितना लोग सुन दो सब कुछ सुने। और कौन
0: एक बार फिर से बता दें,
1: हाथी ना घोड़ा पैदल सवारी, बाबा हम चलिए तोहरे दुआरी। जितना रेडियो रिंगजिम सुन दो सब कोई हम रहुआ, जितना लोग बाबा धन जा फिर से उस नत होई।
0: ठीक बताओ,
1: हाथी जी बोलो
0: गाना प्ले करी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
10: प्रसाद क्लिनिक,
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: नमस्ते संगीत भारती जी बोल रही
1: हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत स्क्रीम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते,
0: मैं मोहम्मद वकार कॉटन क्लास से बोल रहा हूँ। गाना की फरमाइश करनी
1: जी, बता दीजिए।
0: गाना है फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।
1: ओके, और गाने की बोल।
0: गाना का नाम है रे शावा शावा। क्या
1: एक बार फिर से बता दीजिए गाने की बोल।
0: गाने का बोल है
1: ओके,
0: गाना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है।
0: गाना आपको डेडिकेट करना
1: है। ओके, वैसे क्या हो रहा है अभी?
0: अभी मौसम अच्छा है
1: जी। खाना वाना हो गया आपका?
0: ये तो यार गाना लगा लेना यार।
1: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार,
1: हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के गुंधौर ग्राम सभा से बोल रहे हैं।
2: जी, और आपका नाम?
1: सूरज प्रजापति। मैम, मुझे एक गाना सुनना था।
2: बता दीजिए।
1: इतिहास फिल्म का अचको मचको एक गाना है।
2: जी जी
1: जी, वही सुनना है।
2: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
1: जी मैम।
2: जी, ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: हाँ, अजय प्रजापति है और लुकमान भाई है और एक दो लोग हैं और सुनने वाले सभी साथियों को।
2: ओके,
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, तो गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सभी सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने के आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ये बिरहा।

दोस्तों, मैं एक गीत आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। आज तक आप लोगों ने देश के जवान, सीमा के पहरू और जो अपनों को बलिदान दे करके देश को आजाद कराए और आज हिंदुस्तान के फौजी जवान उसे रक्षा कर रहे हैं, तो आज तक आप लोगों ने यही सुना होगा शहीद की गीत कि कोई फौजी जवान की गोली लग गई, कोई फौजी जवान बॉर्डर पर शहीद हो गया। लेकिन मैं ऐसे शहीद जवान का गाथा आप लोगों के बीच में सुना रहा हूं, जो कि आप लोग सोचेंगे कि कैसे मेरे देश के जवान हैं, जो कि अपने जीते जी रक्षा करते हुए घुट घुट करके जी करके और शहीद हुए। ऐसे वीर सपूत की कहानी है, ध्यान देंगे। कवि जी बड़ी अच्छी मार्मिक लाइन में भूमिका दिए हैं। सतनमन उन सपूतों को है साथियों, जो शहादत दिए इस वतन के लिए, सब गगन के सितारे निहारे उसे, जो बिचारे सिधारे चमन के लिए, लिख दिए खून से अपना इतिहास जो, जीना मरना मुनासिब यमन के लिए, हाल पूछे

मैं ऐसे सपूत की गाथा सुनाने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, जो कि बॉर्डर पर रक्षा करते हुए बीमार पड़ा। लेकिन कैसे बीमार पड़ा, न उसे गोली लगी न उसे बम लगा, लेकिन कौन बीमारी हुई और उस बॉर्डर पर क्या होता है बाबू शहीदों के साथ, फौजियों के साथ कौन सी घटना घटती है ड्यूटी देते हुए। कवि जी लिखे हैं, एक लाइन गजल है, गजल का लाइन बा मास्टर का।

यह गजल का लाइन हो कि अरे हुजूर आपका भी, हुजूर आपका भी, समाप्त फरमाएंगे। हुजूर

लेकिन गाना का भाव कवि जी लिखलन हन। कैसे लिखे, क्या लिखे? कि कलेजा का पूजाता कले

कहानी के करवा कैसन बा, कहाँ का कहानी बा, कहीं दूर का कहानी ना बा। आप लोगन के गाजीपुर जिला और बलिया के बॉर्डर, गाजीपुर बलिया के सरहद का कहानी बा। कहाँ का कहानी बा बाबू, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा। बिरहा एकदम शीशा जैसन झलके लगे, साफ साफ सबके समझ में चली आई। नजम के लाइन में कभी लिखलन है का,

प्रधानपुर जिला बलिया जो कि गाजीपुर का सरहद है। तो राम प्रकाश यादव वहीं के निवासी थे। उनके पत्नी का नाम क्या था? मेवाती देवी पत्नी, तीन ठो औलाद रहे।

0: राम प्रकाश यादव का पत्नी का नाम मेवाती देवी।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933

0: 5538
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: दुनून जना के सहयोग से बाबू भगवान 3 फूल खिलौले रहलन ओ परिवार में। 2 बेटा 1 बेटी। बड़ा बेटा रंजीत यादव, छोटा बेटा अजीत यादव और उससे छोटी बेटी थी, जिस बेटी का नाम रेणु यादव बताया गया। खेती बाड़ी कई के राम प्रकाश यादव, मेहनत मजदूरी परिश्रम कई के अपना तीनों लड़कन के अच्छा शिक्षा दिलन, पढ़ावे लिखावे, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ल, जिंदगी के गाड़ी आगे चलल, तो कवि जी भाव दिहलन, का दिहलन, तरजबा मास्टर तनी बड़ी के दा। यह तरज हो

लेकिन गाना का भाव दिखल गए, गाना के भाव बड़ा सुंदर लिखल गल का कि पढ़े पढ़ैया बहिनी भैया पढ़े।

काश बाबू तीनों लड़कन के मेहनत मजदूरी कही के पढ़ावत रहन, लेकिन जो बड़का लड़का रहलन रंजीत यादव धीरे धीरे इंटरमीडिएट पास कर गईलन। आ जब इंटरमीडिएट कैलन पास हो गईलन तब एनसीसी भी ले रहलन, ऐसे उनके ग्राफ मिलल और बहाली के तैयारी करे लगलन। रोज 3 बजे भोरवे में उठ के नींद अपन त्याग के 3 बजे भोरवे उठ के रंजीत यादव दौड़ लगावे, मेहनत करे, अखाड़े पर जाके लड़े। ए तरह धीरे धीरे समय बीतल, गाजीपुर में खुली बहाली भइल, बाबू नतीजा निकलल हका। तरत से सुंदर मास्टर हमरे बिरहा का भाव दिहल गई, बिरहा का फर्ज दिहल।

सन 2013 में गाजीपुर में खुली बहाली भइल और वो बहाली में ई रंजीत यादव जाके खड़ा भइलन ह। एनसीसी कैले रहलन, ग्राफ मिलल एनसीसी के, अंजाम ही निकलल की बहाल हो गइलन। ता बाबू बहाल भइलन त कहां केवना रेजिमेंट में गइलन, 19 कुमाऊं रेजिमेंट में इनकर बहाली भइल। आ जब बहाली हो गई तो रानी खेत में जाके ट्रेनिंग कैलन, कठोर ट्रेनिंग भइल, समय बितवलन, ओ ट्रेनिंग के समय बिता के ट्रेनिंग कई के आ जब पूर्ण भइलन तब का भइल बाबूजी तरज बा, का तरज कलाइन बा मास्टर।

0: लेकिन बाबू जब ड्यूटी पर जाए लगलन, ट्रेनिंग कैलन, छुट्टी मिलल, अलन घरे आ छुट्टी बीतौलन, अब ड्यूटी पर जात हवन। आ जब ड्यूटी पर जाए लगलन तो बाहरे एहर उनकर जोन दुल्हीन रहलिन पूजा जकरा से शादी भइल है रंजीत यादव के, जकरा से शादी भइल है दुल्हीन बड़ा खुश है। एक तरफ खुशी विवाह, एक तरफ गम विवाह की आज सैया से साथ छूटत बा। जातन ड्यूटी पर खुशी ये बात कबा कि हमार सैया मिलिट्री के जवान होन, फौजी जवान होन, जातन ड्यूटी पर। आ दुख ये बात कबा कि सैया हमार आज जातन ड्यूटी पर, आज से सैया हमार हमरे साथ ना रही। देखें मर्द मेहरारू का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता बाबू कुछ अजीब होला। दुल्हीन के आंख में आंसू बा,
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: लेकिन आरती का थाल सजौलीन पूजा, रंजीत यादव का पत्नी, और जब घर से निकले लगलन, ड्यूटी पर जाए लगलन, माई बाबू के पैर पकड़लन। हाँ, आ पैर पकड़ के छोट भाई अजीत जौन बणन, अजीत के देखत हुन एक तरफ, माई के देखत हुन एक तरफ, बाबू के देखत हुन, माई बाबू से आशीर्वाद लेके जब दुल्हन के पास गयलन, हाँ, तो दुल्हन के आंख में आंसू बाए भैया। आरती का थाल सजौली न, आरती का थाल सजा के एगो बात कहलिन अपने दुल्हे राजा रंजीत से, का कहली ना
11: कि पूजा दुल्हनिया बोलाली बचनिया सैया

इतने करिया की वर्दी के लाज रखिया, हमार मुंह मत देखिया, माई बाबू के मुंह मत देखिया, भाई के मुंह मत देखिया, अपने वर्दी के इज्जत रखिया, दुश्मन से कबो पीठ मत देखिया, दुश्मन से पीठ मत देखिया, दुश्मन के मार के यहा, आज अब मार के इबत

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट आंदोलनकारियों के लिए अपील की गई वीडियो को हटाने की चूक के लिए मेटा प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने मांगी माफी। बिहार में निवेश के लिए सरकार ने 10 कंपनियों के साथ किया समझौता। प्रस्तावित निवेश से 27,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद नगर निकाय के सफाई कर्मियों और चालकों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। हंगामे के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोटों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने नीट आंदोलनकारियों के लिए अपील की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को हटाने, बाल यौन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई चूक के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में मेटा ने स्वीकार किया कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग की माफी को भारतीय कानूनों की जीत बताया है।
1: ये जो जीत है, ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है। और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज उद्योग विभाग और विभिन्न औद्योगिक समूहों के बीच लगभग 51,600 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने आकाशवाणी समाचार को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में 10 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निवेश से सीधे 27,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। निवेश करने वाली कंपनियों में श्याम स्टील मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड, नक्षित आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, श्री लंगटा बाबा मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, अंकुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, श्री समृद्धि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, क्रिएटिव ग्रुप भारत साइंस एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और अनुभव अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बदलते समय में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन प्रशासन का अहम हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके प्रभावी उपयोग से जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी कर सकेंगे और कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
2: एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ लोग क्यों चिंतित है, और आपको एक रिपोर्ट की व्यवस्था हो जाएगी। अब इस ताकत को एक व्यक्ति से जोड़ने का समय आ गया और इसके माध्यम से कैसे माननीय विधायक माननीय मंत्री इस टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग कैसे अपने क्षेत्र के विकास की भी चिंता कर सकते हैं और प्रदेश में मंत्रीगण भी अपने डिपार्टमेंट।
0: मुख्यमंत्री आज विधानमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर संवेदनशीलता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजना निगरानी प्रणाली PMIS वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, विधान पार्षद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि AI से बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाया जाएगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है जो अस्पतालों में रेफरल और अन्य बेड की रियल टाइम उपलब्धता बता सकेगा।
3: एक ऐसा सॉफ्टवेयर AI के माध्यम से हम जनरेट कर रहे हैं जिससे आपको बेड की उपलब्धता के बारे में पता चल जाएगा। एक ऐसा वो IP फोन हम लगा रहे हैं हर स्वास्थ्य संस्था में, जहाँ से कि हम टेलीफोन से, लैंडलाइन से और उसमें वीडियो की व्यवस्था रहेगी, उससे भी हम जुड़ सकेंगे। तो हम AI के माध्यम से ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात है या फिर आपका बेड की उपलब्धता की बात है, तो ये सब चीजें हम जान जाएंगे।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार के स्कूलों में जल्द कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बदलते समय में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से जुड़ना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी की जा रही है।
4: ये तो समय की मांग है और पूरा विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ा रहा है, तो बिहार वैश्विक मंच पे कैसे आगे जाए इसके लिए बिहार भी एक बड़ी छलांग लगा रहा है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग में भी कंप्यूटर को अनिवार्य करने की इच्छा व्यक्त की है। अब इसको हम पूरी तरह से विभागीय स्तर पर इसको व्यवस्थित करके और इसकी नोटिफिकेशन जारी करें।
0: राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को हाफ डे कक्षाएं संचालित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के समय में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। नए आदेश के अनुसार शनिवार को विद्यालय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक विद्यालयों का समय पहले की तरह सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आज विधान परिषद सदस्य की शपथ ली। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें विधान पार्षद पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रकाश ने आभार प्रकट किया है।
5: सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी, भारत सरकार, नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, गठबंधन के तमाम नेताओं को धन्यवाद व्यक्त करेंगे। उन्होंने जो विश्वास जताया है और उस विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए और ज्यादा ऊर्जा के साथ जो जवाबदेही मिली है, उस जवाबदेही पर खड़ा उतरने के लिए लोगों की सेवा आगे भी करते रहेंगे।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित हो रहे भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। कल से ये समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि कंप्रेस्ड बायोगैस भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी।
1: अगर बहुत भारत के प्रॉपर बायो एग्रो रिसोर्सेज यानी गांव में खेती के बाद में जो बायो मास बच जाता है या फिर जो हमारे कैटल है, कैटल का काउ डंग है, उसका यूज कर सके, इस तरह की कई जो वेस्ट मटेरियल्स यूज होते हैं उनका अगर प्रॉपर यूज कर सके और उससे गैस बना सके तो देन इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गैस टू बी जनरेटेड।
0: पटना नगर निगम समेत प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज नगर निकाय कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की और अधिकतर मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। इस सकारात्मक बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है।
2: कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है और कुछ के लिए हमें राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी हमें लेनी पड़ेगी। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग का विमर्श हुआ है और उसको प्रसन्नता है कि सरकार के पॉजिटिव आश्वासन के बाद और एक सकारात्मक वार्ता के बाद उन्होंने अपने स्ट्राइक को।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मुंगेर के जमालपुर में जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास सहित अन्य परिसरों में तलाशी की है। हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया कि कंपनी पर निवेशकों को अधिक लाभ का झांसा देकर बड़ी राशि जुटाने का आरोप है। कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया जिले में सबसे अधिक 230.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में 130 मिलीमीटर, गया के वजीरगंज में 111, नवादा के हिसुआ में 104 और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 103.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 7 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: औरंगाबाद जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज सोलर मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ऊर्जा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से किया गया। मेले में उपभोक्ताओं को आधुनिक सौर ऊर्जा समाधान और सोलर रूफटॉप सिस्टम समेत योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जहानाबाद जिले में हर घर तिरंगा अभियान के सफल और व्यापक क्रियान्वयन हेतु जिले की जीविका दीदियों द्वारा 26,200 राष्ट्रीय तिरंगों का निर्माण किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड में ई शिक्षा कोष ऐप पर 73 शिक्षकों के ऑनलाइन अनुपस्थित रहने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए 24 घंटों के भीतर सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं जिले के लौरिया में पुलिस ने एक पिस्टल और अमेरिकी चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 6 अगस्त से 20 अगस्त तक पूरे शहर में 10 करोड़ नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करना और नशा मुक्त भारत के निर्माण में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट आंदोलनकारियों के लिए अपील की गई वीडियो को हटाने की चूक के लिए मेटा प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने मांगी माफी। बिहार में निवेश के लिए सरकार ने 10 कंपनियों के साथ किया समझौता, प्रस्तावित निवेश से 27,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद नगर निकाय के सफाई कर्मियों और चालकों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

यही होगा जो तू चाहती है। कभी दुश्मनों से पीठ नहीं दिखाऊंगा, वर्दी में दाग नहीं लगने दूंगा। कह करके पत्नी के माथा पूजा के माथा चुमलन है और घर से निकल गई ललन।

19 कुमाऊं रेजिमेंट में तब तक यह छोटका भाई जो अजीत हुआ इहो उत्तर प्रदेश पुलिस में बहाल हो गए रहलन। कवि जी लिखलन हा

पूजा दुल्हन समझा बुझा के अपने पति के आरती उतार के ड्यूटी पर भेज दिहलिन कि जाई रुआ चिंता मत करब, हम घर में बड़ बानी सबसे और सबके हम देखभाल करब। भाई ले गेलन हा भैया के बस पर, बस स्टैंड चढ़ा दिहलन, भैया के पांव छोलन है कलन की भैया कोनो घर का चिंता मत करिया, कोनो दिक्कत नहीं के हमहू के दो चार दिन में ड्यूटी पर जाए के बा। आखिरकार रंजीत चल गेलन, अजीत लवट के घरे इलन, दो चार पांच दिन बीतल, इन्हों के जब समय आये तैयो ड्यूटी पर चल गेलन। लेकिन समय धीरे धीरे जिंदगी के गाड़ी आगे बढ़ल बाबू, नतीजा निकलल का भैया

साते नाती के छाती से मेवाती राम प्रकाश साते अरे तबले गिराई दिहले।

0: अब तनी बात समझला, एकदम विरह का कहानी आप लोगों के साफ साफ समझ में चली आई। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई, 2023 आ गई। एकरा दरमियान जो छोट भाई रंजीत के छोट भाई यूपी पुलिस में अजीत रहलन, इन्हों के शादी ब्याह हो गई। इनका पत्नी का नाम प्रिया बतावल गई, प्रिया लड़की के नाम से शादी भइल। आज जब 2023 आइल बाबू, तो 2023 में ओ रंजीत यादव के गोद गुलजार हो गई। भगवान एक ठे बड़ा सुंदर फूल खिलौलन, पूजा के एक सुंदर बेटा भइलन। आज बेटा भइलन तो वही बेटा के बरही मनावल जात रहे। आज बेटा के बरही मनावल जात रहे, वो बरही में सब हित नात बहिन सब आइल बाटे, सब जुटल बा, खुशी का माहौल बा। लेकिन शायद हर खुशी भगवान कभी मंजूर ना होला। यही बीच में अचानक राम प्रकाश के लकवा मार दिया, प्रलायसी। खुशी का माहौल बा, आई खुशी के माहौल में राम प्रकाश के प्रलायसी हो गई, जेके देहात में लकवा कहल जाला। अब तो जितना भी खुशी रहे, थोड़ा देर खातिर गम में बदल गल। सब लोग राम प्रकाश के लेके हॉस्पिटल भगलन, बहुत उपचार भइल, बहुत दवा दारू भइल, लेकिन बाबू राम प्रकाश के कोई बचा ना पावल।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
1: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: 2024 में राम प्रकाश, 2024 में राम प्रकाश ये दुनिया के छोड़ बस लो, पूरा घर परिवार छोड़ के ये दुनिया के चल दियलन। आज जब चल दियलन तो सब लोग रोवत गावत बा, घर में बड़ा दुख बा। जवन लड़का रंजीत यादव का भइल बा। वो लड़का का नाम बड़ा प्यार से राज भी रखलन लोग, लेकिन लड़का के माथा पर कलंक लग गल कि लड़का के जौना दिन बरही भइल वही दिन राम प्रकाश के पैरालिसिस हो गए। गांव देहात में जन्मे करेला भी देखा होनी तो होके रही, लेकिन कलंक लग जाला आ कलंक का टीका बड़ा काला होखेला, ई कभी मिटे ना। आज सब लोग रोवत गावत बा, ओ समय के भाव दिहल गल। राम प्रकाश के घर में लाश पड़ल बा, आस पड़ोस गांव जवार हित नात बेटा बेटी सब जुटल बा राम प्रकाश के रोवत गावत बा। कैसे कभी जी भाव दिहलन हा,

बाबूजी तो राम प्रकाश ये दुनिया के छोड़ के चल गए, पूरा भरल पूरल घर परिवार, लेकिन दोनों भाई सोचलन की जो होके के तवन तो हो गल। बाबूजी चल गेलन लेकिन गांव जवारी मत कहे कि कौनो चीज में कमी कह दी हलस दोनों लड़का। दोनों भाई विचार कहके, दोनों भाई नौकरी करत पड़न, सर्विस करत पड़न, पैसा कौड़ी के कोनो भगवान दिक्कत नहीं देले हुआ। आज दोनों भाई विचार कहके पूरा गांव जवार के निमंत्रण दे के बुलौलन है, घर द्वार बुला के खाना खियोलन पियोलन, दान पुण्य कैलन है, बाबू का काम क्रिया बितौलन। लेकिन भयल का बाबू जी तरज बा का तर्ज का लाइन बा मास्टर तरज हो

बाबूजी कहते रही बिता के दोनों भाई अपना ड्यूटी पर चल गेलन बाबू। आ जब ड्यूटी पर चल गेलन धीरे धीरे समय बीतत बाद दोनों भाई ड्यूटी करत पड़न, लेकिन ओ पीरियड में कुछ दिन के बाद रंजीत यादव का हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा जगह पर जेके लेह लद्दाख बोलल जाला, जहाँ भी मतलब इतनी ठंडी आप लोगन टेलीविजन पर लेह लद्दाख के सीन देखले हुयन भैया, हमेशा 24 घंटा बर्फ जमल रहेला और वो बर्फ पर ड्यूटी देवे के पड़ेला। तब लेह लद्दाख में ड्यूटी लगल बा और लेह लद्दाख में ड्यूटी करे लगलन। लेह लद्दाख में ड्यूटी करत हुन बहुत दिन तक लद्दाख में ड्यूटी कैलन है, लेकिन लेह लद्दाख में सांस भी लिहल मुश्किल हो जाला, वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होला, इतना ऊंचाई पर बटे लेह लद्दाख कि वहाँ सांस लेना भी दिक्कत होता है, सांस लेने में भी परेशानी होती है बाबू, तो वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। आखिर अंजाम निकलल का बाबू, एक दिन बड़ा बुरा खबर आ गई। आ का खबर आई बा लेह लद्दाख से,

यादव की तबीयत खराब हो गई ले लद्दाख में। मलेटी का जो हॉस्पिटल था बाबू, फौजी जवानों के लिए जो हॉस्पिटल बना था, कुछ दिन उपचार हुआ लेकिन उपचार काम ना कैलस। आखिर हुआ क्या बाबू? लेह लद्दाख

आखिर मिलिट्री के हॉस्पिटल से रेफर कर दिए गए रंजीत यादव लेह लद्दाख से। कहां पर रेफर हुए? बाबूजी लखनऊ। लखनऊ किस हॉस्पिटल में हुए? कमांड हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल का नाम कमांड बताया गया। आज अब कमांड हॉस्पिटल में अइलन है रेफर हो के बाबू परिवार के, पता चलल बा सब लोग गइलन है। छोट भाई अजीत भी अइलन आ लखनऊ भैया के हॉस्पिटल में गइलन है। पूरा परिवार मिले गइल बटे, देखे गइल बटे कि का हो गइल, फेफड़ा में उनका इन्फेक्शन हो गइल, ठंडा के चलते ऑक्सीजन नाम मिला के चलते, ऑक्सीजन कम मिला के चलते आखिर रंजीत के फेफड़ा में इन्फेक्शन भइल बा। वहां से लखनऊ अइलन है कमांड हॉस्पिटल, इहो एक तरह से सैनिक हॉस्पिटल हो। तेजा अइलन जब अजीत के पता चलल, पूरा परिवार के लेके अभैया से मिले गइलन है कमांड हॉस्पिटल में, देखलन कि बड़का भैया रंजीत बेड पर पड़ल हूँ, जिंदगी मौत के बीच जूझत हूँ। उस समय डॉक्टर साहब के पांव पकड़ के और अजीत छोट भाई रोवे लगलन और रो के एक बात कहलन। का कहलन बाबू? इहे रोक कहत हूँ।

0: फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
10: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: डॉक्टर से गुहार लगाओ तो उनकी डॉक्टर साहब कोनो युक्ति से कोनो तरह से हमरा रंजीत के बचा ली। माई एक तरफ रोते रंजीत के, मेहरारू एक तरफ जेकर नाम पूजा बा, गोदी में छोट लड़का जेकर नाम राजवीर बतावल गई, लेके रोत बे कहीं छोट दयादीन ओकर प्रिया, ई रोत बे कहीं भाई रोत बा, सब डॉक्टर साहब से गुहार लगावत बा। लेकिन कहल जाला बाबू की हुई है जो राम रुचि राखा, हुई है जो राम रुचि राखा, वह होखी जो उन भगवान के मंजूर बा। लाख कोशिश कैलन डॉक्टर, सब लोग लाख कोशिश कैल, लेकिन आखिर ओ रंजीत यादव के ना बचा पाओ। रंजीत यादव अंतिम सांस लिया, देश का एक सिपाही, देश का एक जवान, देश का एक फौजी, लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में अंतिम सांस को लिया है। हाहाकार मच गया बाबू, जिस समय रंजीत यादव इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे, अंतिम सांस लिए, उस समय छाती पीट करके रंजीत यादव की पत्नी पूजा यादव अपने गोद में मासूम बच्चा को ले करके रो करके कहती है, और 29/3/2026 29/3/2026 के अंतिम सांस लिहलन लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में रंजीत यादव। छोट मासूम बेटा को अपने, जिसका नाम राजवीर है,

लेकर के पूजा रोती है, बिलखती है, छाती पीट पीट करके रो करके एक बात कहती है भगवान से, का कहली ना बाबू।

लेकिन आज पूजा यादव रोवत है। रंजीत के धर्म पत्नी रोवत है, बेटा गोदी में मासूम बेटा के लेके का कहलिन हा कि हमारे मंगिया के चल।

आखिरकार बाबूजी जो होना था वो हो गया। ताबूत में बंद करके तिरंगा में लपेट करके वहां से लाश चली है रंजीत यादव की प्रधानपुर के लिए, लखनऊ से प्रधानपुर के लिए। रंजीत यादव की लाश ताबूत में बंद करके तिरंगा में लपेट करके चली है, और जब तिरंगा में लपेट करके चली है बाबू, भीड़ उमड़ पड़ी, जन सैलाब उमड़ पड़ा। कवि जी एक भाव दिए हैं टेरी के अंदर, क्या दिए? अरे सिंहरवा कैसे नुरवा का होई, ए भैया सिंहरवा कैसे नुरवा का होई, लोरवा धारे पूजा पूछे रोई रोई। लाश चली है बाबू, पार्थिव शरीर रंजीत यादव की तिरंगा में लपेट करके ताबूत में बंद करके चली है, और जब लोगों का ताता लगा, भीड़ लगी, जन सैलाब उमड़ पड़ा, उस समय भाव दिया गया क्या? और बढ़ के दमास्टर अल्लाह के लाइन में कभी जी कहलन, तनी और बढ़ जा।

0: कप्तान जो बलिया जिला के कप्तान साहब थे, आज रंजीत यादव की लाश लेकर के जब प्रधानपुर गांव में आए हैं बाबू, हाहाकार मच गया। पूरी जवार में हलचल मच गई, पूरे जवार के लोग जुट गए, जन सैलाब जुट गया। ओ जन सैलाब रोते धोते भारत माता की जय, रंजीत यादव अमर रहे, वंदे मातरम का नारा गूंजने लगा और सभी लोग टोंस नदी पर भीड़ लगाए। टोंस नदी पर पहुंचे, आखिरकार टोंस नदी पर चीता सजाया गया। राइफल से फौजी जवान उल्टा सलामी दिए, उल्टा सलामी दागे, आवाज दिए और वंदे मातरम कह करके जो रंजीत यादव का बेटा राजवीर यादव था, उसी राजवीर यादव के हाथों से, छोटा सा मुन्ना के हाथों से मुखायक निदान दिलाया गया। हम कहते हैं बाबू कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है, लेकिन जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज रंजीत यादव इस दुनिया में नहीं है, उनका भरा पूरा परिवार है, लेकिन रंजीत यादव अमर हो गए। रंजीत यादव का जब तक ये धरती रहेगी, सूरज चांद रहेगा, इतिहास में उनका नाम रहेगा। तो एक बात कवि जी लिखलन है, का लिखलन
1: कि अरे जब गुलाम

के ना केहू से भराई हो, अंतिम सलामी दे

आखिरकार पूरा परिवार यही कहता है, सरकार के पास भी पत्र लिखा गया है कि कम से कम रंजीत यादव देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन रंजीत यादव के यादगार में उनकी मूर्ति बैठाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी चिट्ठी लिखी गई है और हम गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे, करवट प्रार्थना करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से या जवार के लोग से कि नहीं, आप लोग मदद करके रंजीत यादव की मूर्ति को लगवाएं, जो कि हमेशा उनकी याद ताजा रहे। गाने का अंतिम प्रमाण था बाबू।

सिंह।

0: धन्यवाद।
1: तो श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुत ही अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रोज सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
12: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आमंत्रित करता है आवेदन इन पदों के लिए। प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी रसायन, पदों की संख्या 32, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी बॉयलर, पदों की संख्या 6, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी यांत्रिकी, पदों की संख्या 4, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी विद्युत, पदों की संख्या 10, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी उपकरण, पदों की संख्या 9, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी सामग्री 1 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी सिविल 1 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी अग्निशमन 1 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी सीसी लैब 1 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी 2 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु कुल 5 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी राजभाषा 2 पद, प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी वित्त 10 पद और प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी विपणन कुल 10 पद। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट www.rcfltd.com। वेबसाइट पर जाकर भर्ती अथवा रिक्रूटमेंट सेक्शन को क्लिक करके आवश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। सह प्राध्यापक 1 पद, सहायक कुल सचिव 1 पद, रिसेप्शनिस्ट सह टेलीफोन ऑपरेटर 1 पद और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1 पद। आवश्यक शैक्षिक एवं वांछनीय योग्यता, अनुभव और सामान्य निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट www.nieperkolkata.edu.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। वरिष्ठ परामर्शदाता विश्व विज्ञान 2 रिक्तियां, परामर्शदाता विश्व विज्ञान 1 पद, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी विश्व विज्ञान 2 रिक्तियां और तकनीकी अधिकारी विश्व विज्ञान 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ppqs.gov.in। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में ये पद रिक्त हैं। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता 7 पद, पर्यावरण अभियंता 15 पद, सहायक पर्यावरण अभियंता 11 पद, अपर निदेशक वैज्ञानिक ई 1 पद, वरिष्ठ वैज्ञानिक L2 1 पद, वरिष्ठ वैज्ञानिक L1 2 पद, वैज्ञानिक B 1 पद, वैज्ञानिक सहायक 4 पद, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 5 पद, सहायक विधि अधिकारी 1 पद, विधि सहायक 5 पद और सिस्टम एनालिस्ट 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट www.dpcc.delhigovernment.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
14: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
13: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
14: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
13: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
15: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
13: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
16: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
17: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
17: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
18: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
19: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
20: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
18: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
21: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
22: रेडियो रिमझिम,
21: सुनो दिल से।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया
5: से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
7: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
6: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
7: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहाँ से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
0: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
8: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल है जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
6: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
9: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
10: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
11: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
10: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
6: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
12: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके, उसकी चिंता करते हैं।
6: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
13: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। निशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
6: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
14: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
6: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
15: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
6: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
17: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
18: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
19: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
17: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
20: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
21: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
20: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
21: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
20: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
21: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
20: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
21: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
22: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
23: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
22: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
23: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
22: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
23: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
22: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH-27 गोपालगंज।
23: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-72-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
24: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अनुकंपा समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक, 12 मामलों का हुआ निष्पादन। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को लेकर जिला पदाधिकारी ने दिया आवश्यक निर्देश। मोहम्मदपुर थाना का पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने किया निरीक्षण। 270 लीटर शराब के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की। इसमें अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसी क्रम में 12 मामलों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और सभी 12 मामलों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए विचार विमर्श करने के उपरांत समिति द्वारा सभी 12 मामलों का निष्पादन कर दिया गया। इसमें एक मामला ऐसे दिवंगत सरकारी कर्मी के आश्रितों से संबंधित था जिनका निधन 31 अक्टूबर 2010 को हुआ था और इनका अनुकंपा नियुक्ति का मामला 16 वर्षों से लंबित बताया जा रहा था। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य दिवंगत सरकारी कर्मियों के आश्रितों को समयबद्ध न्याय एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति के किसी भी प्रकरण को अनावश्यक से लंबित न रखें तथा सभी मामलों का

समीक्षा की गई। इस दौरान बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के प्रभावी अनुपालन तथा सभी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान जैव चिकित्सा अपशिष्ट का रंगवार पृथककरण सुनिश्चित करें तथा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से उसका नियमित उठाव एवं वैज्ञानिक निस्तारण कराएं। उन्होंने संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण कर नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में जिले में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई तथा स्वास्थ्य संस्थानों की सेवा कवरेज बढ़ाने, शेष संस्थानों को भी व्यवस्था से जोड़ने और जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए संबंधित प्रयास करने पर बल दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मोहम्मदपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। थाना कार्यालय, अभिलेख, हाजत, वारंट, कुर्की निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वाहन जांच अभियान और शराबबंदी से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने अपराध नियंत्रण, अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी और थाना परिसर की साफ सफाई तथा बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर सदर SDPO 2 राजेश कुमार, DIU के प्रभारी हरेंद्र प्रसाद, ओम प्रकाश चौहान एवं थानाध्यक्ष चंदन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर शराब तस्करों के विरुद्ध भी लगातार अलग अलग तरीके से पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कटिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकहा इंदिरा नगर के पास वाहन जांच करते हुए एक ई रिक्शा वाहन से 270 लीटर देशी विदेशी शराब को जब्त किया। इस मामले में अभियुक्त मुन्ना पिता स्वर्गीय बिहारी मदेसिया साकिन बनकटा बाजार थाना चौरा खास जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ जगदीप मुसहर पिता नगीना मुसहर साकिन कटिया शिवाला थाना कटिया जिला गोपालगंज को भी गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त एक ई रिक्शा को जब्त भी किया गया है और इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर कांडों के त्वरित अनुसंधान और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रभावी कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में मोहम्मदपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 223-26 में पुलिस ने छापेमारी करते हुए भूमि विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और इसी मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कांड के प्राथमिकी अभियुक्त अर्जुन महतो, पिता श्रवण महतो, साकिन मोहम्मदपुर पांडे टोला थाना मोहम्मदपुर जिला गोपालगंज को इस कांड में संलिप्तता की पुष्टि होने पर उनके घर से ही विधिवत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आगे की विधि सम्बद्ध कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं कांड में संलिप्त अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा 3 दिवसीय अनुसंधान परिषद की बैठक का शुभारंभ किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई। इसका उद्देश्य संस्थान में संचालित अनुसंधान कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा करना, नए अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करना तथा पूर्वी भारत में सतत एवं जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भविष्य की अनुसंधान प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अन्य संस्थानों के सहयोग से बहु विषयक अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी जलवायु अनुकूल एवं किसान केंद्रित कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। संस्थान के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनूप दास ने कहा कि वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित नवीन प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों का विकास करें। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का उपयोग परस्पर संवाद, ज्ञान एवं अनुभवों के आदान प्रदान,
तथा आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए करें, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा मिले और समाज एवं कृषि क्षेत्र के हित में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सके। इस अवसर

0: पर डॉक्टर विकास दास निदेशक राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, डॉक्टर पीके मिश्रा निदेशक बामेती पटना, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह निदेशक महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी सहित तमाम वैज्ञानिक गण भी मौजूद रहे। गोपालगंज के सदर अस्पताल में अब नवजात शिशु के जन्म के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा। गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों के बाद यह पहल शुरू की है। उनका कहना है कि किसी भी कर्मचारी के द्वारा सदर अस्पताल के महिला वार्ड में मिठाई या बधाई के नाम पर पैसे मांगने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता से भी उन्होंने अपील किया। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में किसी को भी किसी तरह का पैसा न दें। इस व्यवस्था से मरीजों और परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने प्रत्येक दिन की भांति आज भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से जन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कांडों की गंभीरता और संवेदनशीलता तथा प्राथमिकता के आधार पर मामलों को सुनते हुए प्राप्त आवेदन और शिकायतों के त्वरित निष्पक्ष और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा प्रत्येक मामले में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। आने वाले 10 अगस्त को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन होगा। पात्र लाभुकों का ऑन द स्पॉट आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और सोलर रूफटॉप की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैंक प्रतिनिधि भी ऋण सुविधा के लिए मौके पर उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर में पहुंचकर इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। माधोपुर थाना की पुलिस ने शराब तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पूर्व में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामदगी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने 267 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त किया था और इसी मामले में उपेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय मुख्तार प्रसाद साकिन पंडितपुर थाना सिधवलिया को आरोपी बनाया गया था। यह आरोपी उस वक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। अब इस मामले में पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसी मामले में अब उत्पाद अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। कटिहार थाना की पुलिस ने मारपीट के मामले में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि थाना कांड संख्या 397/26 जो 4/8/2026 को पुलिस ने कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। इसी मामले में कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर चार विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। इन लोगों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। चारों ने अपनी संलिप्तता इस कांड में स्वीकार की है। चारों बालकों को किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जहाँ से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अनुकंपा समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक, 12 मामलों का हुआ निष्पादन। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को लेकर जिला पदाधिकारी ने दिया आवश्यक निर्देश। मोहम्मदपुर थाना का पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने किया निरीक्षण। 270 लीटर शराब के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: ठक ठक।
4: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
12: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
13: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
14: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
13: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
14: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
13: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
14: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
15: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
16: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
17: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
18: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस शो में अपने पसंद के गाने फरमा सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। बस अर्थे ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश आप करें तो पुराने गाने के फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। 90s के गाने फरमाएं या ओल्ड इज गोल्ड गाने के फरमाइश करें, जैसे किशोर कुमार जी और मोहम्मद रफ़ी जी, मुकेश जी की आवाज़ों में आप गाने पसंद करते हैं तो बिल्कुल फरमाएं, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि भैया जी मुझे सॉन्ग सुनना है जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया। मोबी नेम अंश, माई नेम इज दीपक एंड जेलर। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया नमस्ते, MD 97 दरभंगा भजीतपुर से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय क्या हाल है। तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में निशा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, जो दिल करे मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं। अगर मैं होता बादशाह तो एक कानून बना देता, दिल तोड़ने वाले को सजा ये मौत का हुक्म सुना देता। सुनो भाई नमस्कार, क्या छो। मैं रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल बढ़िया और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और क्या हाल है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है कमलेश जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, बुलेट चौधरी जी तिनफिड़िया से जुड़े हुए हैं, गाने का फरमाइश करते हैं, आपका भी स्वागत है। आगे मैसेज मनीषा करती हैं, हेलो हाय कैसे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज, सर नमस्ते मेघनाथ माझी, सर मुझे गाना सुनना है और गाने का बोल है बोलबम का। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे मेघनाथ माझी जी। आगे कई मैसेज पहुंचते जा रहे हैं तो मैसेज को रुकते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत गाने के साथ भी कर देते हैं और सुनते हैं पहले गाने की फरमाइश दीपक एंड जेलर जी की। इन्हीं के पसंद के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और सुनते हैं हम सभी।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, और कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, कैसे हैं? हम भी जुड़े हैं, साथ में मैडम जी भी हैं, और इन्हें मेरे द्वारा एक सॉन्ग सुना दें। तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और फिलहाल आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में, वीरेंद्र गुप्ता एंड लवली गुप्ता। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स भैया जी, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि मधु सरिया से सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को करते हैं राजू कुमार यादव जी। और राजू जी, आपने एक दिन मैसेज किए हुए, वो मैसेज हमारे पास अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है, क्या ये सही मैसेज किए हैं? थोड़ा सा आप बताएं आज। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्राम जय छपरा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि अभी अपने क्लिनिक पर हूँ और आपके कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहा हूँ, मुझे गाना सुना दीजिए, पतझड़ सावन बसंत बहार। तो अमोद जी, आज तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि यह बहुत छोटा कार्यक्रम है और इसमें सप्ताह में एक ही बार एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है और समय कम है। इसी कारण अब आपकी फरमाइश का नंबर आएगा अगले सप्ताह, तो आप थोड़ा सा सब्र करें और दूसरों को भी अपने गाने को सुनने का मौका दें। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल लेके करके फरमाइश हम पूरी करेंगे। अभी तो एक ही गाने हम सभी सुने हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे प्ले करते हैं। इस गाने की फरमाइश करते हैं MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से, और फिल्म ओ लम्हे गाने का बोल, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए तो आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है जिंदगी में तुझी पे लुटाऊँगी। उदित नारायण की आवाज़ में इस गाने को फरमाया गया है तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस मैसेज को करती हैं निशा डुमरिया से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भैया आपका मुझे मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए। एमडी 97 दरभंगा भाजीतपुर से मैसेज करते हैं, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल हंसी है जमा है। बहुत सुंदर सॉन्ग, समझिए मेरा ही गाना बज गया। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी, चलिए आपको धन्यवाद है कार्यक्रम में बने रहने के लिए और बने रहे आगे भी। और इस मैसेज को करते हैं अमोद जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते सर जी, हम निरंजन कुमार बतरदे से गाना सुनना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करते हैं दिलीप जी दिल्ली से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हमारा भी सॉन्ग सुना दीजिए, बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी करेंगे, आपकी भी फरमाइश पूरी होगी, बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो 90.4 एफएम पे।

ಮಾಮಲೆ टुडे एमसीएम 94.4 एफएम पे काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी और उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में जानी दुश्मन मूवी से। आगे कई मैसेज पहुंचे तो मैसेज को अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और अगले गाने की फरमाइश यहां पे प्ले करते हैं। लाल बाबू सिंह जी नवादा शहर भोजपुर से जुड़े हुए हैं और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे राजू जी मैसेज रिपीट पर रिपीट कर रहे हैं, तो राजू जी थोड़ा सा सब्र करें, आप जहाँ हैं वहाँ पे स्थिर हैं। आप इतना ना खुद फन कर देते हैं कि आपकी मैसेज को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता है कि आप कब मैसेज किए हैं। हर 2-3 मिनट पर देखा जाए तो आप सामने आ जाते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप जब मैसेज कर दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्थिरता बनाए रखें ताकि आपकी भी नंबर आए और आपकी फरमाइश हम पूरी करें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और लाल बाबूजी की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी इनके गाने के साथ।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: Excuse me boss, you have a text message.

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश करते हैं। कमलेश कुमार जी फिलेश सविया फिल्ड गोपालगंज से और कहते हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है फिल्म हीरो तू मेरा जानू है तू मेरा हीरो है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है, मैसेज देखा जाए आगे मैसेज पहुँचाते हैं। मेघनाथ माझी जी कहते हैं कि सर सुभाष राजा का ब्रजभार बोलबम गाना सुना दीजिए। तो आपकी फरमाइश हम पूरी करने की कोशिश में और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि सोनू बाबू हमारे दिलबर मैडम जी का भी सॉन्ग तो सुनाने को बनता है। तो बिल्कुल बनता है तो सुनाएंगे। और उससे पहले मैसेज किए हुए हैं कि जब आप अच्छी दिलबर हैं तो फिर आपका दिलबर घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, कोई तो कारण होगा बताएं, झगड़ा की होंगी या खाना दो बिरा नहीं दी होंगी जिसके कारण घर छोड़कर जा रहे हैं, और क्या हो सकता है। फिलहाल आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि हम भी हैं। तो बिल्कुल आप भी हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल आगे गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी। रेडियो रमझिम 90.4 FM पे कमलेश जी की फरमाइश।

94 FM सुन रहे हैं आप सभी, और कमल के सॉन्ग है अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कई, तो समय भी दिखे तो बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस गाने की फरमाइश और मैसेज को करने वाले वीरेंद्र गुप्ता एंड लवली गुप्ता दोनों दंपत्ति एक साथ बैठकर गाने की फरमाइश किए हुए हैं लो, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। और गाने का बोल है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, डेडिकेट आपको और शफाक हीना रोशनी निशा गुड़िया ब्यूटी आशा शब्बा शबीता सबीना शाहजहाँ खुशी बाकी छूटे सभी श्रोताओं को, और साथ में हमें भी सुनाएंगे। और इस गाने की फरमाइश लवली गुप्ता जी की हैं, और मैसेज किए हमें वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अफसर नेपाल बॉर्डर से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपकी फरमाइश हम सभी रेडियो MGM 94 FM पे।

बिल्कुल कुछ कहता है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना हम बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके। आवाज़ किशोर कुमार, नाम शगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से, और डेडिकेट दिलीप राम जी को करते हैं। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश तो हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज लिखा गया है कि शुक्रिया सोनू बाबू को मैडम जी की तरफ से और सॉन्ग सुनाए। चलिए आप दोनों रेडियो रिमझिम सुने और इसके लिए धन्यवाद है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग ना बजेगा काशर मधुसरिया से राजू कुमार जी, तो कैलाश धुआं तो नहीं बजेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं मैं नाथ माझी जी, तो हो सके तो इस गाने के बाद आपकी भी फरमाइश हम प्ले करें। फिलहाल इंजॉय करते हैं अगले गाने के साथ।

रेडियो रेमचीम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे समय जो है समाप्ति का हो गया है, तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे और अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। और अंतिम गाने बिरजा भार सिंगर सुभाष राजा की आवाज़ में अंतिम गाने प्ले होगा, और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं मेघनाथ माझी जी। और आगे एक मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सच्ची मोहब्बत का जवाब नज़र नहीं देता, सच्ची मोहब्बत का जवाब नज़र नहीं देता, जुबान नहीं वहां कभी मत जाना, जहां मान नहीं ऐसा प्यार मत करना जिसमें तूफान नहीं। इस लाइन को भेजते हैं निरंजन जी, और इनकी तरफ से भी गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ था, लेकिन समय की कमी के कारण इनकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं आज। कल कोशिश रहेगा, यदि मैसेज कल करते हैं आप तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे कई मैसेज हमारे पास है जो हम गाने के फरमाइश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी श्रोताओं से कहेंगे कि थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, कल आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। और बसरते आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज करना होगा कि मेरा गाना भी सुना दीजिए, इतना कर देंगे तो हम आपके गाने सुना देंगे, ताकि हमें जब आप लोग मैसेज करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ आप गाने सुन, आप कार्यक्रम से जुड़े हुए अपने गाने को लेकर इंतज़ार में, तो आप ही तब भी आपकी फरमाइश हम पूरी कर पाएंगे। ऐसा ना कि हम आपके गाने सुनाएं और आप सुन नहीं रहे होंगे तो हमारा 5 मिनट का समय बर्बाद चला जाएगा। तो आप लोग यदि गाने सुनना चाहते हैं तो कल मैसेज ज़रूर कीजिएगा लो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो 94 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
3: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है
4: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू द नेशनल जीडीपी एंड जनरेट नियरली 1.5 lakh employment opportunities across the country.
3: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
2: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments following ruckus by opposition members over several issues. Amid opposition's uproar, the Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 without any discussion. The legislation provides tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Later, the lower house was also adjourned for the day. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu today. During their conversation, the two leaders reviewed sustained progress in India-Israel Special Strategic Partnership and reaffirmed their commitment to further strengthening the bilateral cooperation across various

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हाय लोग,
2: बिहार मस्ती.in।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone ring day bajti hai to kehte hain hello.
3: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया हेलो माय चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
5: जी मैं मनन बोल रहा हूँ।
4: जी जी क्या हाल चाल है।
5: हाल चाल तो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि जब धूप निकलता है तो खूब गर्मी ना, धूप नहीं रहता है तो उमस का गर्मी है। और ये गाना सुनवाइएगा मैडम। गाना तो अपना नहीं है तो दूसरे जो है वो मिल जाएगा। तो गाना है बरसात का मौसम है तो जब दूर ना जाइए का गाना है। यही गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
4: और डेडिकेट भी है।
5: और डेडिकेट आपको रहेगा, महावीर जी को रहेगा, सोनी जी को। सोनी जी का प्रोग्राम सुनने को नहीं मिलता है।
4: सोनी जी छुट्टी पे है तो फिर कैसे।
5: तो आप ही सब कवर कर रही है ना। तब तो आपको बहुत मेहनत पड़ जाता होगा।
4: नहीं भारती जी भी है।
5: अच्छा भारती जी नहीं बोल रहे हैं।
4: नहीं मैं भारती नहीं बोल रही हूँ।
5: आपका शुभ नाम मैडम।
4: जी मेरा नाम मनोरमा है।
5: अच्छा मनोरमा जी, मनोरमा जी पहली बार बात हो रहा है तो बात होती है।
4: जी जी।
5: तो आप अभी नए ज्वाइन किए क्या।
4: जी जी।
5: ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आप अच्छे जगह पर लगे हैं। तो प्रोग्राम मनोरमा मनोरमा चलिए ठीक है, नाम खुद याद रखेंगे। आज पहली बार क्योंकि बात हो रहा है ना, तो पहले तो सोनी जी से हम बात किया करते थे, उससे पहले दिव्या थी, हम भारती जी आई है, आज मनोरमा जी से बात हो रहा है ना। ये भी बहुत हमको खुशी हो रहा है कि वो नए नए आदमी आ रहे हैं। तो ये गाना जो है मैडम सुनवा दीजिएगा।
4: वैसे आप ये रेडियो रिमझिम कैसे सुनते हैं।
5: बहुत दिन से सुनते हैं। मैं कि सब सब प्रोग्राम हम नहीं रहते हैं, इसी में रहते हैं जो आपसे हम बात करते हैं।
4: हेलो माय चॉइस।
5: हाँ और वो एक बजे वाला प्रोग्राम आता है ना, तो उसमें तो हम मैसेज नहीं डालते, हम अपना गाना का ये करते हैं और कॉल करते हैं, तो उसमें कॉल करिंग होता है, कोई उठाता भी नहीं है ना। तो कभी कभी कॉल करके आज मैच करके छोड़ देते हैं, कभी भी नहीं लगा मेरा
4: मतलब।
5: हाँ तो आप लोग मैसेज ये में लगे रहते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं।

0: कॉल भी उठता है, लेकिन अब सब तो देखना पड़ता है ना।
1: आप लाएंगे क्या 1 बजे वाला प्रोग्राम में?
0: नहीं, वो भाभी चलाएंगे अभी।
1: हम उधर तो मीरगंज से कपूरा से बोल रहे हैं। मीरगंज है, बस पते है लगे ये 1 किलोमीटर का फासला है मीरगंज और मेरा घर का 1 किलोमीटर से, 1 किलोमीटर समय पड़ेगा।
0: अच्छा।
1: हम लोग के पास रेडियो बैठता है तो बहुत क्लियर बैठता है रेडियो, बहुत बेहतरीन साउंड में बैठता है, वो भी साउंड आपको देश में हम बजाते हैं रेडियो यहाँ।
0: अच्छा, मतलब ये रेडियो मीटिंग को आप कैसे सुनते हैं, जैसे कि मतलब ऐप के जरिए या फिर एफएम?
1: नहीं नहीं, डायरेक्ट रेडियो खरीद रहे हैं, दो दो रेडियो खरीद रहे हैं, एक रेडियो खरीदे 1000 रुपए का, एक खरीदे 3000 रुपए का रेडियो। रेडियो का आवाज हमको ट्यूनिंग करके सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। तो हम पुराने रेडियो वाले हैं, नए जमाने से नहीं है, मोबाइल पर तो गाना सुन लेता आदमी, फिर भी रेडियो का मजा जो ट्यूनिंग करके सुना जाए, दो चार बातें हो उसमें अच्छा लगे तो बहुत मजा आता है उसमें। गाना तो आदमी मोबाइल पर सुन लेता है और भी कहीं लेता है ना, तो वो गाना में गाने में रेडियो में बहुत अंतर, हमारे लिए अंतर है और लोग नहीं बता सकते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है। वैसे हम लोग उम्र दराज आदमी है ना, पहले बजा चुके हैं रेडियो, एक टाइम था कि हम लोग गोरखपुर पोस्ट गार्ड था उसकी लिख के हम लोग भेजते थे, सारा के फरवाई उसी को करते थे, गोरखपुर पटना भेजते थे, किलोन का जो पहले आता था उसमें हम लोग भेजते थे, तो उस टाइम पे जो है ऐसे करके हम लोग गाना सुनते थे ना। आमिर सयानी जो किलोन में चलाते थे पहले, हम उसका टाइम में हम लोग गाना फरमाए गए हैं पोस्ट कार्ड से भेज रहे। हम लोग बहुत पुराने रेडियो प्रेमी है, हम लोग रेडियो हम लोग का चॉइस ज्यादा होता है, मोबाइल वोबाइल और ये जो है ना MP3 बजा लो ढाक ढोक ये वाला नहीं, जो ट्यूनिंग करके हाथ में लेके मोबाइल जो सुनने का मजा होता है सबसे जो हमको दूसरा अच्छा नहीं लगता। और ये रेंजिन खोला था तो जब ये रेडियो स्टेशन खोला पहली बार जब गोपालगंज में, तो हम उस टाइम पे थे सऊदी है ना, तो सऊदी में जब सुने के अरे रेडियो स्टेशन हमारा गोपालगंज में खुल गया, इतना खुशी हुआ, इतना क्यों हुआ पूछिए मत। अब सऊदी से जब हम आए तो रेडियो लेकर ठीक है मैडम, तो हम रख रहे हैं, तो ये गाना जो है बरसात का मौसम है, ये गाना
0: जी तो गाना प्ले करते हैं आपका।
1: ओके, थैंक यू।
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हाँ जी, गाना सुनना है
0: जी, बता दीजिए।
1: करगल का कोई सॉन्ग है, गाना सुना दीजिए बलराम का।
0: कोई भी?
1: हाँ जी, नंबर तो आपका लगता नहीं है
0: जी। क्या ना, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं किसी को।
1: अच्छा, गाना आज शाम को सुना दीजिए गाना।
0: जी जी, आपके पास कभी शोर हो रहा है क्या?
1: काम कर रहे हैं हम लोग।
0: अच्छा जी, किस चीज का काम करते हैं आप?
1: हम लोग का तो अपना नेशनल का राज करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया। वैसे आपका नाम?
1: मेरा नाम परमात्मा कुमार है जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कालामाटी में गोपाल जिला से, कया खास के बगल में पड़ती। कया खास से बोल रहा हूँ, अभी तो घर मेरा वही है।
0: अच्छा,
1: अभी बाहर में है, होशियारपुर में जाम।
0: मतलब अभी किस जगह है आप?
1: अभी हम होशियारपुर में है, पंजाब में।
0: अच्छा अच्छा, तो जब आप इतना मुश्किल से कॉल किए हैं तो आप अपनी फरमाइश बता दीजिए।
1: नहीं, अपनी पसंद का सुना दीजिए।
0: कोई भी?
1: हाँ जी। मौसम कैसा अपने गोपालगंज में?
0: गोपालगंज का मौसम गर्मी तो पड़ रही है।
1: गर्मी? बारिश नहीं हो रहा है?
0: बारिश हुई थी रात में, हुई थी थोड़ा सा।
1: हम लोग के पास में रात में बारिश हुआ, कल भी रात में हुआ, सुबह भी हुआ थोड़ा सा 8 बजे। अभी तो दिन बना हुआ है, धूप निकला हुआ है, काम कर रहे हैं हम।
0: इधर भी वैसे
1: बहुत ही कॉल लगा रहे हैं। आपको कॉल तो लगाया, पिछले बार सोमवार को लगाए थे।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार
7: जी।
6: नमस्कार, राजस्थान में है अभी और कौन सुन रहा है
7: बता दीजिए।
6: आवारा पंछी का। हेलो
7: जी,
6: बोल रहे हैं आवारा पंछी का सॉन्ग सुन रहा है। आवारा पंछी का कोई भी सॉन्ग।
7: ओके, वैसे आपका नाम?
6: बजरंगी कुमार बोल रहे हैं।
7: ओके,
6: बोल रहे हैं बजरंगी बोल रहे हैं ना। क्या हो रहा है
7: अभी?
6: अभी जो हम राजस्थान में इधर बिल्डिंग विल्डिंग काम करते हैं इधर, और हम लोग बहुत दिनों से सुनते हैं, 2011 में कॉल करते हैं।
7: रेडियो रिंगिंग का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
6: अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा सॉफ्ट थोड़ा टाइम को कमी भी हमको थोड़ा बहुत कम सुनते हैं, लेकिन ये वाले जो सॉन्ग है सुनते हैं सबसे ज्यादा। आज गाना बज जाएगा ना आज हमारा?
7: बजेगा जी। तो आप रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनते हैं?
6: हाँ, सुन रहे हैं।
7: कैसे सुनते हैं, ऐप के जरिए या फिर इंटरनेट के माध्यम
6: से? जरिए सुनते हैं ना आप लोग, सुनते हैं उसी के लिए किया है।
7: चलिए बढ़िया, ठीक है। तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते,
1: विकास कुमार बोल रहा हूँ हिमतापुर से।
2: जी जी, क्या हाल चाल है विकास जी?
1: बढ़िया है जी, आप कैसे हैं मैम?
2: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: अब बारिश वरिश हो रहा है गोपालगंज में?
2: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
1: अच्छा, और बताइए क्या हाल चाल? मेरे तरफ नोएडा में हो रहा है।
2: अच्छा,
1: अभी सुबह सुबह हुआ था ना, कल परसों इतना ना पानी लग गया था कि रोड में आने में बहुत मुश्किल पड़ रहा था।
2: अच्छा जी।
1: हाँ, जूता खोल करके हम लोग घुटना बराबर पानी लग गया था। इतना रोड में पानी लग गया था, क्या बताए पानी को।
2: बताइए कहीं कितना ज्यादा बारिश हो जा रहा है, इधर थोड़ा भी नहीं हो रहा है।
1: अब जहाँ धान का फसल है मैडम, वहाँ नहीं बारिश हो रहा है। भगवान भी नहीं सोचते है कि हाँ जहाँ धान का फसल है वहाँ हो जाए।
2: भगवान जी से बताना पड़ेगा।
1: बताना पड़ेगा।
2: हाँ बताइए, इधर पानी लग गया, इधर थोड़ा भी नहीं हो रहा है।
1: इधर पानी इतना ना रोड पर लग गया है कि वो अगर 2-4-5 दिन अगर बारिश आज हो जाए बढ़िया से, पूरा बाढ़ आ जाएगा नोएडा में।
2: भगवान जी से बोलना पड़ेगा कि उधर बारिश ना हो, नहीं तो बाढ़ आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा।
1: भगवान जी नहीं सुन रहे हैं ना, भगवान जी आजकल चले गए मंदिर में, इसलिए नहीं सुन रहे हैं।
2: जी
1: और बताइए, और सब बढ़िया है ना?
2: जी जी सब बढ़िया। जी तो आज का फरमाइश बता दीजिए।
1: आज का फरमाइश वही है, खेसारी लाल का जहाँ जहाँ डेग डाली, वो वाला गाना नहीं है? हाँ वही गाना हमको सुनना है।
2: जहाँ जहाँ डेग जहाँ रखबू धनिया, वही वाला गाना।
1: हाँ वही वाला गाना। बहुत मस्त गाना है, आज सोचे कि यही गाना आज सुनेंगे।
2: बहुत अच्छा गाना। विकास जी ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: ये मेरी भाभी बहुत सुनती है ना गाना, ये उनको ये बहुत फेवरेट है। सबसे पहले तो आपको सुनवाना है ना।
2: अच्छा।
1: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं उनको।
2: चलिए ठीक है, तो विकास जी अपना गाना प्ले करते हैं।
1: जी ठीक है,
2: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: जी नमस्ते मैम।
2: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैडम एक गाना सुनना है।
5: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
6: ये शर्मा थावे से।
5: अच्छा,
6: ये शर्मा नाम है।
5: ओके,
6: थावे से बोल रहा हूँ।
5: क्या हाल चाल है आपका?
6: ठीक है, आप लोग कैसे?
5: जी हम लोग भी बढ़िया। क्या हो रहा है?
6: कौन बोल रहे? दुकान में है अपना किराना का।
5: अच्छा जी।
6: आप कौन बोल रहे हैं?
5: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
6: अच्छा अच्छा, एक गाना सुना है प्रेम रोग का, मोहरे ने खिलाया फूल फूल को ले गाना है ना।
5: जी जी
6: सुनवा दीजिएगा। कब तक आएगा
5: ये गाना आपका? कोशिश है कि आज ही बजे।
6: आज ही?
5: जी
6: बहुत बहुत मेहरबानी होगी बजेगी।
5: वैसे ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
6: ये सब बहुत लोग आते हैं इधर शाम को कान में अपना सब सुनेंगे। नाम किसको पता है? मौसम तो आज बहुत गर्म है।
5: बहुत ज्यादा
6: बारिश भी नहीं लगता है आएगा। रात को थोड़ा आया फिर उसके बाद बंद हो गया।
5: हाँ रात में आएगा।
6: चलिए ठीक है, सुनवा दीजिए।
5: जी ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए उसके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ओके जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में।
0: नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार, नहीं भारती नहीं,
0: क्या हाल
1: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। वो गाना है बोल बम के नारा है बाबा एक सहारा।
1: ओके, गाना सुनवाएंगे। आप अपना नाम बता दीजिए।
0: लाल बाबू
1: जरवान। क्या हाल चाल है?
0: ठीक है।
1: अब क्या हो रहा है?
0: वो काम हो रहा था, आराम कर रहे थे, लगा रहे थे आधा घंटा पहले ही, तो नहीं लग रहा, तो बिजी बता रहा था।
1: ओके, ना बहुत सारे कॉल आते रहते हैं तो
0: इसलिए इसका नंबर लग जाए। ठीक है, सूरज है, रुबिया है, रुबी है, विकास है, और आप है आपका टीम बस।
1: वैसे आप रेडियो रिंगिंग को मतलब कैसे सुनते हैं?
0: सुबह में 2 घंटा और रात में तो 11 बजे।
1: ठीक है, और मतलब कैसे सुनते हैं? मोबाइल ऐप के जरिए या फिर इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं, रेडियो भी है, घर पर जाते हैं तो रेडियो है, या नहीं तो मोबाइल है छोटा वाला, तो गोपालगंज में रहते हैं तो छोटा वाला मोबाइल चलाते हैं। वो 12 बजे से नहीं चलाती है और सुनते हैं हम 4 बजे। बाद ऐसा कॉल लगाते हैं, एक दो बार अगर लाइन मिल जाता है तो लग जाता है, नहीं तो काम के बिजी में रहता है तो नहीं लगा लगा पाता।
1: जी जी, शो में जुड़ते हैं ना?
0: हाँ, शो में जुड़ते हैं, तो में 2-3 दिन टाइम मिलता है तो लगाते हैं, सुनते ही रहते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी की बात है।
0: हम लोग 2000 से शुरू हुआ है ना, 9 से 10 से शुरू हुआ था, अभी से हम लोग, और तो स्टेशन सब बंद हो गया है, यही अपना गोपालगंज कितना भाग से खुल गया है, तो और स्टेशन बंद है।
1: जी जी, सब आप लोग के दुआ प्यार से भी चल रहा है।
0: चल रहा है, अच्छा है, जो है वो स्टेशन है चल रहा है।
1: जी, तो रेडियो रिंगिंग का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
0: अभी अच्छा लगता है, वो बीजाबार बंद हो गया, चल रहा
1: चलता है,
0: 30 दिन चलता है वो,
1: उसका भी टाइमिंग है।
0: बुधवार को चल रहा था और ये दिन बोलता है, बनता है एक और है बीरा नहीं बोलते हैं, वो बीरा भी सुनते हैं, और ये लोकगीत हुआ 4 बजे से टाइम बदल गया है।
1: जी जी,
0: वो भी
1: जी, अब अभी तो मतलब सावन आ गया तो उसमें कभी गीत को बजाया जाता है।
0: हाँ, वो भी किसी सुबह में 5 बजे भक्ति हुआ हम तो सुनते हैं सुबह,
1: बहुत बढ़िया की बात
0: है। वो एक और रात में वो दोनों जी नहीं है, वो देते हैं 1 घंटा के प्रोग्राम, तो भी हम लोग नियम से आते हैं, टाइम बताते हैं रात वाले, तो रिकॉर्डिंग हो जाता है। एक और जो समाचार अभी आता है तो नियम से भी सुनते हैं
1: दोपहर में।
0: हाँ, दोपहर का सुबह में 7 बजे, रात को 9:05 को आता है।
1: जी जी, मतलब ऑल प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छी की बात है। जी, तो अब तक सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी हम रमजान
6: जी,
5: हम रमजान बोल रहे थे
6: जी।
5: बनारस
6: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
5: जी बनारस से बोल रहे हैं।
6: अच्छा, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है, सब सुन रहे हैं।
6: बता दीजिए
5: जी, प्यार किया तो डालना क्या, ये मूवी सब सुनना चाहते हैं।
6: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
5: जी हम सुनेंगे, जिसे सोचा हम सभी सुनेंगे। उसमें का वो वाला गाना चलाइएगा, तुम बारे हम है हटके यारा, दिल भी मारे झटके।
6: Okay. वैसे क्या करते हैं आप?
5: जी हम लोग पावर लूम बनारसी साड़ियों का काम करते हैं। बनारसी साड़ियों का पावर लूम अपन काम करते रहते हैं, रेडियो रिमझिम सुनते रहते हैं मोबाइल पर।
6: तो आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं?
5: जी मोबाइल जो है उसी पर सुनते हैं।
6: मतलब रेडियो रिमझिम का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
5: जी सबसे पहले ये वाला जो है ये वो अच्छा लगता है
6: जी। हेलो मैं
5: जी, कब प्ले होगा
6: ये गाना आपका? कल बजेगा
5: जी। ठीक,
6: और कोशिश रहेगा कि मतलब आज ही बजे, अगर आज नहीं बजा तो कल, तो पूरा कंफर्म है कि कल बजेगा।
7: तो गाना प्ले करते हैं आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: कैसे
0: जी मैं बढ़िया हूँ, अपने बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ
0: जी। क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, बैठी हूँ, फोन लगा रही।
0: अच्छा
1: जी, मैं विशाल बच्ची बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम?
1: सुरभि कुमारी। सुरभि,
0: एक बार फिर से नाम बता दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही अभी।
1: सुरभि कुमारी बोल रही हूँ।
0: सुरभि?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, सुरभि बहुत प्यारा नाम है
1: जी। मैंने उनको गाना सुना है
0: जी, बता दीजिए।
1: दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके।
0: आप दो लाइन गा के सुना सकती हैं?
1: नहीं, मुझे याद नहीं है।
0: अरे कोई ना, बस आप दो लाइन गा लीजिए।
1: तो बताइए, उतना ही हमको याद था।
0: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं जी। तो सुरभि जी, आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी जी पावना से बोल रही हूँ, गोपालगंज।
0: गोपालगंज में कहाँ?
1: जी एम स्कूल है ना, कॉलेज।
0: जी जी
1: अच्छा, बात अच्छी है ना?
0: जी जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: आपका आवाज बहुत अच्छा लगा है मुझे।
0: अच्छा जी।
1: मेरी बहन भी बोल रही थी कि मैम का आवाज बहुत ही अच्छा लगता है बोलती।
0: पर आप लोग से बहुत कम ही है।
1: मैं 19 से सुनती हूँ, 2019 से सुनती हूँ रेडियो।
0: मतलब रेडियो रिमझिम को आप कैसे सुनती हैं?
1: अभी फोन से सुनते हैं, छोटा वाला फोन है उसी से सुनते हैं। बड़ा वाला फोन था उसमें ऐप इंस्टॉल की थी, सुन रही
0: थी।
1: तो अभी अभी आई हूँ
0: जी।
1: तो मेरा पहला ही कॉल है लग रहा है।
0: नहीं, अभी तो 2-3 कॉल आ चुके हैं ना।
1: क्या मेरी मम्मी जा चुका है?
0: जी जी जी
1: जी
0: आपका गाना प्ले करते हैं
1: जी।
0: सुनते हैं सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ तिरवीरवा से, और हमको गाना सुनना है हमराज फिल्म का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं।
6: ओके।
5: हाँ जी, और सबको डिलीकेट करना है, जो भी अपना प्रेमी है रेडियो FM का, ये सबको डिलीकेट कर दीजिएगा।
6: ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
5: जी, मैं तो अभी फिलहाल घर पे ही हूँ, बॉम्बे में रहता था, है ना। अभी तक सुनाएंगे ये गाना,
6: ये गाना आपका आज ही 5 से 7।
5: ओके,
6: जी
7: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए उसके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: ओके जी।

0: हेलो
1: जी, बता रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: भारती जी बोल रही हैं?
1: नहीं,
2: सॉरी सॉरी सॉरी मैम। आप सब बोलिए, कैसी हैं?
1: जी सब बढ़िया है, अपना बताइए।
2: हम भी ठीक है मैम। आप और भारती मैम से दोनों आदमी से ना आवाज ना मिलता जा रहा है।
1: अच्छा जी,
2: इसीलिए पूछ दीजिए।
1: कोई बात नहीं है,
2: आप सब बोलिए।
1: जी सब बढ़िया, नाम बताइए।
2: जी सुनीता, सुनीता दीदी हजियापुर से। सोमवार को फोन नहीं किए थे? जी मैम।
1: सब बताइए,
2: इस समय दोपहर ये खाना बनेगा।
1: सब नाश्ता तो हुआ ना?
2: जी मैम। आपका?
1: जी मेरा ठीक है। तो घर परिवार में सब कोई ठीक है?
2: जी मैम सब कोई ठीक है।
1: चलिए बढ़िया, तो फिर आपका फरमाइश बता दीजिए।
2: जी मैम, कौन दिन का एगो गाना नहीं है, नहीं हर मत जाएंगे उड़ा, वही वही सुनना है मैम।
1: अच्छा
2: जी जी,
1: और गाना डेडिकेट हुई है?
2: जी आपको, भारती मैम को, जितना रेडियो रिमझिम सुनते हैं सभी भाइयों और बहनों को सुनाना चाहती हूँ।
1: ओके ठीक है सुनीता जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
2: थैंक यू मैम।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है क्या रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: प्रणाम।
5: प्रणाम,
4: क्या हाल
5: है? जी बढ़िया बा, नाम बता दिया अपन और कहाँ से?
4: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली।
5: ओके,
4: आप कौन हो?
5: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
4: अरे मनोरमा जी, आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
5: अरे इसीलिए ना, नहीं
4: आज आपसे पहली बार बात हो रही है। और बात भी कहाँ है? और सब सुनाइए।
5: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
4: सर फोन लगाते लगाते लग तो गया, नहीं बोला कि आज भी हाजिर दे लगाइए दे। करना भी नहीं था, आज किए तो आज मिल गए आप, नहीं करते तो आप मिलते नहीं। पूरे रिकॉर्डिंग आ चुका है
5: जी जी।
4: तो मुझे एक गाना सुना दीजिए, खेसारी लाल का है, सही और मोदी मूवी का है। तुहरा बिना खाना पीना सब बेकार बा, जान तीनों तुहार बा। हाँ यही सुना दीजिएगा।
5: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
4: भारती जी को, मनोरमा मैम को, सोनी जी को और जितने हमारे नाम से जानने वाले हैं सबको।
5: तो बताइए मौसम कैसा है उधर का?
4: बस मौसम में तो 2 दिन पहले बारिश हुआ है, बहुत नहीं है। जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ है, वहाँ भी तो बारिश नहीं हो रही है।
5: नहीं नहीं, लेकिन ऐसा मतलब लग रहा है जैसे कि बारिश होगा।
4: हाँ वैसे यहाँ भी कभी बादल हो जा रहा है, कभी धूप निकल जा रहा है। अब हम भी तो वहीं के हैं ना, राजापति स्टेशन के पास, तो हमें भी पता है कि कैसे मौसम हो रहा है उधर। भारती जी को, सोनी जी को पता है, आपसे पहली बार हो रही है बात।
5: रेडियो रिजिम आप कितने समय से सुन रहे हैं?
4: जी हम तो 4-5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जुड़ते नहीं थे। जुड़ रहे हैं, ये सोनी जी आई है, जब से जुड़ रहा हूँ 1.5 साल हो गया, 2 साल करीब हो गया। मैं जुड़ा नहीं हूँ लगातार। पहले मैं लिसनर हूँ, ऐसा कि 4 घंटे शो चलता है तो 4 घंटे इधर उधर कुछ नहीं, पूरे रेगुलर रहा हूँ।
5: चलिए
4: आपका गाँव कहाँ पड़ेगा? वही प्रॉपर गोपालगंज से। चलिए ठीक है,
5: ठीक है। तो
4: आप हो ही जाएगा बात विचार पड़ेगा तो, ऐसे सोनी जी से भारती जी से तो सब बात होती है, सब जानकारी है हमारे बारे में।
5: वो क्या है रिकॉर्डिंग?
4: हाँ एक दिन आप किए हैं, उस दिन हम इंतजार किए, सुने तो हम सोचे कि मनोरमा जी कब चढ़ी हैं, हमारे से मिली ही नहीं है। मैं बराबर फोन करता हूँ, लेकिन आज मिली गए। चलिए बात करके बहुत अच्छा लगा
5: जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर।
1: क्या हाल चाल है सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैं।
1: अच्छा
0: जी जी जी मैम
1: जी।
0: अब मैम वहाँ का मौसम के क्या हाल चाल है मैम?
1: मौसम सुहाना हुआ है, कभी धूप हो रहा है
0: जी जी,
1: हवा चल रहा है
0: जी जी जी मैम। बारिश नहीं है मैम?
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है
0: हमारे यहाँ। तो बारिश चालू मैम, हल्का फुल्का बारिश चालू, बहुत अच्छा है यहाँ का मौसम है मैम।
1: अभी भी बारिश हो रही है?
0: जी जी, अभी बारिश चालू जी जी जी मैम। आज एक फरमाइश है गाने की, बोलत पार्किंग में होके आवाज और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों। ठीक है मैम, गाना भजवाइए। धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुध

0: सुना है? गाना है भोजपुरी में है मैडम।
1: बताइए।
0: मारो में बैठल बाड़े गौरा के दूल्हा हो, मारो में बैठल बाड़े गौरा के दूल्हा हो, मांगे ले भर थरिया भांग ए सखी, मांगे ले भर थरिया भांग ए सखी।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: नहीं, साथी लोग सुना है, सबको सुनाना है मैडम।
1: वैसे क्या हो रहा है अभी?
0: हाँ, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, छुट्टी पर हूँ आज, और मैं आपका रिमझिम रोज सुनता हूँ, बराबर सुनता हूँ मोबाइल से।
1: अच्छा,
0: ये है कि थोड़ा आज सोचे थे कि आज गाना कॉल करेंगे या सुनेंगे गाना आज।
1: आप रेडियो रिमझिम कितने समय से सुनते हैं?
0: जब से शुरू है तब से सुनते हैं मैडम।
1: अच्छा जी, तो मतलब पूछ रहे थे कि रेडियो रिमझिम कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत शुरू सुनते हैं आपके रेडियो रिमझिम के मालिक हैं एक शंकर बाबू, उनका जो है भाषण ऐसी ऐसी देते हैं, सब बता रहे हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है जी।
1: अच्छा, रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं आप?
0: जब से मैंने हुआ है, चालू हुआ, तब से मैं सुनता हूँ। मेरा घर बिचर में हुआ, इसी पंचायत में मेरा रेडियो रिमझिम है।
1: अच्छा,
0: हमारे पंचायत में है।
1: अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडियो रिमझिम मतलब कैसे सुनते हैं? मोबाइल
0: से मैडम, मोबाइल से।
1: अच्छा, ऐप के माध्यम से?
0: जी जी, ऐप के माध्यम से।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, अब आप लोग का दुआ प्यार से लगा?
0: बिल्कुल एकदम, बिल्कुल, देखिए भगवान से दुआ करते हैं, पूरे रेडियो रिमझिम परिवार को मैं दुआ करते हैं कि सभी लोग खुश रहे और रेडियो रिमझिम चलाते रहे, सबको मनोरंजन कराते रहे।
1: अब आप लोग का आशीर्वाद चाहिए?
0: भगवान की कृपा है सर। जी जी
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैडम, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 एफएम में।
1: हम खादर राजन मार्केट से बोल रहे हैं, रामा जी प्रसाद।
0: अच्छा, पहले कॉल आ गई
1: बोल बम के हाथी न घोड़ा पैदल सवारी हम चले बाबा तोहरे दुआरी।
0: अच्छा, और गाना के लिए सुनवावे के भी बात
1: जितना लोग सुन दो सब कुछ सुने और कौन ना होता जनवा साहब सुनाई लो
0: एक बार फिर से बता दी।
1: हाथी ना घोड़ा पैदल सवारी बाबा हम चलिए तोरे दुआरी जितना रेडियो रिमझिम सुन दो सब कोई हम रहुआ जितना लोग बाबा धाम जा फिर से उस नत होई।
0: ठीक बताओ
1: हाथी जी बोले
0: गाना प्ले करी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: बिहारी।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
3: Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
5: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: नमस्ते, हेलो, ये भारती जी बोल रही।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है 90.4 FM में।
7: नमस्ते जी।
8: नमस्ते,
7: मैं मोहम्मद वकार कॉटन क्लास से बोल रहा हूँ। गाना की फरमाइश करनी।
8: जी बता दीजिए।
7: गाना है फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।
8: ओके, और गाने के बोल।
7: गाना का नाम है शावा शावा। क्या
8: एक बार फिर से बता दीजिए गाने के बोल।
7: गाने का बोल है फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।
8: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है।
7: गाना आपको डेडिकेट करना है।
8: ओके, वैसे क्या हो रहा है अभी?
7: अभी मौसम अच्छा है
8: जी, खाना वाना हो गया था।
7: तो यार गाना लगा लेना यार।
8: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
7: ठीक है
8: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: नमस्ते जी।
8: नमस्ते।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार,
1: हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के गुंधौर ग्राम सभा से बोल रहे हैं।
2: यार आपका नाम?
1: सूरज प्रजापति। मैम मुझे एक गाना सुनना था।
2: बता दीजिए।
1: इतिहास फिल्म का अचको मचको एक गाना है।
2: जी जी
1: जी, वही सुनना है।
2: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
1: जी मैम।
2: जी ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: हाँ, अजय प्रजापति है और लुकमान भाई है और एक दो लोग हैं और सुनने वाले सभी साथियों को।
2: ओके,
1: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, तो गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
4: पुत्र गणेश, अब हमने के कैलाश पर ना रहल जाई।
5: काहे माता जी?
4: तोहर पापा बहुत तंग करता रे।

0: रे मांजा गौरा।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हाँ भाई भैया कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाने कुतो मनुष्यः। इतना कुछ तिरिया छछंद सुने के बाद आजकल के कुछ पति गाँव कहा थे सुने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: 90.4 आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। ऑलराइट।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि दिनांक 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार के इस शुभ प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:28 तथा सूर्यास्त 6:32 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखते हैं, इसलिए हर दिन कुछ अच्छा करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। श्रोताओं, उगते सूरज की सुनहरी किरणों ने प्रकृति को जगाना शुरू कर दिया है और हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5 बजने का संदेश दे रही है। नई उमंग, नई ऊर्जा और सकारात्मक विचारों के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा एक मधुर और भक्तिमय गीत के साथ।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।